मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948, ज्येष्ठ मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 29 मई 2026, सवेरे के 5:56 होने को है। हमारी आज की प्रथम सभा मीडियम वेव और FM पर एक साथ आरंभ हो रही है।

ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 6 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वो आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कल अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश में विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना और अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार कर रही है। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
1: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लो पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। 2 बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लो वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 से खेला जाएगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

मन को निराश ना कर, बस श्री कृष्ण पर तू विश्वास कर। हर पल साथ है वो मुरली वाला, इस बात का एहसास कर।

तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी। उस श्री राम से क्या छिपावे, जिसके हाथ है सबकी दूरी।

अभी आपने सुना भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। कलाकार थे छाया गांगुली, दिलराज कौर, शमीम बानो व हरप्रीत कौर।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी की रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

0: मैं प्लास्टिक। चलन में आई लकड़ी और कागज के बेहतर, सस्ते और टिकाऊ विकल्प के रूप में,
1: और खतरनाक साबित हुई पर्यावरण और जीवन के लिए।
0: हाँ, लेकिन मैंने बनाई तुम्हारी जिंदगी आसान, खर्चा भी कम, हमेशा रहते मेरे निशान।
1: तुम बनी हो जहरीले रसायनों से, न क्षय होता है तुम्हारा और न अपघटन, तभी तो तुम्हारे निस्तारण को लेकर परेशान है भारत का जन जन।
2: जलाओ तो निकले जहरीली गैस, जमीन में गाढ़ो तो प्रदूषित हो माटी के अवशेष। हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाएं।
1: करें उचित प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, रखें सुरक्षित पर्यावरण और जीवन।
3: से नो टू प्लास्टिक।
4: चुनिंदा शानदार हिट फिल्मी गीतों के साथ कीजिए अपने दिन की खुशगवार शुरुआत।
5: सुनिए 102.9 मॉर्निंग हिट्स सवेरे 8:45 से 9:15 तक
4: प्रत्येक सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार।
6: 102.9 मॉर्निंग हिट्स आकाशवाणी रामपुर से।
4: गीत सुनवाने के लिए ख्वाहिशों का पैगाम,
6: अब आएगा खतों के साथ साथ ईमेल और व्हाट्सएप का भी दामन थाम।
4: सोमवार से शनिवार दिन में 12:10 पर हम करेंगे कुछ गीत आपके नाम।
6: जी हाँ, गीत आपके नाम।
4: हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9410087876।
6: आप हमें अपनी फरमाइश ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है
1: गीत आपके नाम aarrampur@gmail.com। इसे एक बार फिर से सुन लीजिए, gettapkenaamarrampur@gmail.com। गीत आपके नाम सुनिए सोमवार से शनिवार दिन में 12:10 पर आकाशवाणी रामपुर के मीडियम वेव 336.7 और 102.9 FM पर।
7: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है, मीडियम वेव 336.7 और FM 102.9 MHz पर। आप सुन रहे हैं इस समय आकाशवाणी रामपुर की प्रथम सभा के प्रसारण। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आज का चिंतन। आज इस कार्यक्रम में विषय है शास्त्री जी।
8: आज का नहीं, हमारा हजारों साल का इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारत ने, हिंदुस्तान ने किसी अपने पड़ोसी देश पर हमला करके किसी की जमीन पर कब्जा करने का कभी विचार नहीं किया, और हमने अगर कहीं कुछ जीत की है, बाहर के देश पर, दुनिया पर हमारा असर हुआ है, तो वो तलवारों का और बंदूकों का असर नहीं है। हमारा एक कल्चरल कॉन्क्वेस्ट हुआ है, एक सांस्कृतिक हमारी जीत हुई है। जीत के माने हमारा असर फैला है, हमारे दर्शन का, हमारी फिलॉसफी का, हमारे कल्चर का, हमारे साहित्य और लिटरेचर का, चाहे वो लंका हो, सिलोन, चाहे बर्मा, चाहे थाईलैंड, चाहे कंबोडिया, जो भी ये देश हैं आज, या और दूसरे देश, जापान आदि भी, उसमें हमारे भारत के विचार वहाँ गए, हमारे ख्यालात वहाँ पहुँचे, हमारा दर्शन, हमारी फिलॉसफी वहाँ गई, हमारे ग्रंथ, हमारे पुस्तक वहाँ गए, हमारे पूजा और पाठ के तरीके वहाँ गए। और आज भी आप उन देशों में जाएं तो आपको बहुत सी भारत की पुरानी प्राचीन जो हमारे ढंग थे, हमारी मूर्तियां थीं, हमारी शब्दावली, ये सब आपको वहां मिलेंगे। पहनावा भी अब बदल रहा है, लेकिन पहनावा भी कंबोडिया के अंदर इसी धोती का वहां प्रयोग होता है। तो ये जैसा मैंने आपसे कहा कि हमारा फैलाव हमारे देश का एक दूसरे ढंग का फैलाव हुआ, लेकिन कभी हम बम के गोलों से या तलवार और बंदूकों से हमने हमला करके दूसरे देशों पर कब्जा करना चाहा हो, ये हमारा इतिहास हमें नहीं बताता। और आज और ये भी एक अजीब बात है, कहीं दुनिया में आपने ये सुना है कि एक साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने के लिए एक बड़ी सरकार, एक मजबूत सरकार ब्रिटिश गवर्नमेंट जैसी, उससे लड़ने के लिए लाखों और करोड़ों आदमी को उठाया जाए, उनको उभारा जाए, लेकिन कहा जाए कि तुम्हें लाठी का जवाब लाठी से नहीं देना है, गोली का जवाब गोली से नहीं देना है, बल्कि धीरज से बर्दाश्त करना है, जो तकलीफ आए, जो कष्ट हो, उसका सहन करना है, लेकिन अपनी बात से हटना नहीं है, अपनी बात पर अड़े रहना है। ये भी आपको दुनिया के इतिहास में इस तरह की लड़ाई कभी नहीं मिलेगी। एक इतने बड़े क्षेत्र में, इतने बड़े मैदान में, लाखों और करोड़ों आदमियों के बीच में एक अहिंसा और शांति की बात को चलाना, और एक राजनीतिक संग्राम में, एक पॉलिटिकल लड़ाई में, ये बात भी मैं नहीं जानता कि संसार के इतिहास में कहीं देखने को मिलेगी।
7: अभी आपने सुना आज का चिंतन, विषय था शास्त्री जी। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है।

0: मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 MHz पर आप सुन रहे इस समय आकाशवाणी रामपुर की प्रथम सभा के प्रसारण प्रातः के 6:35 हुए हैं। अब प्रस्तुति कार्यक्रम स्वास्थ्य संदेश। आज इस कार्यक्रम में जानकारी का विषय है ब्रेन हैमरेज और जानकारी साझा कर रहे हैं डॉक्टर अलोक सिंगल।
1: स्वतः हमारे शरीर में कई प्रकार की समस्याएं होती हैं और लक्षणों के आधार पर उनका निदान किया जाता है, इलाज किया जाता है। एक समस्या है ब्रेन हेमरेज की, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके क्या लक्षण हैं, क्या होता है, कारण क्या है और कैसे हम इससे बच सकते हैं, इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में है डॉक्टर आलोक सिंगल, जो कि रामपुर में कार्डियोलॉजिस्ट है और वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ है। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: नमस्कार वर्मा जी, थैंक यू वेरी मच।
1: डॉक्टर साहब, ब्रेन हेमरेज सभी लोग परिचित हैं इससे और इसका नाम सुनते ही आदमी घबरा जाता है कि भाई ये कैसी समस्या है, क्योंकि उसका मतलब ये हो जाता है कि बहुत ही घातक होता है। ये क्या है और किसको हम कहेंगे कि ये ब्रेन हेमरेज है?
2: जो ब्रेन जैसे हम सब लोग जानते हैं, हिंदी में मस्तिष्क बोलते हैं
1: जी,
2: इसके अंदर ब्लड सप्लाई होती है, खून जाता है जिससे कि उसके न्यूट्रिएंट्स
1: जी
2: ब्रेन तक पहुंच के ब्रेन अपना फंक्शन नॉर्मल कर सके
1: जी।
2: लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर ये नली, जो खून की नली जिसे हम आर्टरी बोलते हैं या धमनी बोलते हैं, ये अगर कहीं से वीक हो जाए किसी वजह से,
1: हाँ,
2: तो वहां से ये फट जाती है और ब्लड वहां से लीक होकर ब्रेन में डेवलप जमा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। जैसे कि बहुत कॉमन एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि अधिकतर देखा जाता है सड़क पे जो पाइपलाइन होती हैं वो फट जाती हैं और उनमें से पानी निकलने लगता है और चारों तरफ वहां पे जमा हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं वाटर लीक कर रहा है। बिल्कुल ऐसी है कि जब कोई आर्टरी ब्रेन के अंदर लीक करने लगे तो वहां पर ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, इसे हम ब्रेन हेमरेज बोलते हैं।
1: अच्छा, तो ये ब्रेन हेमरेज हुआ और आर्टरी लीक करती है, जैसा कि आपने पाइप का एग्जांपल दिया है। क्या क्या इससे नुकसान होता है और कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है?
2: देखिए, परिस्थितियां इसकी तो ऐसी है, ये बढ़ती उम्र के साथ ही ज्यादा कॉमन है
1: जी।
2: जैसे जैसे एज बढ़ेगी,
1: हाँ,
2: ब्रेन हेमरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं
1: जी।
2: दूसरा, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर होता है,
1: हाँ,
2: उनमें ये सबसे ज्यादा कॉमन होता है।
1: अच्छा,
2: जितने भी ब्रेन हैमरेज होते हैं उनमें से 80% ब्रेन हैमरेज ब्लड प्रेशर की, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होते हैं। तो आप देख लीजिए कि कितना हाई इंसिडेंट हाई ब्लड प्रेशर का है। वैसे जो डायबिटिक पेशेंट है उनमें भी हो सकता है, वो पेशेंट जिनके अंदर फैट बहुत है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, उनमें भी हो सकता है, जो स्मोकिंग करते हैं उसमें भी हो सकता है, एक्सेसिव एल्कोहल, बहुत ज्यादा शराब पीने से भी हो सकता है, और कुछ हार्ट डिजीजेस होती हैं उनमें भी ऐसा हो सकता है, जबकि हार्ट ब्रेन से अलग है
1: जी।
2: लेकिन कुछ हार्ट की डिजीजेस में से कोई क्लॉट पहुंच के ब्रेन में पहुंच जाए और वहां जाके बाद में सेकेंडरी हेमरेज हो सकती है, तो भी ऐसा हो सकता है
1: जी।
2: और यही अधिकतर मोटे मोटे कारण हैं। और दूसरे, एक मौसम का इफेक्ट आपको बताऊंगा। जाड़ों के मौसम में ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और ऐसे मौसम में ब्रेन हेमरेज के चांसेस भी ज्यादा
1: हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, लक्षणों की यदि बात करें तो पेशेंट कैसे महसूस करेगा कि वास्तव में ये ब्रेन हेमरेज के लक्षण है?
2: एकदम तो ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ब्रेन अटैक दो तरह के होते हैं। एक में तो थ्रोम्बोसिस, क्लॉट बन जाता है नली में, तो भी पैरालिसिस होती है
1: जी।
2: और दूसरा जो हेमरेज है इसमें भी पैरालिसिस होती है।
1: हाँ,
2: और ये डिपेंड करता है कि हेमरेज कितना सीवियर है। स्मॉल हेमरेज जो है,
1: हाँ,
2: उसमें बहुत कम सिम्टम्स होते हैं
1: जी।
2: और जो लार्ज हेमरेज होता है उसमें तो पेशेंट एकदम उसको पैरालिसिस बॉडी के एक तरफ की आधी, जैसे अधरंग बोलते हैं
1: जी,
2: हवा का असर रामपुर में बोलते हैं,
1: हाँ,
2: तो ये सब एकदम हो जाएगा विद इन फ्यू मिनट्स, टू आवर्स।
1: अच्छा,
2: और अगर हेमरेज बहुत बड़ा है तो पेशेंट बेहोश भी हो सकता है
1: जी।
2: बेहोशी के चांसेस कम है,
1: हाँ,
2: लेकिन बड़े हेमरेज में बेहोशी के चांसेस हो जाते हैं
1: जी।
2: और इसके अंदर आदमी बोलने में असमर्थ हो जाए या उल्टा सीधा बोले, बोली समझ में ना आए,
1: दर्द भी होता है,
2: हाँ, उसका ओरिएंटेशन मींस कि टाइम, पर्सन, वो सही टाइम ना पहचान पाए, अपने रिश्तेदारों को ना पहचान पाए,
1: हाँ,
2: ये सब बातें आ सकती हैं। और जो सीवियर हेमरेज है, लार्ज हेमरेज है
1: जी,
2: इसका डाउनहिल कोर्स होता है,
1: हाँ,
2: मतलब इसके अंदर रिकवरी के चांसेस कम होते हैं
1: जी।
2: तो और अगर छोटा सा हेमरेज है तो तुम्हें किसी एक पार्ट की वीकनेस हो सकती है, कॉन्शियसनेस रह सकती है।
1: डॉक्टर साहब, लकवा जिसे पैरालिसिस कहते हैं, ये भी उसी का पार्ट है?
2: लकवा हम लोग उर्दू में बोलते हैं आम भाषा में
1: जी,
2: पैरालिसिस इंग्लिश में बोलते हैं, अधरंग हिंदी में बोलते हैं।
1: हाँ, हाँ। तो इसका असर किन किन अंगों पर पड़ता है शरीर?
2: देखिए ब्रेन जो है बॉडी के हर अंग को कंट्रोल करता है
1: जी,
2: और बॉडी का हर अंग का एक रिप्रेजेंटेशन ब्रेन में होता है
1: जी।
2: अगर जो हेमरेज हुआ है उसने जिस अंग के एरिया को इन्वॉल्व किया है
1: हाँ।
2: वो अंग काम नहीं करेगा
1: जी।
2: यूजली जो हेमरेज होता है वो उस जगह पे होता है जहां से अधिकतर केसेस में आधे शरीर का हिस्सा काम करना छोड़ देता है।
1: अच्छा।
2: एक बात, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उम्र से रिलेटेड बीमारियां आना लाजमी है।
1: ब्रेन हेमरेज क्या है, कैसा होता है और लक्षण क्या है, उपचार कैसे हो सकता है? डॉक्टर आलोक सिंघल जी, आप हमारे कार्यक्रम आए और इस पर विस्तार से चर्चा की। हम समझते हैं कि इन चीजों का यदि ध्यान रखेंगे और अपनी दिनचर्या को नियमित रखेंगे तो निश्चित रूप से इस प्रकार की समस्याओं से बच सकेंगे।
0: ब्रेन हेमरेज, अभी आपने सुनी इस विषय पर डॉक्टर आलोक सिंघल से जानकारी। स्वास्थ्य संदेश कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी की रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 336.7 मीटर और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब सुनिए कार्यक्रम विवरण में हमारे केंद्र से आज की सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। अब से कुछ ही देर बाद यानी 6:45 पर सुनिएगा श्री रामचरितमानस गान। प्रातः 7 बजे प्रसारित होगा अमृत कलश। फिल्मी गीतों के इन्फोटेनमेंट प्रोग्राम सुबह सवेरे का समय रहेगा प्रातः 7:31। हनी 2.9 मॉर्निंग हिट्स नए फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे प्रातः 8:45 पर। प्रेरक प्रसंग प्रसारित किया जाएगा प्रातः 9:25 पर। उर्दू प्रोग्राम नशर किया जाएगा प्रातः 9:30 पर। श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम आपके अनुरोध पर आप सुन सकेंगे प्रातः 10:10 पर। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग प्रसारित किया जाएगा प्रातः 10:30 पर। धरोहर के अंतर्गत आज आप सुनेंगे नाटक नीरा प्रातः 11:00। कार्यक्रम मनभावन का समय रहेगा 11:30। ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम गीत आपके नाम आप सुन सकेंगे दोपहर 12:10 पर। दोपहर 1:15 पर प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम नात कव्वाली। आज कलाकार होंगे शहीद नियाजी व साथी। शहरी महिलाओं का कार्यक्रम कुमकुम आप तक पहुंचेगा दोपहर 1:30 पर। ये थी संक्षिप्त जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आप सुन रहे हैं इस समय हमारी प्रथम सभा के प्रसारण। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान।
3: एपिसोड नंबर 312।

अपनी राजसभा में अंगद की चेतावनी और चुनौती सुनकर रावण के क्रोध की सीमा न रही। उसे लगा कि ये मूर्ख वानर ये नहीं जानता कि कुंभकर्ण जैसा वीर उसका भाई और इंद्र को परास्त करने वाला योद्धा मेघनाथ उसका पुत्र है। वानरों की सहायता से समुद्र पर सेतु बांध लेने से राम की किस वीरता का परिचय मिलता है। समुद्र तो पक्षी भी लांग जाते हैं। अपने हाथों अपना सिर काटकर शिव के समक्ष अग्नि में होम कर देने वाला वीर अन्यत्र कौन है? रावण अपने बल और पराक्रम की गाथा सुनाते हुए कहता है, मेरी भुजाओं के बलरूपी समुद्र में कितने ही देवता और मनुष्य डूब चुके हैं।

अब कौन ऐसा शूरवीर है जो इनकी अथाह गहराई को पार कर सके? यदि तेरा स्वामी इतना ही बलशाली है तो फिर दूत क्यों कर भेजता है? शत्रु की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाते उसे लज्जा का अनुभव नहीं होता? इन भुजाओं को देख, जिनसे अपना सिर काटकर मैंने होम कर दिया था। अंगद बोले, सिर काटकर होम कर देना एक मायावी द्वारा रचित इंद्रजाल का कर्तव्य है।

अभी आपने सुना श्री रामचरित मानस गान। संगीत था सतीश भाटिया का और कलाकार थे महेंद्र कपूर व भूपेंद्र सिंह। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: विकास किसी भी समाज की प्रगति का प्रमुख संकेतक होता है। आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक क्षेत्रों में प्रगति ही एक राष्ट्र को सशक्त बनाती है। इस प्रगति में कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं योगदान देती हैं, लेकिन स्वयं सहायता समूह खास तौर से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने का एक प्रभावी माध्यम बना है। ये समूह न केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होते हैं, बल्कि उन्हें सामाजिक और शैक्षिक रूप से भी जागरूक बनाते हैं। अब हम समझेंगे कि स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं। स्वयं सहायता समूह आम तौर पर 10 से 20 लोगों का एक समूह होता है, जो आपसी सहयोग और सामूहिक बचत के आधार पर काम करता है। इनका मुख्य उद्देश्य छोटे उद्यमों को बढ़ावा देना, ऋण सहायता प्रदान करना और गरीब वर्गों को सशक्त बनाना है। इन समूहों को सरकार और विभिन्न गैर सरकारी संगठनों से आर्थिक सहायता भी मिलती है। स्वयं सहायता समूहों ने भारत में विकास की गति को तेज किया है और ये समूह न केवल व्यक्तिगत जीवन में सुधार लाते हैं, बल्कि समाज और देश की समग्र प्रगति में भी योगदान देते हैं। भारत में गरीबी एक बड़ी समस्या रही है, खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में। स्वयं सहायता समूह इस समस्या का समाधान प्रदान करते हैं और ये समूह माइक्रो फाइनेंस के जरिए अपने सदस्यों को छोटे ऋण प्रदान करते हैं, जिससे वो अपनी आजीविका चला सकें। उदाहरण के तौर पर महिलाएं सिलाई, बुनाई, कृषि, पशुपालन जैसे व्यवसायों में संलग्न होकर अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं, तो वहीं छोटे किसान उन्नत बीज और कृषि उपकरण खरीदकर अपनी कृषि उत्पादन क्षमता बढ़ा सकते हैं। तो बेरोजगार युवाओं को छोटे व्यापार और स्टार्टअप शुरू करने में सहायता मिलती है और वहीं स्वयं सहायता समूहों के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है और लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों ने महिलाओं को न केवल आर्थिक रूप से आजाद बनाया है, बल्कि उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी किया है। महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के जरिए अपना व्यवसाय शुरू कर रही हैं और परिवार की आर्थिक रीढ़ बन रही हैं। कई स्थानों पर महिला स्वयं सहायता समूहों ने कुटीर उद्योग, डेयरी फार्मिंग, हस्तशिल्प और कृषि उत्पादों का उत्पादन करके आर्थिक मजबूती हासिल की है और इन समूहों के माध्यम से महिलाएं अब शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक मुद्दों पर आवाज उठा रही हैं। स्वयं सहायता समूह बेरोजगारी की समस्या को हल करने में भी सहायक हैं। ये समूह सदस्यों को आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करके कृषि, कुटीर उद्योग, डेयरी व्यवसाय और छोटे स्टार्टअप शुरू करने में मदद करते हैं। आपको हम ये भी बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में कंबल बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाना, लकड़ी के उत्पाद बनाना वगैरह जैसे कामों में स्वयं सहायता समूह का बड़ा योगदान है। तो वहीं कई स्वयं सहायता समूह अपने सदस्यों को पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन आदि में प्रशिक्षण देकर उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम भी बना रहे हैं और ग्रामीण पर्यटन, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटी पार्लर, सिलाई कढ़ाई जैसे छोटे व्यवसायों में भी स्वयं सहायता समूहों की भूमिका बढ़ी है। अगर हम बात करें कि स्वयं सहायता समूह क्या सिर्फ आर्थिक विकास तक सीमित है, नहीं, बल्कि ये समाज में जागरूकता फैलाने और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देने में भी एक अहम भूमिका निभाते हैं। खास तौर से बाल विवाह, दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा के खिलाफ अभियान चलाना, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना और स्कूल ड्रॉप आउट की समस्या को कम करना, वहीं परिवार के बारे में स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाना, पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को बढ़ावा देना। ग्रामीण इलाकों में बैंकों की पहुंच कम होने के कारण कई गरीब परिवारों को साहूकारों से ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज लेना पड़ता था, तो SHG यानी स्वयं सहायता समूह इस समस्या को हल करने में मदद कर रहे हैं और ये समूह प्रधानमंत्री जनधन योजना, मुद्रा योजना वगैरह जैसी सरकारी योजनाओं से लोगों को जोड़ने में सहायक होते हैं। ग्रामीण लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़कर उन्हें औपचारिक वित्तीय व्यवस्था में लाना, वहीं बाढ़, सूखा, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के वक्त में स्वयं सहायता समूह राहत कार्यों में सहायक होते हैं। वहीं भोजन और दवा की व्यवस्था भी करते हैं, साथ ही पुनर्वास कार्यों में भी मदद करते हैं। तो सरकार और NGOs के साथ मिलकर सहायता कार्यों का संचालन करना भी स्वयं सहायता समूहों का एक बड़ा अहम काम है। सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे वो अपने सदस्यों को आर्थिक रूप से सशक्त बना सकें। हालांकि ये स्वयं सहायता समूह विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, फिर भी इन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे बैंकिंग प्रणाली की जटिलताओं और ऋण लेने की कठिनाइयों के कारण कई स्वयं सहायता समूह वित्तीय संकट का सामना करते हैं। तो इसलिए सरकार को अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए और बैंकों को स्वयं सहायता समूह को ऋण देने की प्रक्रिया आसान बनाना चाहिए। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कई समूहों को व्यवसाय और प्रबंधन की सही जानकारी नहीं होती, तो सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को स्वयं सहायता समूह के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने चाहिए। कुछ रूढ़िवादी समाजों में महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में शामिल होने से रोका जाता है, तो वहीं जागरूकता अभियानों के माध्यम से समाज की मानसिकता बदलने की भी जरूरत। स्वयं सहायता समूह भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास में एक सशक्त माध्यम बन चुके हैं और ये न सिर्फ गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण, रोजगार सृजन और सामाजिक सुधार में योगदान दे रहे हैं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान कर रहे हैं। अगर सरकार, एनजीओज और समाज मिलकर इन समूहों को और अधिक सहयोग प्रदान करे तो वो आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। स्वयं सहायता समूह की महत्वता के बारे में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है,
1: आज मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ एक स्टेटमेंट करना चाहता हूं, बड़ी जिम्मेवारी के साथ करना चाहता हूं। पिछले 20-22 साल के शासन व्यवस्था के अनुभव के आधार पर कहना चाहता हूं, आपके समूह का जब जन्म होता है, 10-12 बहनें इकट्ठी होकर के कोकाम शुरू करती हैं, जब आपका इस एक्टिविटी के लिए जन्म होता है, तब तो आप स्वयं सहायता समूह होते हैं। जब आपके कार्य की शुरुआत होती है, एक एक डग रख करके काम शुरू करते हैं, कुछ पैसे इधर से कुछ पैसे इधर से इकट्ठा करके कोशिश करते हैं, तब तक तो आप स्वयं सहायता समूह है। लेकिन मैं देखता हूं आपके पुरुषार्थ के कारण, आपके संकल्प के कारण, देखते ही देखते ये स्वयं सहायता समूह राष्ट्र सहायता समूह बन जाते हैं। और इसलिए कल आप स्वयं सहायता समूह होंगे, लेकिन आज आप राष्ट्र सहायता समूह बन चुके हैं, राष्ट्र की सहायता कर रहे हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों की यही ताकत आजादी के अमृत काल में विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बहुत अहम भूमिका, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए आज प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है।

0: अमृत कलश, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। वार्ता का विषय था स्वयं सहायता समूह, वाचन था एमन तंजील का और प्रस्तुति थी असीम सक्सेना की। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है।
1: मैं प्लास्टिक, चलन में आई लकड़ी और कागज के बेहतर, सस्ते और टिकाऊ विकल्प के रूप में,
2: और खतरनाक साबित हुई पर्यावरण और जीवन के लिए।
1: हाँ, लेकिन मैंने बनाई तुम्हारी जिंदगी आसान, खर्चा भी कम, हमेशा रहते मेरे निशान।
2: तुम बनी हो जहरीले रसायनों से, न क्षय होता है तुम्हारा और न अपघटन, तभी तो तुम्हारे निस्तारण को लेकर परेशान है भारत का जन जन।
3: जलाओ तो निकले जहरीली गैस, जमीन में गाढ़ो तो प्रदूषित हो माटी के अवशेष, हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाएं।
2: करें उचित प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, रखें सुरक्षित पर्यावरण और जीवन।
4: से नो टू प्लास्टिक।

0: ऐसा कार्यक्रम जिसमें महकते हैं जज्बात,
1: खिलता है आशाओं का सावन,
0: श्रोताओं की शब्दावलियों पर आधारित
1: वो कार्यक्रम है मन भावन।
2: मन भावन हर रोज दिन में 11:30 पर सुनिए आकाशवाणी रामपुर से मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 MHz पर।
0: चुनिंदा शानदार हिट फिल्मी गीतों के साथ कीजिए अपने दिन की खुशगवार शुरुआत।
2: सुनिए 102.9 मॉर्निंग हिट्स सवेरे 8:45 से 9:15 तक
0: प्रत्येक सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार।
1: 102.9 मॉर्निंग हिट्स आकाशवाणी रामपुर से।
3: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में अगला प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया कुछ क्षणों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाए, मन में ये संकल्प बनाए।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
0: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कहा, घुसपैठिए को देश से बाहर निकालना सरकार का संकल्प है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दो दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का किया शुभारंभ। कहा, किसानों की आजीविका को बेहतर बनाना और देशवासियों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना है सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस प्रशिक्षण व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा की। कहा, प्रशिक्षण व्यवस्था में सुनिश्चित की जाए गुणवत्ता, एकरूपता और पारदर्शिता। और तेज आंधी और गरज चमक के साथ हुई बारिश से लोगों को मिली भीषण गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने प्रदेश में 31 मई तक आंधी, बारिश और तेज हवाओं को लेकर जारी की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठियों की पहचान कर

0: निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर के एक कार्यक्रम में उन्होंने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय के बारे में चर्चा की।
1: घुसपैठियों को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करे।
0: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में दो दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। श्री चौहान ने कहा कि देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, किसानों की आजीविका को बेहतर बनाना और देशवासियों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
2: देश के किसानों के परिश्रम से, भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और नीतियों के कारण, हमारे वैज्ञानिकों ने जो नई नई किस्में बीजों की बनाई उनके कारण, राज्यों ने भी अपने अपने राज्यों में मेहनत की। इस बार सारे रिकॉर्ड उत्पादन के हमने तोड़े हैं इस वर्ष में। इस साल कुल मिलाकर जो खाद्यान्न उत्पादन के आंकड़े आ रहे हैं 3,765.63 टन अनुमानित है, जो पिछले साल से 188,00,000 टन अधिक है।
0: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भी जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
2: 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए। शहरी आवास योजना के मकान अलग है, उनको मिला के तो 4 करोड़ बहुत पहले पूरे हो चुके हैं। तो राज्यों को मैंने अपील की है कि समय पर लक्ष्य पूरा करें और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन उपलब्ध कराने का काम करें।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE मुख्यालय में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन और परिणाम के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को छात्रों की समस्याओं का समय पर पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया कि CBSE द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है।
3: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनकी हाथ में आए, ये OSM की व्यवस्था है। पहली बार देश में CBSE ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पुलिस प्रशिक्षण व्यवस्था और उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम के कार्यों की समीक्षा के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। पुलिस प्रशिक्षण व्यवस्था की कल उच्चस्तरीय समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिसिंग केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है, आधुनिक तकनीक, संवेदनशील व्यवहार, संवाद कौशल, साइबर अपराधों की समझ और फॉरेंसिक दक्षता प्रभावी पुलिसिंग की बुनियादी आवश्यकता बन चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशिक्षण व्यवस्था में गुणवत्ता, एकरूपता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम के कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिसकर्मियों की कार्यक्षमता और मनोबल को मजबूत करने के लिए बेहतर आवासीय एवं कार्य सुविधाएं आवश्यक हैं। उन्होंने पुलिस लाइन्स थाना

0: बैरक और अग्निशमन केंद्र के कार्य गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनका सादगीपूर्ण जीवन, किसानों के प्रति समर्पण और जन कल्याण की राजनीति सभी को सदैव प्रेरणा देती रहेगी। अयोध्या में आज श्रीराम मंदिर परिसर के परकोटे में बने मां भगवती मंदिर के शिखर पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति और प्रमुख संत साध्वी रितंबरा ध्वज फहराएंगी। कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक रिपोर्ट।
1: पहली बार राम मंदिर परिसर में 3000 से अधिक मातृ शक्तियों का एक साथ समागम होने जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी से जुड़ी महिला कार्यकर्ताओं समेत बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु समारोह में शामिल होंगी। सभी आमंत्रित मेहमानों को QR कोड युक्त प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं और स्कैनिंग के बाद ही मंदिर परिसर में प्रवेश मिलेगा। शाम 6 बजे माँ भगवती मंदिर के शिखर पर साध्वी रितंबरा और साध्वी निरंजन ज्योति ध्वजारोहण करेंगी। कार्यक्रम को लेकर रामनगरी में उत्साह का माहौल है। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की परीक्षा की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। NTA के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 और 7 जून को आयोजित की जाएंगी। NTA ने बताया कि रविवार को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं और इन्हें NTA की आधिकारिक वेबसाइट CUET.NTA.NIC.IN से डाउनलोड किया जा सकता है। प्रदेश के कई जिलों में बीती रात तेज आंधी और गरज चमक के साथ शुरू हुई बारिश से लोगों को फिलहाल भीषण गर्मी से राहत मिली है। कुछ जिलों से ओले पड़ने के भी समाचार मिले हैं। गोरखपुर और इसके आसपास के पूर्वी जिलों में कहीं कहीं रुक रुक कर बारिश हो रही है तो कुछ स्थानों पर आसमान में बादल छाए हुए हैं। बदायूं और बिजनौर सहित कुछ अन्य जिलों में बारिश के साथ साथ ओले पड़ने की सूचना है। फर्रुखाबाद, गाजियाबाद, हमीरपुर, अम्बेडकर नगर और कौशाम्बी सहित कई अन्य जिलों में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हुई बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश में कई स्थानों पर 31 मई तक आंधी, बारिश और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की है। इससे तापमान में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का अनुमान है। विभाग के अनुसार 1 जून से मौसम के शुष्क होने के संकेत हैं। मौसम विभाग ने खराब मौसम के दौरान लोगों को खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह भी दी है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कहा, घुसपैठियों को देश से बाहर निकालना सरकार का संकल्प है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का किया शुभारंभ। कहा, किसानों की आजीविका को बेहतर बनाना और देशवासियों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना है सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस प्रशिक्षण व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा की। कहा, प्रशिक्षण व्यवस्था में सुनिश्चित की जाए गुणवत्ता, एकरूपता और पारदर्शिता। और तेज आंधी और गरज चमक के साथ हुई बारिश से लोगों को मिली भीषण गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने प्रदेश में 31 मई तक आंधी, बारिश और तेज हवाओं को लेकर जारी की चेतावनी। इसके साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। प्रातः के 7:31 हुए हैं। आप प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का इंफरटेनमेंट प्रोग्राम सुबह सवेरे।

सुप्रभात, नमस्कार, आदाब और प्यारा सा गुड मॉर्निंग। आज एक नई सुबह की रोशनी, ढेर सारी उम्मीदें और मुस्कुराहटों के साथ कीजिए कबूल जवेरिया का नमस्कार। श्रोताओं, आज ईद उल अज़हा की रौनक अभी भी बरकरार है और आज इस मुबारक त्यौहार का दूसरा दिन है, जहां हर तरफ खुशियों की महक है, रिश्तों में अपनापन है और दिलों में शुक्रिया अदा करने का जज्बा है। आज 29 मई की सुनहरी सुबह सूरज अपनी किरणों के साथ दस्तक दे चुका है। पंछियों की चहचहाहट फिजाओं में मिठास घोल रही है और हवा का हर झोंका जैसे कह रहा है, उठिए, मुस्कुराइए, आगे बढ़िए, क्योंकि जिंदगी में खुश रहना भी एक कला है। और जो इंसान छोटी छोटी बातों में छोटी छोटी खुशियां ढूंढ लेता है, उसकी हर सुबह खूबसूरत बन जाती है और ज़िंदगी पुरसकून, बिल्कुल इस गीत की तरह।

श्रोताओं, आज 29 मई के इतिहास में क्या क्या हुआ था देश और दुनिया में, खास डालते हैं इस पर एक नज़र। आज 29 मई सन 1999 को नाइजीरिया का नया संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दी फोर्थ रिपब्लिक लागू किया गया था। आज ही के दिन भारत के दिग्गज पहलवान दारा सिंह ने मुंबई में अमेरिका के लाउन थेज को हराकर फ्री स्टाइल कुश्ती के विश्व चैम्पियनशिप हासिल की थी। आज ही के दिन 29 मई सन 1932 को महान राष्ट्रवादी पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा अखिल भारतीय स्वदेशी संघ की स्थापना की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना और देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। इस दिवस को स्वदेशी दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इसी के साथ आगे जानते हैं 29 मई के इतिहास में जन्मी महान हस्तियों के बारे में। हिंदी साहित्य के जाने माने निबंधकार और पत्रकार कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जन्म भी 29 मई सन 1906 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के गांव में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जगत के खिलाड़ी हमजा शेख का जन्म भी 29 मई सन 2006 को हुआ था। ये इंग्लैंड के एक प्रतिभाशाली दाएं हाथ के बल्लेबाज और लेग ब्रेक गेंदबाज हैं। 29 मई सन 1929 को ब्रिटिश भौतिकी विज्ञानी पीटर हिक्स का जन्म भी हुआ था, जो कि इंग्लैंड के न्यूकैसल अपॉन टाइन में जन्मे थे। इन्होंने उप परमाणु कणों से द्रव्यमान पर अपने ग्राउंड ब्रेकिंग कार्य और हिक्स बेसॉन के प्रस्ताव के लिए 2013 का भौतिकीय नोबेल पुरस्कार जीता था। मशहूर हास्य और विज्ञान कवि हुल्लात मुरादाबादी का जन्म भी 29 मई सन 1942 को गुजरनवाला यानी अविभाजित पाकिस्तान में हुआ था। 29 मई सन 1954 को भारतीय रंगमंच और फिल्म अभिनेता पंकज कपूर का जन्म भी हुआ था। कार्यक्रम में आगे जानते हैं जिन्होंने 29 मई यानी आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा। भारतीय सिनेमा और हिंदी रंगमंच की ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले दिग्गज अभिनेता पृथ्वीराज कपूर जी का निधन भी आज ही के दिन हुआ था। इन्होंने भारत में पहली बोलती फिल्म आलमारा में अभिनय किया था। ये कपूर खानदान के संस्थापक और हिंदी फिल्म जगत के पहले सुपरस्टार थे। आज ही के दिन सन 1979 को डॉक्टर टी एम ए पाई यानी टॉन्स माधवन अनंथा पाई का निधन भी हुआ था। भारत में पहला निजी विश्वपोषित मेडिकल कॉलेज यानी सेल्फ फाइनेंसिंग कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने के लिए इन्हें जाना जाता है। श्रोताओं, ये तो था आज का इतिहास। इसी के साथ अगर इतिहास की बात हो भी रही है तो कहीं ना कहीं ऑल इंडिया रेडियो यानी प्रसार भारती का इतिहास भी भारत के प्रसारण जगत की एक गौरवशाली यात्रा है, जो देश के कोने कोने तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए लगातार

हजार मील के नए पत्थर स्थापित कर रहा है। रेडियो की शुरुआत तो भारत में 1920 के दशक में हुई थी। देश को मनोरंजक और सूचनाएं प्रदान करने के लिए रेडियो को आधिकारिक तौर पर आकाशवाणी के रूप में भी जाना जाने लगा। आज हमसे रेडियो के प्रति अपने विचार साझा कर रहे हैं डॉक्टर अरुण कुमार, प्रोफेसर हिंदी विभाग, राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामपुर।

0: मैं डॉक्टर अरुण कुमार, प्रोफेसर हिंदी विभाग, राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामपुर, आकाशवाणी रेडियो को 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई देता हूं। और आकाशवाणी रामपुर ने अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं जिससे राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से देश और समाज को अनेक प्रकार से लाभ पहुँचा है। इसमें अपनी बात कार्यक्रम, युववाणी कार्यक्रम, समसामयिक टॉक शो, डिजिटल लाइव ब्रॉडकास्ट, फरमाइशी फिल्मी गीत, साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम हिंदी और उर्दू माध्यम, अंग्रेजी माध्यम से, कृषि और ग्रामीण कार्यक्रम, ये निश्चित रूप से जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं आकाशवाणी रेडियो के माध्यम से, ये हमारे राष्ट्र, देश व समाज को, ये कार्यक्रम शिक्षा जगत से लेकर के अर्थ जगत तक लोगों को लाभ पहुंचाते हैं। लोग इससे प्रेरित होते हैं, लोग इससे बहुत कुछ सीखते हैं और यही एक आकाशवाणी रेडियो की सार्थकता है। जबकि आधुनिक युग में ग्लोबलाइजेशन का युग है, वैश्वीकरण का युग है और इस युग में इंटरनेट, कंप्यूटर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वीडियो कॉलिंग, सारी चीजें उपलब्ध हैं, लेकिन कुछ विशेष बातें ऐसी हैं जिससे कि आकाशवाणी अपनी महत्ता को बनाए रखा है। स्थानीय स्तर पर लोग इससे जुड़े हुए हैं और अब भी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। आज के 20 साल पहले अगर हम देखें तो हर घर में रेडियो होता था, हर हाथ में रेडियो होता था और इस रेडियो के माध्यम से लोग बड़े बड़े प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते थे, लोग जो है शिक्षा जगत में लाभ कमाते थे, लोग अर्थ जगत, किसान और लोकगीत, न जाने कितने कार्यक्रम ऐसे थे जो कि मनोरंजन के साधन के रूप में आकाशवाणी रेडियो प्रस्तुत करता था। और इन कार्यक्रमों से जो देश की आवाम, देश की जनता सीखती थी, वही उससे उसका अनुपालन करती थी। आज के परिवेश में रेडियो ने निश्चित रूप से अपने आप को अपग्रेड किया है, उच्चीकृत किया है, तकनीकी रूप से भी और कार्यक्रमों के माध्यम से भी। तो इस अपग्रेडेशन में, इस उच्चीकरण में आकाशवाणी रेडियो राष्ट्र व समाज के साथ कदम से कदम मिला करके अपनी महत्ता को स्थापित किए हुए है, यही इसकी सार्थकता है। मैं आकाशवाणी रेडियो रामपुर और प्रसार भारती को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद, हार्दिक आभार।
1: अभी आपने सुने डॉक्टर अरुण कुमार, जो कि प्रोफेसर हैं हिंदी विभाग, राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामपुर में, इनके विचार।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
1: आई एम हियर
2: पी तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना
1: दिमाग चार्ज कर अपना
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक
1: देखा
2: पापा रुको मैं पे करता हूं नो सिग्नल
3: अब क्या करोगे
2: फ्री वाईफाई है ना
1: बुद्धू सुधर जा
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय
3: आरबीआई कहता है
4: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट

श्रोताओं, इसी के साथ आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। 29 मई सन 1987 को इनका निधन हुआ था। चौधरी चरण सिंह जी को किसानों की आवाज़ कहा जाता था। इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कृषि और ग्रामीण विकास को सर्वोपरि रखा। इन्होंने उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून लाने में सबसे अहम भूमिका निभाई। इन्होंने किसानों को सीधे उनकी ज़मीन का मालिकाना हक दिलाने का काम दिया। इस दिन राजनीतिक नेता, किसान संगठन और आम नागरिक इनकी समाधि किसान घाट यानी जो कि नई दिल्ली में स्थित है, जाकर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और इनके आदर्शों को याद करते हैं। और इस दिवस को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। मरणोपरांत आपको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। श्रोताओं, इसी के साथ आज संयुक्त राष्ट्रीय सैनिक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स भी है। यह दिवस प्रत्येक वर्ष 29 मई को मनाया जाता है। 29 मई सन 1948 को संयुक्त राष्ट्र का पहला शांति मिशन संयुक्त राष्ट्रीय युद्ध विराम पर्यवेक्षण संगठन यानी UTSO ने फिलिस्तीन में अपना संचालन शुरू किया था। ये दिन वैश्विक शांति अभियान में सेवारत और अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैन्य, पुलिस और नागरिक कर्मियों के साहस तथा बलिदान को सम्मान देने के लिए समर्पित है। आज के दिन पिछले एक वर्ष के दौरान शांति के लिए शहीद हुए शांति सैनिकों को मरणोपरांत प्रतिष्ठित

डेक हैमरशेल्ड मेडल से सम्मानित किया जाता है। इस दिन उन सभी पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के झंडे तले विश्व शांति बनाए रखने के लिए सन 1948 में अपनी सेवा दी थी। श्रोताओं, इसी के साथ आज अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस भी है जो कि हर साल 29 मई को मनाया जाता है। सन 1953 को सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे शेरपा ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, उस पर पहुंचकर सफलतापूर्वक कदम रखा था। ये ऐसा करने वाले दुनिया के पहले ज्ञात मानव बने। इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने मानव साहस और इच्छा शक्ति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया।

इसी के साथ गर्मी के मौसम में खूब पानी पिएं, धूप में जाने से बचें, हल्के सूती कपड़े पहने, साथ ही मौसमी फलों का सेवन करें। घर को ठंडा रखें, बच्चे और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। इसी के साथ खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। सुबह सवेरे संपन्न करने की जवेरिया को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का इंफरटेनमेंट प्रोग्राम सुबह सवेरे। ये प्रोग्राम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रातः के 8 बजने को है। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसरा

0: के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। और आईपीएल क्रिकेट में आज न्यू चंडीगढ़ में दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से। और अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई।
1: भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। श्री अमित शाह का पिछले 6 महीनों में कच्छ का ये दूसरा दौरा है।

0: इससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उधर उड़ानें बंद होने से इसराइल में रह रहे 40,000 से अधिक भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। सीमित उड़ान विकल्पों के कारण यात्रा खर्च भी काफी बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। ये हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले 3 दिनों में ये दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला खेलेगी। राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर दूसरे क्वालिफायर में जगह बनाई, जबकि गुजरात टाइटंस पहले क्वालिफायर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार का सामना करना पड़ा। 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय महिला टीम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 38 रन से हरा दिया। ये मुकाबला चेम्सफोर्ड स्थित काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में बादल गरजने और बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई बारिश ने उमस और भीषण गर्मी से राहत दिलाई। विभाग के अनुसार आज बिहार, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने सीबीएसई प्रकरण में शिक्षा मंत्री के बयान को प्रमुखता दी है, समस्याओं का समाधान करेंगे, दोषियों को नहीं बख्शेंगे। राजस्थान पत्रिका ने 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों पर लिखा है, सरकार सख्त, पहली बार सेना पहुंचाएगी नीट के पेपर, हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। अमर उजाला ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को अहमियत दी है, सिद्धरमैया ने छोड़ी मुख्यमंत्री की कुर्सी, कर्नाटक में अब शिवकुमार का होगा राज। दैनिक ट्रिब्यून ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, ट्रॉमा केयर का अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग। न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 3 महीने के भीतर आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 पर शुरू करने और एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर सीमा सुरक्षा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, आज भी सीमा पर भारत को अक्सर घुसपैठ और आतंकी हमलों का सामना करना पड़ता है। इसकी बड़ी वजह सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था के तार और निगरानी तंत्र का अपेक्षित स्तर पर मजबूत न होना माना जाता है। दैनिक जागरण ने मौसम में हुए बदलाव पर लिखा है, तेज हवा और वर्षा ने तोड़ा गर्मी का गुरूर। नवभारत टाइम्स ने पद्मश्री से सम्मानित मशहूर शायर बशीर बद्र के निधन की खबर प्रथम पृष्ठ पर दी है, और फिर जिंदगी की शाम हो गई, थम गया अल्फाज का जादू, अलविदा बशीर बद्र। दैनिक भास्कर ने हार्वर्ड के एक शोध को विशेष खबर बनाया है, जीन क्लॉक बताएगी किस उम्र में थमेगी जिंदगी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Varma. The headlines. Home Minister Amit Shah says, Center's high-level committee on artificial

0: आगे पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मसनू आबादियाती तब्दीलियों से मुतालिक मरकज की आला सतही कमेटी इस मामले से निमटने के लिए कानूनी जरूरत का भी जायजा लेगी। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इस लानत से निमटने के सिलसिले में दोहरा मेयार नहीं हो सकता। बीजेपी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए पार्टी के सदर मुकर्रर किए हैं। मगरबी एशिया में जारी जुग्राफियाई और सियासी गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान एयर इंडिया ने जुलाई के आखिर तक इसराइल के लिए अपनी परवाजें मुअत्तल रखने में तौसी की है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम न्यू चंडीगढ़ में क्वालिफायर 2 के अहम मैच में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मरकज की आला सतही कमेटी गैर कानूनी तौर पर मुल्क में दाखिल होने और दीगर गैर फितरी वजूहात के सबब मसनू आबादियाती तब्दीलियों के सिलसिले में इस बात का भी जायजा लेगी कि क्या इस मामले से निमटने के लिए कानून की जरूरत है या नहीं। जनाब शाह ने कहा कि ये कमेटी मुल्क भर में हो रही मसनू आबादियाती तब्दीलियों की वजूहात का भी जायजा लेगी। उन्होंने कहा कि वो जरूरी इसलाही इकदाम पर तबादला ख्याल करेगी और इस बात का पता लगाएगी कि क्या किसी मखसूस कानून की अमलदारी लाजिमी है।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना, ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने

0: एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर्ड कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी, और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: वजीर दाखिला कल गांधीनगर में 340 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करने और संगे बुनियाद रखने के बाद एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। जनाब शाह ने मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस हुकूमत की बांग्लादेश से दरअंदाजी के लिए नुक्ताचीनी की और दावा किया कि रियासत में असेंबली इंतखाबात के बाद सूरत हाल तब्दील हुई है।
0: भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
1: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज गुजरात के अपने दौरे के दूसरे दिन कच्छ में बैनुल अक्वामी सरहद से मुत्तसिल इंतहाई अहमियत के हामिल और हसास हरामी नाला और दीगर छोटे नालों के इलाकों का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान वो सरहदी हिफाजती फोर्स की जानिब से किए गए सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेंगे और सीनियर अहदेदारान के साथ सरहद पर सिक्योरिटी चैलेंजों के सिलसिले में तबादला ख्याल करेंगे। वजीर दाखिला बॉर्डर आउटपोस्ट G7 का इफ्तिताह करेंगे और BSF एहलकारों के साथ बातचीत करेंगे। वो OP टावर 1170 पर कंट्रोल रूम भी जाएंगे और हरामी नाला खित्ते का कश्ती में जायजा लेंगे। बाद में दिन में जनाब शाह भुज में BSF सेक्टर हेडक्वार्टर्स में सरहद से मुतालिक मामलात पर एक आला सतही मीटिंग की सदारत करेंगे। जनाब शाह का 6 माह के अंदर ये कच्छ का दूसरा दौरा है। उन्होंने गुजश्ता बरस नवम्बर में BSF के कौमी योम तासीस की तकरीबात में शिरकत के लिए भुज का दौरा किया था। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने दहशतगर्दी के खिलाफ फैसलाकुन कार्रवाई पर जोर दिया है और कहा है कि इससे निमटने के सिलसिले में दोहरा मेयार नहीं हो सकता। रूस में बैनुल अक्वामी सिक्योरिटी से मुतालिक एक फोरम से खिताब करते हुए जनाब डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार ममालिक को अपने इंतखाब का जायजा लेना होगा और ये फैसला करना होगा कि क्या वो दहशतगर्दी को शह देने वालों की मदद फराहम करना चाहते हैं या उससे निमटने के लिए फैसलाकुन कार्रवाई करना चाहते हैं। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में मॉस्को में भारतीय सिफारतखाने ने कहा है कि जनाब डोभाल ने मॉस्को में बैनुल अक्वामी सिक्योरिटी के पहले फोरम और सलामती से मुतालिक उमूर के लिए आला नुमाइंदों की 14वीं मीटिंग में शिरकत की। इस मीटिंग की मेजबानी रूसी फेडरेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ने की थी और इसमें कसीर कुतबी दुनिया में बैनुल अक्वामी सिक्योरिटी को लाहिक चैलेंजों और खतरात पर तबादला ख्याल किया गया। बीजेपी ने पंजाब हरियाणा दिल्ली और त्रिपुरा के लिए पार्टी के नए सदर मुकर्रर किए हैं। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन ने मशरकी दिल्ली के रुकने पार्लियामेंट और मरकजी वजीर हर्ष मल्होत्रा को पार्टी की दिल्ली इकाई का सदर मुकर्रर किया। डॉक्टर अर्चना गुप्ता को हरियाणा बीजेपी की सरबरा और केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब बीजेपी का नया सदर मुकर्रर किया गया है। अभिषेक देब्रोय त्रिपुरा के बीजेपी सदर होंगे। इन तकर्रियों के साथ जनाब नबीन ने मुल्की सतह के साथ साथ रियासतों में जिम्मेदारी निभाने वालों की नई टीम के इंतखाब का अमल शुरू कर दिया है। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन उत्तराखंड के 3 रोजा दौरे पर हैं। आज अपने दौरे के दूसरे दिन वो मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। पहले दिन देहरादून में पार्टी दफ्तर में कौमी सदर की जेर सदारत रियासती वुजरा ग्रुप और कोर कमेटी की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में तंजीम की सतह पर तौसी, बूथ को मजबूत करने, अवाम से राबता मुहिम और आइंदा प्रोग्रामों के खाके पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। बीजेपी के रियासती सदर महेंद्र भट्ट ने कहा है कि पार्टी लीडर साबिका इंतखाबात में जहां पार्टी को कम वोट मिले उन बूथ पर जाएंगे।
2: माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोर कमेटी वहाँ मार्ग किया, मुख्य रूप से 2027 चुनाव में बूथ प्रबंधन पे आपका मार्गदर्शन रहा। जो बूथ हम लोकसभा चुनाव में और उसके पहले विधानसभा चुनाव में जो बूथ हम जीत नहीं पाए थे उन बूथों के लिए हमने टीम बनानी है। कोर कमेटी के हमारे 23 सदस्य है, 2-2 दिन के प्रवास पर कुछ विधानसभाओं के अंदर रहेंगे जहाँ उस विधानसभा की कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में कबायली सिक्योरिटी फोरम के नुमाइंदों से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि कबायली बिरादरी के तई मजकूरा नुमाइंदों का जज्बा काबिले सताइश है। उन्होंने बताया कि मीटिंग के दौरान कबायली बिरादरियों की तरक्की और उन्हें बाइख्तियार बनाए जाने से मुतालिक

102.9 मॉर्निंग हिट्स सुनने वाले सभी श्रोत सभी साथियों को जवेरिया का नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत कमाल खान और पलक मुच्छल के स्वर में, गीत के बोल लिखे हैं शब्बीर अहमद ने और संगीत है हिमेश रेशमिया का। फिल्म का नाम है किसी का भाई किसी की जान।

कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है रईस। गायक कलाकार हैं अरिजीत सिंह और हर्षदीप कौर। गीत के बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत है प्रीतम का।

0: अभी आपने सुना अरिजीत सिंह और नीति मोहन को। गीत के बोल लिखे थे अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत था प्रीतम का। फिल्म का नाम था कलंक। आप सुन रहे हैं इस समय आकाशवाणी रामपुर से कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स। कार्यक्रम का अगला गीत सुनने से पहले लेते एक छोटा सा ब्रेक।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: आप सुन रहे हैं इस समय आकाशवाणी रामपुर से कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस से। गायक कलाकार हैं चिन्मय शिवदा और गोपी सुंदर। गीत के बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत है विशाल शेखर का।

अभी आपने सुना किक फिल्म का गीत। गायक कलाकार थे सलमान खान, श्रेया घोषाल और मीर्स ब्रदर। गीत के बोल लिखे थे

कुमार ने और संगीत था मीट ब्रदर्स अंजन का। आप सुन रहे हैं इस समय आकाशवाणी रामपुर से कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स। कार्यक्रम का अगला व अंतिम गीत फिल्म बॉडीगार्ड से।

राहत फ़तेह अली खान और श्रेया घोषाल के गाए फिल्म बॉडीगार्ड के इसी गीत के साथ कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स संपन्न करने की जवेरिया को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे 102.9 मॉर्निंग हिट्स। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अब आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से जिले की हलचल रिले की जाएगी।

0: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए सहारनपुर और हापुड़ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं सहारनपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विजयंत सैनी का।
1: पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जनपद इन दिनों भीषण गर्मी से तप रहा है। गर्मी ने बीते 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रशासन एवं नगर निगम ने राहत के कार्य तेज किए हैं। जिले में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकानों की सूचीकरण कार्य के लिए कुल 1383 परगणक और 223 पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है। यह अभियान 20 जून 2026 तक चलाया जाएगा। प्रशासन ने नागरिकों को स्वयं गणना की सुविधा भी दी, जिसमें 7 मई से 21 मई तक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लोग स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सके। शिक्षा के क्षेत्र में भी सहारनपुर को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता संबंधी राष्ट्रीय रिपोर्ट में जिले के आंगनबाड़ी आधारित शिक्षा मॉडल को सक्सेस स्टोरी के रूप में स्थान दिया गया है। मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन के निर्देशन में आईटीसी मिशन सुनहरा कल प्रथम संस्था एवं आईजीडी के सहयोग से संचालित इस कार्यक्रम के तहत 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के भाषा विकास, सीखने की अक्षमता और सामाजिक व्यवहार को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नीति आयोग द्वारा मिली इस सराहना से सहारनपुर की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर और भी मजबूत हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में जिले की बेटियों ने भी शानदार प्रदर्शन कर गौरव बढ़ाया है। सीबीएसई 12वीं परीक्षा परिणाम में देवबंद की छात्रा नंदिनी कुशवाहा ने 98.8% अंक प्राप्त कर जिला टॉपर बनने का गौरव हासिल किया। नैना स्वामी 98.4

0: कुमार चौहान के निर्देश पर बीडीएम पब्लिक स्कूल शांति नगर और भगवती देवी मेमोरियल पब्लिक स्कूल लेबर कॉलोनी के प्रबंधकों एवं प्रधानाध्यापिकाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जांच में फर्जी दावों के आधार पर सरकारी धनराशि प्राप्त करने की पुष्टि होने के बाद 32.61 लाख रुपए की वसूली के आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही दोनों विद्यालयों की मान्यता समाप्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। प्रशासन की इस कार्यवाही से शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ बीते दिनों जिले में बड़ी कार्रवाई हुई। देवबंद में एंटी करप्शन विजिलेंस टीम ने बिजली विभाग के एसडीओ दिनेश कुमार मौर्य और संविदा कर्मी मोहम्मद शाकिर को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता मोहम्मद एहरार ने आरोप लगाया था कि आटा चक्की के लिए बिजली कनेक्शन और सर्वे सही कराने के बदले रिश्वत मांगी गई थी। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस टीम ने जाल बिछाकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। उधर सहारनपुर की उप श्रम आयुक्त वंदना को गंभीर अनियमितताओं के आरोप में निलंबित किया गया। उन पर एक निजी अस्पताल निर्माण मामले में नियम विरुद्ध 18 लाख रुपए की वसूली का नोटिस जारी करने और श्रम बोर्ड को वित्तीय नुकसान पहुंचाने के आरोप लगे हैं। आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण शर्मा की शिकायत पर हुई जांच में आरोप सही पाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। सहारनपुर में ईद उल अजहा का पर्व पूरे धार्मिक उत्साह और भाईचारे के साथ मनाया गया। शहर में जिले भर की ईदगाहों व मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा कर देश में अमन चैन खुशहाली और तरक्की की दुआएं मांगी। बकरीद को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। डीआईजी अभिषेक सिंह, डीएम अरविंद कुमार चौहान और एसएसपी अभिनंदन ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान ने बताया,
1: बहुत ही सही तरीके से यहाँ पे नमाज जो संपन्न हुई है, सभी लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से जहाँ पे उनके डिजाइनेटेड प्लेसेस थे वहाँ पे नमाज अदा की है और इस अवसर पे मैं सभी जनपद वासियों को बहुत ही शुभकामनाएं देता हूँ।
0: सहारनपुर में कैराना से सपा सांसद इकरा हसन समेत 32 लोगों पर थाना सदर बाजार में एफआईआर दर्ज हुई। उन पर डीआईजी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन के दौरान सरकारी कार्यालय में बाधा डालकर चक्का जाम करने का आरोप है। मामला मोनू कश्यप हत्याकांड में जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन से जुड़ा है।
2: सहारनपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हापुड़ जिले की हलचल। आलेख व स्वर है रविंद्र कुमार का।
3: जनपद हापुड़ की तीर्थनगरी गढ़मुक्तेश्वर ज्येष्ठ गंगा दशहरा पर्व पर श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। ज्येष्ठ मास में गंगा दशहरा पर्व का गंगा स्नान का पौराणिक महत्व है। श्रद्धालुओं का काफी जनसैलाब उमड़ा। गंगा दशमी के ही दिन मां गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान सहित यूपी के कई जनपदों से श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे। गंगा स्नान को लेकर हापुड़ जिला प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के पुख्ता इंतजाम किए। सुरक्षा की दृष्टि से काफी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए नाव और गोताखोर भी लगाए गए। वहीं महिलाओं के लिए अलग से चेंजिंग रूम बनाए गए। जनपद हापुड़ में भीषण गर्मी का प्रकोप अधिक बढ़ने से इसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। ऐसे में बाहर निकलना काफी मुश्किल भरा है। हीट वेव का असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। लोगों को स्वस्थ रखने के लिए जनपद हापुड़ का स्वास्थ्य विभाग और जिला आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से सक्रिय है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सलाह दी गई है कि तेज धूप से बचें, हो सके तो छाते या कपड़े का प्रयोग करें, पानी नियमित रूप से पिएं, सुबह 10 से 4 बजे तक किसान खेतों में काम करने से बचें, ताजा खाना और फलों का सेवन करें। अधिक गर्मी से हीट वेव के चलते स्वास्थ्य विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग ने एडवाइजरी जारी की है कि आम जनता गर्मी से बचाव करे ताकि स्वास्थ्य पर कुप्रभाव न पड़ सके। जनपद हापुड़ में जिला अस्पताल में पहुँचने वाले रोगियों के सभी वार्डों में एसी लगाए गए हैं। इसके अलावा बाहर जगह जगह कूलर लगाए गए हैं। वातानुकूलित इमरजेंसी वार्ड बनाया गया है ताकि आवश्यकता पड़ने पर रोगियों को भर्ती किया जा सके। जिला अस्पताल के मुख्य अधीक्षक ने रोगियों के लिए ओआरएस के घोल के कैंपर की व्यवस्था की है। वहीं अस्पताल में आने वाले रोगियों को ओआरएस के पैकेट भी प्रदान किए जा रहे हैं। लोगों को हीट वेव से बचाने के लिए विशेष सावधानी बरतने और खानपान में विशेष सावधानी बरतने की सलाह भी दी जा रही है। जनपद हापुड़ में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की याद में एक माह तक चलने वाले शहीद मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में शहीदों को समर्पित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। जनपद हापुड़ खाद्य विभाग की टीम ने बड़ा खुलासा किया है। जिले में लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले गोदाम पर बड़ी कार्रवाई।

0: करते हुए भारी मात्रा में मिलावटी माल को नष्ट कराया। जनपद में एक गोदाम में भारी मात्रा में लाल सॉस बनाई जा रही थी, जो मिलावटी सामान से बनाई जा रही थी। इसके साथ ही सॉस को गाढ़ा करने के लिए कई प्रकार के केमिकल सामान और अन्य रंग इस्तेमाल किया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने चंडी रोड मेरठ गेट पुलिस चौकी के पास एक दुकान पर छापा मारा, जहां टीम ने 30 पेटी सॉस को सीज कर दिया। इसमें 360 बोतल पैक थी। इसकी अनुमानित कीमत 22,680 रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा 335 किलो सॉस को नष्ट कराया गया। इसकी अनुमानित कीमत करीब 16,450 रुपए बताई जा रही है। सॉस के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ऊर्जा बचत की अपील को साकार करने एवं एकल वाहनों के प्रयोग के स्थान पर सार्वजनिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार PPP मॉडल पर आधारित गांव-गांव तक बस सेवा प्रदान कर रही है। जनपद हापुड़ में इस मॉडल के तहत एक बस का अनुबंध करके गाँव तक बस सेवा शुरू की गई है, जिसका शुभारंभ रोडवेज डिपो से भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अवनीश त्यागी एवं सदर विधायक विजयपाल आरती ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में कार्य कर रही योगी आदित्यनाथ की सरकार गांव-गांव तक सुविधा उपलब्ध करा रही है। अब ऐसे गाँव में भी बस पहुँचेगी जिन गाँवों में आने जाने की कोई साधन नहीं थे। जनता और छात्र छात्राओं को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। यह योजना ग्रामीणों के लिए काफी लाभकारी साबित होगी। जनपद हापुड़ में PM केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत COVID-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को भारत सरकार द्वारा 10 लाख रुपए 23 वर्ष पूर्ण होने पर देने का प्रावधान के तहत जिला अधिकारी ने चेक प्रदान किया। जनपद हापुड़ में उक्त योजना के अंतर्गत 11 बच्चों को चिन्हित किया गया।
1: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जिले की हलचल।
2: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं इस समय हमारी प्रथम सभा के प्रसारण। प्रातः के 9:25 हुए। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रेरक प्रसंग। हमारे आज का प्रेरक है प्रेमचंद

एक बार उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित एक सभा में बुलाया गया। व्याख्यान के उपरांत जलपान के दौरान एक छात्र ने उनसे पूछा, आपके जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा क्या है? प्रेमचंद जी बोले, मेरे जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा ये है कि ईश्वर मुझे सदा मनहूसों से बचाए रखे। इतना कहकर मुंशी प्रेमचंद ने एक जोरदार ठहाका लगाया। गंभीर का पर्दा हट चुका था। वातावरण में चारों ओर हंसी खुशी छा गई। प्रेमचंद जी की हंसी बहुत मशहूर थी। बहुत से लेखकों के बारे में मशहूर है कि वो ऐसे कागज पर लिखते हैं, फला मूड में लिखते हैं और कोई फला किस्म की खास कलम से लिखते हैं, मगर उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद इस दिखावटी तामझाम से कोसों दूर थे। एक बार किसी ने उनसे पूछा, मुंशी जी आप कैसे कागज और कैसे पेन से लिखते हैं? पहले तो सवाल सुनते ही मुंशी प्रेमचंद ने जोरदार ठहाका लगाया, फिर बोले, ऐसे कागज पर जनाब जिस पर पहले से कुछ न लिखा हो, यानी कि कोरा हो, और ऐसे पेन से जिसका निब न टूटा हो। फिर थोड़ा गंभीर हुए और बोले, भाईजान ये सब चोंचले हम जैसे कलम के मजदूरों के लिए नहीं है। ऐसा सादा सा जीवन जीते थे उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद। उस जमाने में जी निप चला करती थी, होल्डर में लगाकर वो उसी से लिखते थे, बीच बीच में उसी से अपना दांत भी खोदते जाते थे। वो जब लिखने बैठते तो उनके होंठ स्याही से रंग उठते थे। उत्तर प्रदेश के गवर्नर सर मालकम हेली ने

0: जब सुप्रसिद्ध उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद को यह संदेश भिजवाया कि वो उन्हें राय साहब का खिताब देना चाहते हैं। चिंतित हो गए वो। उनकी पत्नी ने इस चिंता का कारण पूछा तो बोले, गवर्नर साहब मुझे राय साहब का खिताब देना चाहते हैं। पत्नी बोली, तो इसमें चिंता कैसी, ले लीजिए, लेकिन सिर्फ खिताब ही देना है या कुछ और भी? पत्नी ने पूछा, इशारा कुछ और के लिए भी है। तो फिर ले लीजिए, इतना क्या सोच रहे हैं? लेकिन तब मैं जनता का आदमी न रहकर पिट्ठू बन जाऊंगा। पिट्ठू? ये सवाल किया उनकी पत्नी ने। वैसा ही जैसे और लोग हैं। अभी तक तो मैं जनता के लिए लिखता हूं, पर राय साहब बनने के बाद सरकार के लिए लिखना पड़ेगा। फिर ऐसा गवर्नर को क्या उत्तर दीजिएगा? पत्नी से सहमति पाकर प्रेमचंद खिल उठे, बोले, लिख दूंगा, जनता की राय साहबी ले सकता हूं, सरकार की नहीं। ऐसे थे मुंशी प्रेमचंद और उनके जीवन से जुड़े हुए अनेक प्रसंग।
1: अभी आपने सुना प्रेरक प्रसंग। आज के प्रेरक थे प्रेमचंद। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर आप सुन रहे हैं इस समय हमारी प्रथम सभा के प्रसारण।

0: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। प्रातः के 9:30 हुए हैं। अब पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम
1: समीने बज। आज का आपका पसंदीदा उर्दू प्रोग्राम लेकर आपके मेजबान रबाब अंजुम और
2: फरीदुल्ला खान हाजिर हैं। सलामे मोहब्बत कबूल कीजिए
1: और साथ ही सलामे ईद भी कबूल कीजिए।
2: जी बिल्कुल,
1: हमारे तमाम सुनने वालों को जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचे ईद उल अज़हा की सभी कल्ब से मुबारकबाद।
2: जी और हज बैतुल्ला की भी बहुत मुबारकबाद कबूल हो।
1: बेशक समीने बज़्म, मेरे रब की अता है कुर्बानी, मेरे रब की अता है कुर्बानी, राह हक का पता है कुर्बानी। सुन्नत हजरत खलील है ये, सुन्नत हजरत खलील है ये, और खुदा की रजा है कुर्बानी। सैयदुल अंबिया ने भी की है, सैयदुल अंबिया ने भी की है, कितनी जी मरतबा है कुर्बानी। लफ्ज़ व नहर से साफ जाहिर है हुक्म रब्बुल उला है कुर्बानी। रब से खुल्दे बरी दिलाने का, रब से खुल्दे बरी दिलाने का बिल यकीन वास्ता है कुर्बानी। आपसी रंजिशें मिटा कर अब दिल से तू दिल मिला है कुर्बानी। मेरे रब की अता है कुर्बानी, राह हक का पता है कुर्बानी।
2: बेशक
1: ये ईद जिसे हम ईद उल अज़हा भी कहते हैं, ईद उल ज़ुहा भी कहते हैं, ये कुर्बानी की ईद है। और कुर्बानी सिर्फ जानवरों की ही नहीं, सिर्फ किसी जान की ही नहीं, बल्कि अपनी अना की, अपने तकब्बुर की, अपनी अनानियत की कुर्बानी का नाम हमारी ज़िंदगी में ईमान का हिस्सा है। फरीद, ये कुर्बानी सुन्नत इब्राहिम की याद दिलाती है और उसी को ता क़यामत अदा करने का हुक्म हमारे रब्बुल आलमीन ने दिया।
2: बेशक,
1: और तमाम अंबिया ने भी उसको कबूल किया और उस सुन्नत को अदा किया और

0: आराम से ले जाओगे। मैंने कहा कोई पास नहीं बनवाऊंगा, जब यहाँ पर आया हूँ मैं
1: बिल्कुल
0: तो मुझे ये खुद ही बुलाएंगे यहाँ पर
1: बिल्कुल।
0: और ऐसा लगा जैसे पता नहीं भीड़ थी इकट्ठी, लाइन चल रही थी, सबको पीछे कर दिया गया और मैं आगे पहुंच गया वहां पर, जो मेरे साथ लोग थे मैं उनको भी लेकर गया वहां पर।
1: और आपके दिल की लगन थी
0: बिल्कुल, जो मेरे साथ थे मैंने उनसे कहा तुम भागना मत, मेरे साथ में रहना, मैं लेके चलूंगा क्योंकि मुझे बुलाया है। तो आप अंदर, जब हम यहाँ आए हैं तो नफिल अगर हमें अल्लाह ताला का हुक्म है तो हम यहाँ पढ़ के ही जाएंगे। और ये तो पूरी जमीन ही जन्नत की जगह है,
1: बेशक।
0: क्यों? क्योंकि आप मौजूद हैं वहां पर।
1: सही बात
0: है। जब वहां से रुखसती हो रही थी हमारी, जब हम आ रहे थे, जाने को बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था, ये दिल चाह रहा था कि शायद यहीं पर ही कयाम कर लें और यहीं पर ही
1: खात्मा
0: हो जाए और जन्नतुल बकी में हमें मिट्टी नसीब हो जाए और हम चले जाएं। एक दो जनाजों में शिरकत भी करी मैंने, देखा कि बहुत बड़ा कब्रिस्तान है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल बराबर में है, बीबी फातिमा का और उस्मान गनी का वहाँ पर ही मौजूद हैं। और भी ये तो अनगिनत सहाबा इकराम कितने मौजूद होंगे, अल्लाह के चाहने वाले बंदे कितने मौजूद होंगे वहाँ पर, अनगिनत जिसे कहते हैं। और खैर, वो वहाँ से जब हमारी रुखसती हुई तो हम मक्के शरीफ के लिए बांधा जाता है एहराम, हमने वहाँ से नियत की और हम मक्के के लिए रवाना हो गए। और जब मक्के में मौजूद उम्रे के लिए, कि पहले उमरा होगा फिर, क्योंकि जो बाहर से आता है उसे मीकात में एहराम बांधना पड़ता है और नफिल पढ़ने पड़ते हैं और नियत करनी पड़ती है, तो वो मदीने से कुछ दूर ही 5 या 10 किलोमीटर दूर मीकात शुरू हो जाती है, वहाँ से हमने हदबंदी जब हो गई तो हमने वहाँ से एहराम बांधा और वहाँ पर आ गए। फिर हमने, और जब आए और हमने ज़ियारत की काबे की, तो मत पूछिए क्या नज़ारा था,
1: नज़ारा होगा वाकई,
0: जो मतलब सोचो कि क्या मंजर, के पहली नजर जब पड़ी काबे पे तो वाकई में मतलब हमें होश नहीं कि हम
1: पहली नजर क्या चीज है दुनिया
0: भूल गया, वाकई में दुनिया हमें याद नहीं ताब कर रहे थे, उन्होंने बताया
1: कुछ याद ही नहीं,
0: बिल्कुल वाकई में कुछ याद नहीं रहा, भूल गए कि 7 चक्कर भी लगेंगे अभी हमें, क्योंकि उसके तवाफ किया जाता है, तो ये भी याद नहीं रहा कि कहाँ से तवाफ होता है, क्या पढ़ा जाता है, कुछ याद नहीं रहा, सिर्फ रब्बना आतेना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरतम हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, कुछ नहीं मांगा, सिर्फ ये मांगा और यही मांग कर आगे बढ़े आगे बढ़े। फिर ये याद आया कि हाँ, अब हम पहुँच गए यहाँ ट्रेनिंग सेंटर पे, कि हमें दिमाग आया कि यहाँ पर जो बताया गया है उसके हिसाब से ही हमें अब हमें अरकान अदा करना है, तो हमने 7 चक्कर उसके तवाफ़ के पूरे किए। अब जब तवाफ़ के पूरे कर लेते हैं तो फिर जाते हैं सही के लिए, जहाँ पर सफ़ा मरवा है, तो यकीन मानिए वहाँ पर जाकर भी याद ही नहीं रहा कि 7 चक्कर भी लगते हैं या नहीं लगते हैं। ये पूछ रहे हैं बराबर वाले से कि कितने चक्कर लगाएंगे, ये क्या चीज़, ये कैफियत होती है, वो कैफियत मैं बता नहीं सकता और जाहिर भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो मंजर था वहाँ पर, मैंने मंजर कशी पेश की है थोड़ी सारी और ज़ियारतें की, जहाँ पर आपको क़ुरबानी के लिए लिटाया गया वो जगह देखी, इस्माईल अलैहिस्सलाम की रास्ते में दिखाते बताते आए, और जबले रहमत देखा जहाँ अराफात का मैदान है और ईद से एक दिन पहले हज होता है और सारे जितने भी हैं वहाँ पर मौजूद होते हैं, अगर वहाँ कोई नहीं जाएगा तो हज नहीं होगा उसका, अगर बीमार भी है तो एम्बुलेंस लेकर जाएगी गवर्नमेंट की और वो हद में रखेंगे उसको, जो अराफात की हद है वहाँ पर, और दिन भर उसको वहाँ रखेंगे, जो भी मरीज है कुछ है उसके बाद फिर लेकर आएंगे मगरिब के बाद, क्योंकि जुहर और असर वहाँ पड़ी जाती है अराफात में एक साथ, और खुतबा होता है, दुआ होती है, जो आलम इस्लाम के जितने भी हैं सबके लिए दुआएं की जाती हैं वहाँ पर, वो ख़ास दिन होता है हज का, और वो फिर उसके बाद जब मगरिब की अजान होती है तो फिर हम वहाँ से रवाना हो जाते हैं और मुजदलफा के लिए मौजूद रहते हैं, पूरी रात क़याम होता है वहाँ पर, और वहाँ आने के बाद मगरिब और इशा की, यानी दोनों नमाजें एक साथ पढ़ी जाती हैं वहाँ पर मैदान में। और रबाबा जी, वो मंजर भी क्या मंजर था जहाँ पर हम रात को रुके थे, कि जब मैं लेटा और लेटने के बाद मेरी थोड़ी सी आँख लग गई तो वाकई में क्या खुशबुएं थीं और क्या ठंडी हवाएं थीं उस रेगिस्तान में, समझ ली,
1: जाहिर है भाई,
0: कोई तो पंखा नहीं, कोई कुछ नहीं,
1: इतनी
0: और यहाँ जिधर निगाह उठाओ उधर सफेद सफेद पूरे लिबास में, और जो खवातीन है वो भी साथ में और मर्द भी, और एक चीज और, चाहे वो बादशाह है चाहे वो फकीर है,
1: सब बराबर,
0: चाहे वो मंत्री है चाहे कोई बड़ा
1: संतरी है,
0: कोई

0: ये वो सब वहीं लेटे हुए हैं एक साथ और हमसे कह रहे हैं इस चीज को, हाजी कुछ चाहिए आपको, हाजी कुछ चाहिए आपको, वो अपनी लैंग्वेज में कहते थे लेकिन हम समझ लिया करते थे
1: वहां की मेहमान
0: जी।
1: नवाजी तो अपने आप में
0: उसके बाद वहां से
1: मिसाल है।
0: कंकरियां बीन कर, जो कंकरियां मारी जाती
1: शैतान
0: हैं
1: को मार
0: शैतान के,
1: देते हैं।
0: वो कंकरियां बीनी, रात में तहज्जुद पड़ी, फिर फजर पड़ी। फजर के बाद हमने देखते हैं कि बसें भी जा रही हैं और लोग पैदल भी चल रहे हैं। तो हम और हमारी अहलिया और जो हमारे साथ में थे टीम के लोग हमारे, वो कहने लगे कि फरीद भाई बस से चलें। मैंने कहा नहीं, जो हमारी अहलिया थी वो भी कहने लगी कि देखिए इनको देखिए, जो बुजुर्ग थे वो
1: और क्या,
0: डंडा टेक टेक कर और वाकर है जैसे उससे। तो हमारे अंदर ये जज्बा मतलब जागा कि
1: बिल्कुल
0: यार
1: एक
0: हम
1: हमारी
0: तो एक
1: उम्र में
0: नौजवान हैं
1: और क्या।
0: और हम में और इनमें तो बहुत फर्क है, क्यों ना हम पैदल चलें। जहाँ जमरात जाना था हमें कंकरी मारने के लिए, जो बड़ा शैतान होता है उसको मारी जाती है पहले दिन कंकरियाँ, 7 कंकरियाँ। रास्ते में जब चले तो नज़ारा ही कुछ और देखा, कितना अच्छा निज़ाम उन लोगों का, गवर्नमेंट का, जगह जगह पुलिस फोर्स और इस तरह से घेरे बना के कि कोई भगदड़ नहीं
1: भगदड़
0: मचे,
1: ना मचे।
0: कोई चीख पुकार ना हो, कोई धक्का मुक्की ना हो। और फिर ये जगह जगह हाथों में बड़े बड़े लिए खड़े कैन और फव्वारे मार रहे
1: फवारे
0: हैं
1: जी जी
0: और
1: जी जी हाँ
0: सीधे से हज
1: डंडे मारने
0: मुबारक,
1: के।
0: हज मुबारक, हाजी हज मुबारक, उनके कहने से जज्बा होता था, उनको हिम्मत देते थे कि जिंदाबाद, यूं करके उनकी तरफ को
1: हाँ
0: जब जिंदाबाद कहा हमने उनके लिए तो उनका जज्बा और बढ़ जाता था। और पट्टे हाथ में होते थे, पंखे हाथ में होते थे, हमारे ऊपर पंखे झलने
1: झलने
0: लगते
1: लगते
0: थे और वो नज़ारा ही कुछ और था। और उसके बाद हम सुबह को जब चले वहाँ कंकरी मारने के लिए, जमारात गए, जमारात में बड़े शैतान के हमने कंकरी मारी। कंकरी मार कर लौट कर हमने कहा कि अब जो है आप कुर्बानी कर सकते हैं। जो हमारे मौलिन थे हमने उनसे कहा कि हमने कंकरी मार ली, अब आप जो है कुर्बानी कर दिए। वहाँ से हमें जवाब मिल गया कि कुर्बानी हो गई। जब कुर्बानी हो गई तब हमने वो अपना एहराम गुसल
1: खोला
0: करके खोला और अपना हलक कराया, यानी सर को
1: जी
0: अपने जो
1: जी
0: थे बाल जो थे वहीं पर
1: उतरवाया।
0: वो उतरवाए। उतरवाने के बाद वो खास दिन होता है ईद का, लेकिन यहाँ तो पता चलती है ईद, वहाँ कुछ नहीं पता चलता। मीना में वो सब ऐसा लगता है, नज़ारा ही कुछ और होता है क्योंकि सब एक से कपड़े हैं,
1: बिल्कुल
0: वो नज़ारा कुछ और ही नज़ारा था वाकई में। और कुर्बानी हुई, कुर्बानी के बाद फिर हमने एक दूसरे को मुबारकबाद दी कि अब ईद हो गई। फिर हमने यहाँ अपने मुल्क में जो थे उनको मुबारकबाद दी कि अब हमने हज से फारिग हो गए और ऐसे ऐसे जो है अब हमारे अरकान पूरे हो चुके हैं। यहाँ फिक्र हो रही थी सबको क्योंकि कुछ नहीं मालूम चलता है, जो जा रहा है वहाँ पर उसको कुछ नहीं मालूम होता उस टाइम पे। और देखिए रबाब बाजी, परेशानियाँ, सफ़र का नाम जो है वो परेशानी ही है।
1: देखिए ये वो सफर है जिसकी परेशानियां भी आपके लिए बाइस
0: बिल्कुल
1: खैर थी,
0: बिल्कुल बिल्कुल। और
1: बाइस रहमत
0: बिल्कुल
1: थी।
0: मैं ये कहता था, जो हमारे साथ में थे लोग, मैं ये कहता था देखो अल्लाह ताला ने हमें कहाँ पहुँचाया हम सोच भी नहीं सकते। सारे जितने भी तमन्ना, जो भी जिसकी तमन्ना है यहाँ आने की, अल्लाह ताला उनके लिए असबाब पैदा कर दे, अल्लाह ताला उनके लिए जरिए पैदा कर दे। सारे लोग जाएं और देखें वहाँ का निज़ाम कि वाकई में कितना अच्छा निज़ाम होता है। और इतने लाखों के हुजूम में हर एक को खाना, हर एक को पानी, और रास्ते में पानी की तो बौछारें थी जगह जगह, पानी की
1: बहुत अच्छा
0: बोतलें,
1: इंतजाम उनका,
0: और खाने का ये हिसाब था कि लोग खा नहीं रहे थे, इतना खाना था, फल इतने थे कि मत
1: बरकत
0: पूछिए।
1: वहाँ।
0: बहुत अच्छा नज़ारा और बहुत अच्छा वहाँ की मंजरकशी। और जिसको भी अल्लाह ताला ने पैसा दिया है तो उसके दिल में अल्लाह ताला बिल्कुल शौक डाले कि वो
1: और
0: जाए वहाँ पर और
1: सबसे बड़ी चीज कि अल्लाह उसे अपने दर पर बुलाए,
0: बुलाए,
1: जब
0: बिल्कुल
1: तक
0: बुलाए,
1: अल्लाह ताला ना बुलाए तब तक
0: बिल्कुल
1: तौफीक हो
0: बिल्कुल।
1: ही
0: और
1: नहीं
0: यही
1: सकती।
0: दुआ की कि अल्लाह ताला जिसकी भी तमन्ना है उसकी तमन्ना को पूरा करे
1: बस
0: और उसके लिए असबाब पैदा कर दे, उसके लिए जरिए पैदा कर दे।
1: देखिए अल्लाह ताला को अगर बुलाना है, किसी बंदे से उसकी मोहब्बत शदीद है
0: जी
1: तो वो
0: बिल्कुल
1: ऐसे ऐसे लोगों के लिए सबब पैदा करता है जो हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते
0: बिल्कुल
1: कभी वहां
0: बिल्कुल
1: पहुंच सकते। और वरना कितने कितने लखपति और करोड़पति अपनी जिंदगियां गुजार कर चले जाते
0: चले
1: हैं
0: गए,
1: लेकिन अल्लाह ने तौफीक नहीं
0: बिल्कुल
1: दी।
0: यही बात है।
1: प्रदीप भाई देखिए बहुत ही खूबसूरत आपने नज़ारा पेश किया, आज ईद का दूसरा दिन है और हज के तमाम अरकान अब तकमील पर हैं, हाजियों की वापसी भी अब चंद दिन के बाद से शुरू हो
0: बिल्कुल
1: जाएगी,
0: यही बात
1: तो
0: है।
1: इस वक्त आपने उन तमाम चीज़ों को ताज़ा कर दिया और हमारे नज़रों में वो तमाम मनाजिर इस तरह घूम गए कि बस लग रहा है कि हम अभी वहाँ की सैर
0: बिल्कुल
1: करके आ
0: बिल्कुल,
1: रहे
0: क्योंकि
1: हैं।
0: हाजी अभी मौजूद रहेंगे मीना में।
1: जी
0: अभी चांद की जो 8 तारीख होती है उससे लेकर 13 तारीख तक वहीं रहते हैं और
1: जी
0: फिर उसके बाद लास्ट में आखिरी दिन जो आते हैं तो तीनों शयातीन जो हैं उनके कंकरी मार कर फिर वो अपने جو ہوٹل ہیں عزیزیہ میں، جہاں

0: पर भी रुके हुए होते हैं वहाँ पर वो उनको आ जाते हैं लौट कर, फिर जाकर ज़ियारत करते हैं, तवाफ़ ज़ियारत होती है वो की जाती है और वो भी उसी के अरकान में होती है, यानी हज का तवाफ़ किया जाता है और सही की जाती है, जो सफ़ा मरवा पे 7 चक्कर होते हैं वो पूरे करके उसके बाद फिर वो अपने होटल आ जाता है, और फिर उसके बाद एक और तवाफ़ रह जाता है तवाफ़ विदा।
1: जी तवाफ,
0: तो वो विदा तवाफ होता है जब हम आने वाले होते हैं उस वक्त, उससे पहले पहले हमें वो करके फिर हम लौटते हैं अपने घर को। तो ये तो रहा हमारा हज का सिलसिला।
1: फरीद भाई, ये ईद जो है वो हमें कुर्बानी का दर्ज देती है।
0: बिल्कुल यही बात,
1: हज के तमाम अरकान भी जो हम अदा करते हैं ना, वो भी एक तरह से अपने नफ्स की, अपने आराम की,
0: बिल्कुल
1: हर आसाइश की कुर्बानी,
0: यही बात है, यही बात,
1: नींद की कुर्बानी देते हैं,
0: बिल्कुल हर चीज,
1: ज्यादा से ज्यादा इबादत करते हैं,
0: बिल्कुल,
1: यानी कि हर तरह से कुर्बानियां देने की हमें प्रैक्टिस कराई जाती,
0: बिल्कुल कराई जाती
1: इस ईद और इस हज के जरिए। मैं समझती हूँ कि इस ईद का जो सबसे बेहतरीन पैगाम है वो हम अपने सामईन को दें,
0: बिल्कुल,
1: कि हम अपनी सारी गफलत को चलो कुर्बान कर डालें, हम अपनी सारी गफलत को चलो कुर्बान कर डालें, मिजाज बेमुरव्वत को चलो कुर्बान कर डालें, न हो हम मुतमईन बस जानवर कुर्बान करने से, बदी करने की आदत को चलो कुर्बान कर डालें, रज़ाए रब रज़ाए मुस्तफ़ा सबसे मुकद्दम हो, यहाँ हम अपनी चाहत को चलो कुर्बान कर डालें, गला काटें इसी कुर्बानी में अपनी अना का भी,
0: क्या बात,
1: तकब्बुर और नखुवत को चलो कुर्बान कर डालें,
0: बेशक
1: हमारे वास्ते ये दर्स लेकर बकरीद आई कि हर दुनियावी रग़बत को चलो कुर्बान कर डालें,
0: बेशक
1: अगर चलना है इब्राहिम और इस्माईल के रस्ते, जमाने की हर उल्फत को चलो कुर्बान कर,
0: बेशक बेशक।
1: देखिए उन्होंने दुनिया की किसी भी आसाइश को कबूल करने के बजाय हर इम्तिहान से गुजरना,
0: बेशक यही बात,
1: चलो हम मुत्तहिद होकर करें बातिल की सर को भी, हर एक शिकवा शिकायत को चलो कुर्बान कर डालें, हमारा जीना मरना हो फकत अल्लाह की खातिर, हर एक ख्वाहिश को लज्जत को चलो कुर्बान कर डालें, ज़बीहुल्लाह से सीखें इताअत आशनाई हम, कि जानो दिल की सरबत को चलो कुर्बान कर डालें,
0: बेशक।
1: तो फरीद, इसी पैगाम के साथ हम चलते हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से की जानिब।
0: जी
1: देखिए, ये दुनिया आनी जानी है और यहाँ पर बहुत से लोग आए और चले गए, लेकिन उनमें कुछ हस्तियाँ ऐसी भी होती हैं, अभी हम जैसे जिक्र कर रहे थे अपने अम्बिया इकराम का, जाहिर है कि उनकी तो कोई बराबरी ही नहीं कर सकता, जो उनका मुकाम है, जो उनकी बढ़तरी है, वहाँ तक तो कोई नहीं पहुँच सकता, लेकिन दुनिया में भी, दूसरे मैदान में भी कुछ लोग अपना नाम ऐसा मशहूर कर जाते हैं, ऐसे काम कर जाते हैं कि जो उनको लोग सदियों तक याद रखते हैं।
0: यही बात है, कुछ लोग कलम के माहिर होते हैं, कुछ लोगों की खासियत ऐसी होती है, खसलत ऐसी होती है, बिल्कुल ऐसी खसूसियत होती है कि उसकी बिना पर वो मशहूर हो जाते हैं, और ये सिलसिला जो है यूं ही चलता रहता है, और आपने बिल्कुल सही कहा, ये दुनिया जो है वो फानी है, और ये आने जाने का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा और रहता है और रहेगा, क्योंकि ये दुनिया जब तक है ये शख्सियात भी आती रहेंगी और जाती रहेंगी।
1: शायरी के एक माहिर
0: जी,
1: जनाब गौहर उस्मानी साहब, जो हमारे हमसाया शहर मुरादाबाद के फर्जंद रहे,
0: जी बिल्कुल,
1: अपना एक अलग मकाम रखते हैं शायरी की दुनिया में, तो आज उन पर एक तकरीर सुनवाते हैं।
0: सिलसिला है खाक में क्या सूरतें होंगी,
1: जी हाँ,
0: उसमें गौहर उस्मानी, मुकर्रा हैं हमारी अंजुम परवीन साहिबा,
1: तो समाप्त करें समीन ये खूबसूरत तकरीर।
2: गौहर उस्मानी साहब उर्दू अदब के उन मुमताज अहले कलम में शुमार होते हैं जिनकी तहरीरों में फिक्र की गहराई, जुबान की शस्तगी और जज्बात की सच्चाई नुमाया नजर आती है। आपकी नस्र और शायरी दोनों में एक खास असर अंगेजी पाई जाती है जो कारी के दिलो दिमाग पर देर व नक्श छोड़ती है। खाक में क्या सूरतें होंगी जैसे मौजूआत पर उनका अंदाज बयान नहायत दिलकश और फलसफियाना होता है, जिसमें जिंदगी, मौत और इंसान की हकीकत पर गहरा गौर व फिक्र झलकता है। गौर उस्मानी साहब के नज़दीक खाक सिर्फ मिट्टी ही नहीं बल्कि इंसान की असल और अंजाम दोनों की अलामत है। वो इस ख्याल को बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश करते हैं कि इंसान अपनी जिंदगी में जितनी भी बुलंदियां हासिल कर ले, आखिरकार इसे खाक में ही मिल जाना है, मगर ये खाक महज फना की अलामत नहीं बल्कि एक नई इब्तिदा की तरफ इशारा भी करती है। उनकी तहरीरों में ये

अभी आप सामात फरमा रहे थे उर्दू प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से नशर किया जा रहा था। उर्दू प्रोग्राम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं इस समय हमारी प्रथम सभा के प्रसारण।

ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 10:10 होने को है। अब प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम आपके अनुरोध पर।

आपके अनुरोध पर सुनने वाले सभी साथियों को जवेरिया का नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत मोहम्मद रफ़ी के स्वर में, फिल्म का नाम है पत्थर के सनम। गीत के बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फरमाइश करता आप सभी मोहल्ला अफगानान शेरकोट बिजनौर से नदीम बाकी कलीम बाकी अलीम बाकी अजीम बाकी अदीम बाकी अब्दुल गनी अलमीर जन्नत जातू का किशनपुर से आलम दिल का शबाना नाज रिजवान राही इमरान राजा आलम शेख शबाना आलम और चांदनी नाज जाबरूनता उर्धापुर से दुर्गादास जोशी गंगाधर जोशी गजनन जोशी संजय जोशी आशीष जोशी पृथ्वीराज जोशी कुमारी साध्वी जोशी परमवीर हून और गणेश हमरवारकर कटरा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य सुंदर देवी मौर्य प्रकाश मौर्य रिंकी मौर्य कपिल मौर्य वेदराम मौर्य कैलाश मौर्य सुनील मौर्य खुशबू मौर्य आरोही मौर्य और स्वाति मौर्य बेरखेड़ा जिला उज्जैन से विनोद मूरत नेहा जैन दीपक मयंग मूरत चेतन नाहरा दिलीप सिंह पवार दीक्षा किशन मूरत पुराना तालाब डुमराव से वली उल्ला अंसवारी आजमा नाज अंसवारी बिरिया सोनम सारिमपुर बक्सर से सरफुद्दीन अंसवारी फातमा नाज अंसवारी और मोहम्मद समी अंसवारी इंदिरा विहार दिल्ली से डब्लू अंसवारी वसीम अकरम और बेबी अंसवारी छठिया पोखरा डुमराव से लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती बेरेंडी से राजेश सोनी कंचन सोनी गायत्री ढोमने वैष्णवी ढोमने चंचल ढोमने अर्जुन कवेनकर और धीराज सवैसरे करूला मुरादाबाद से अयूब खान इरम गुड़िया शुएब खान नवेद खान सिंधोली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी नाज मंजिल मैसोली सीतामढ़ी बिहार से अकरम हुसैन प्रिंस वसीम अकरम आरिज वसीम शमीम अकरम ममता रानी शर्मा और बच्चू शेख बेकम इशरत अकरम रुबीना वसीम नदीम अकरम अमन अकरम पूनम कुमारी शर्मा व चीना शेख कुआद बिहार से शेख जफर हुसैन नरगिस जफर नूर महल मैसोल से हुमेरा नास सुमेरा नास अभिया नास अरहान बाबू हमजा बाबू और मुसम्मिल बाबू रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से जगमाल सिंह डागला हैप्पी डागला जेएस नायक शोभा नायक समस्त डागला परिवार कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय श्रीमती उषा राय अमित कुमार राय हैप्पी राय दुबिया नौदा गाजीपुर से प्रतीक राय श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी इकबाल फरीदी सितारा बेगम नसरीन परवीन रोजी परवीन बिट्टू भैया साजिदा रानी और हिना कौसर आप सभी के अनुरोध पर मोहम्मद रफ़ी के स्वर में फिल्म पत्थर के सनम का ये गीत आपकी रेडियो सेट पर।

आप सुन रहे हैं इस समय आकाशवाणी रामपुर से कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर के स्वर में, गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फरमाइश करता आप सभी। मेहरनगर उमरखेड़ महाराज से अभिजीत गवड़कर राय, श्रीमती सरिता गवड़कर, प्रिंस एकांश गवड़कर, बदलापुर मुंबई से सिद्धार्थ गवड़कर और प्रणीता गवड़कर, अकार राइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश गवड़कर, श्रीमती वैशाली गवड़कर, श्वेता सुमित गवड़कर और कुमारी धोनी गवड़कर परी, जमनी मोहल्ला इस्लामनगर से मुजफ्फर अली खान, मतीन खान, अल्फिया खान और इंशा खान, नेहरू वार्ड यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान मालाकार, जसपुर रोड दूलापुर जिला मुरादाबाद से महबूब दुकानदार, बेगम साइमा महबूब, मोहम्मद समीर अंसारी, मोहम्मद वारिस अंसारी और अलशिफा परवीन, आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेहंदी शर्मा, सौरभ शर्मा, शायना शर्मा और दीवान शर्मा, एरोड्रम थाने के पास वंदा नगर इंदौर मध्य प्रदेश से रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा विक्की रघुवंशी, स्वाति प्रिया चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से सुभाष चंद बजाज, करनाल से जग्गी दुआ, ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तानी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर, महाराष्ट्र हिंगोली से शाहजी भोटके, नंदा भोटके और हनुमान भोटके, वैष्णव कॉलोनी सनावत मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। आप सभी के अनुरोध पर लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म जीने की राह का ये गीत।

कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। कार्यक्रम का अगला व अंतिम गीत फरमाइश करता आप सभी, जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वेद, रानी वेद, महिमा वेद, नीतू वेद, ग्राम हरनगला मंदिर के पास स्वार से नब्बन खान, इब्बन खान, नाजिम खान, सलमान, शाहरुख खान और आरिश खान, पटियाली रोड गंज डुडवारा उत्तर प्रदेश से पप्पू भाई बिजली वाले, अफसाना बेगम, महजबी शेख, एम फारूक शेख, फिरासत हुसैन, मुनव्वर लल्ला, शेख शमा परवीन, अलकमर बेगम, मिर्जा नसरीन बेगम, ग्राम घाटमपुर से राम भजन सैनी, हरप्यारी सैनी, राजीव सैनी, संजय सैनी, मुकेश सैनी, आशा सैनी, पूजा सैनी, अंशिका सैनी और राम प्रकाश सैनी, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, आप सभी ने सुनना चाहे महेंद्र कपूर को। फिल्म का नाम है गुमराह, गीत के बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम आपके अनुरोध पर। ये प्रोग्राम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 10:30 हुए हैं। आप प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। उमंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूं।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है,
2: परीक्षा अक्सर अकेले की होती है लेकिन परिणाम सबके सामने आता है, इसलिए कोई भी काम करने से पहले हमें परिणाम का विचार जरूर करना चाहिए।
3: आपका बहुत बहुत आभार इतना सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान,
2: ठाणे महाराष्ट्र से भाराणे जी,
3: जालंधर पंजाब से संदीप कौर, प्रभा कौर, राधिका कौर और प्रभा जटोलिया,
2: गांव ढाणे कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, प्रियांशी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अनाया गुर्जर, गुरदीप गुर्जर और प्यारी बिटिया किरत,
3: और बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। संदेश भेजने के लिए निवेदन है, इसी प्रकार से जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी रजनीगंधा के बारे में, जो बहुत ही सुगंधित फूल है, लेकिन हमारी चर्चा अधूरी ही रहेगी
2: यदि हम फूलों का राजा कहे जाने वाले गुलाब की चर्चा न करें।
3: जी, ये बात तो है।
2: श्रोताओं, इसे दुनिया का सबसे अधिक प्रिय फूल माना जाता है। गुलाब को इसकी सुंदरता और खुशबू के कारण विदेशी साहित्य में किंग ऑफ ऑल फ्लावर्स भी कहा जाता है। गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
3: जी हाँ, जहाँ तक इसकी उत्पत्ति का प्रश्न है तो आपको बता दें कि गुलाब लगभग 4 करोड़ वर्ष पुराना फूल माना जाता है।
2: जी,
3: क्योंकि वैज्ञानिकों को इसके जीवाश्म भी मिले हैं जो करोड़ों वर्ष पुराने हैं। विमलेश जी, वे खास बात ये बताइए कि गुलाब फूल मूल रूप से किस देश का है?
2: अजीत जी, गुलाब फूल मूल रूप से किसी एक देश का नहीं है। वनस्पति वैज्ञानिकों के अनुसार गुलाब एक जंगली प्रजाति है जो मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, मुख्य रूप से चीन, भारत और मध्य एशिया में।
3: जी, एक रोचक तथ्य ये भी है कि लगभग 5000 वर्ष पहले चीन में गुलाब की खेती के प्रमाण मिलते हैं।
2: जी,
3: गुलाब की कई प्रजातियाँ चीन से ही विकसित हुई है और धीरे धीरे ये प्रजातियाँ पूरी दुनिया में फैल गई।
2: अजीत जी, अक्सर हम काले गुलाब के विषय में सुनते हैं।
3: काले गुलाब?
2: जी, जिसे ब्लैक रोज भी कहते हैं। क्या गुलाब काले रंग का भी होता है?
3: नहीं विमलेश जी, वैज्ञानिक तथ्य ये है कि जो गुलाब हमें काला दिखाई पड़ता है ना, वो दरअसल गहरे लाल या सुर्ख रंग का होता है।
2: जी,
3: जिसमें थोड़ा थोड़ा बैंगनी रंग भी मिला होता है, इसलिए यह काला दिखाई पड़ता है।
2: जी,
3: वास्तव में यह काला गुलाब है नहीं। वैसे मैंने कई बार विमलेश जी नीला गुलाब भी देखा है।
2: अजीत जी, वैज्ञानिक सत्य ये है कि प्राकृतिक रूप से नीला गुलाब होता ही नहीं है। वैज्ञानिकों ने जैव तकनीक की सहायता से नीला गुलाब विकसित किया है।
3: विमलेश जी, कल हमने रजनीगंधा फूल की चर्चा करते हुए बताया था कि इस फूल की खुशबू रात के समय सबसे अधिक होती है।
2: जी,
3: लेकिन एक बार श्रोताओं को बता दें कि गुलाब के फूलों के साथ ये बात बिल्कुल विपरीत। गुलाब के फूलों की खुशबू प्रातः काल सबसे तीव्र मानी जाती है, क्योंकि इस समय इसकी पंखुड़ियों में सुगंधित तेल सबसे अधिक सक्रिय होते हैं।
2: अजी जी, जब आपने सुगंध की बात की है तो एक बात और मुझे याद आ गई। वो ये कि गुलाब के फूलों के इत्र दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हैं।
3: जी, वो तो है।
2: सबको जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र एक बूंद इत्र या परफ्यूम बनाने में हजारों गुलाब की पंखुड़ियां लगती हैं।
3: जी बिल्कुल सही आपने कहा विमलेश जी, यही कारण है कि गुलाब की पंखुड़ियों से निकला हुआ रोज ऑयल बहुत महंगा होता है।
2: जी,
3: हम सब जानते हैं कि गुलाब खाने और पीने के काम भी आता है। गुलाब का शरबत, गुलकंद वगैरह कौन नहीं जानता।
2: बिल्कुल।
3: आइए अब बात करते हैं गुलाब के फूलों के रंगों की।
2: गुलाब कई रंगों के होते हैं और हर रंग की अपनी मानवीय भाषा होती है, जैसे लाल गुलाब प्रेम का, सफेद गुलाब शांति का।
3: जी,
2: पीला गुलाब मित्रता का, और गुलाबी गुलाब सम्मान और प्रशंसा का। और आपको पता है मधुमक्खियों का भी सबसे प्रिय फूल है गुलाब।
3: जी विमलेश जी, कई ऐसे फूल हैं जिनमें कांटे नहीं होते।
2: जी,
3: लेकिन प्रश्न मेरा ये है कि गुलाब के पौधे में कांटे क्यों होते हैं?
2: बड़ा मजेदार लेकिन विज्ञान सम्मत प्रश्न है। इसका जवाब है, गुलाब के पौधे में कांटे उसकी रक्षा के लिए होते हैं, ताकि जानवरों से आसानी से न खा सकें।
3: जी, तो श्रोताओ ये थी जानकारी हमारे आपके सबके चहेते फूल गुलाब की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न सुन लीजिए। हमारा प्रश्न है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
3: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
3: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं पहला कार्यक्रम। शीर्षक है खेल संध्या।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत रूपांतरण है। कार्यक्रम में भारत के पारंपरिक खेलों का उल्लेख किया गया है।
3: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
4: संध्या को हम खेलने जाते,
3: मित्रों संग आनंद मनाते,
4: मित्रों संग आनंद मनाते,
3: कभी दौड़ना और उछलना,
4: कभी दौड़ना और उछलना,
3: कभी गेंद के खेल खेलना,
4: कभी गेंद के खेल खेलना,
3: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
4: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
3: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
4: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
3: गिल्ली डंडा सबको भाता,
4: गिल्ली डंडा सबको भाता,
3: सतोलिया भी मजा दिलाता,
4: सतोलिया भी मजा दिलाता,
3: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
4: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
3: या हंस हंस के बातें करना,
4: या हंस हंस के बातें करना,
3: जब अंधेरा होने लगता,
4: जब अंधेरा होने लगता,
3: सबको कुछ डर लगने लगता,
4: सबको कुछ डर लगने लगता,
3: तब हम घर को वापस आते,
4: तब हम घर को वापस आते,
3: कल खेलेंगे

0: यह कह जाते।
1: कल खेलेंगे यह कह जाते।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर एंजल और वान्या, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, संगीत तथा मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये संगीतमय कार्यक्रम खेल संध्या, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे।
1: परमवीर चक्र विजेता मनोज कुमार पांडे की जीवन और भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके अपार शौर्य का वृत्तांत इस कार्यक्रम में दिया गया है।

0: यदि मौत मेरे खुद को साबित करने से पहले आती है तो मुझे सौगंध है कि मैं मौत को भी मात दे दूंगा।
1: ये शब्द हैं कारगिल युद्ध के महापराक्रमी योद्धा और परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे के, जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखे थे। निस्संदेह ये शब्द उनकी साहसिक प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त हैं।
0: आज हम चर्चा करेंगे भारतीय सेना के जांबाज सैनिक लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की, जिन्होंने कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र प्राप्त किया। उन्हें बटालिक का हीरो भी कहा जाता है। बटालिक कारगिल युद्ध का एक महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र है।
1: पच्चीस जून 1975 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर सीतापुर के निकट रुधा गांव में उनका जन्म हुआ था। वो श्री गोपी चंद्र पांडे और श्रीमती मोहिनी पांडे के सबसे बड़े पुत्र थे। सेना में जाना उनका सपना था। वो हमेशा ही सेना की प्रतिष्ठित वर्दी पहनकर अपने देश के शत्रुओं से लड़ने के सपने देखा करते थे।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सैनिक विद्यालय लखनऊ में हुई। स्कूली जीवन में उन्हें अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र माना जाता था। खेलों में उनकी गहरी रुचि थी। बॉक्सिंग, शारीरिक सौष्ठव और वॉलीबॉल में उन्हें महारत हासिल थी।
2: गोविंद, तू सर्विस कर, पीछे जा, हाँ, और सर्विस सीधा सेंटर में डालना, ओके?
0: उत्तर प्रदेश में वो राज्य स्तर पर नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुने गए।
3: श्री मनोज पांडे को उत्तर प्रदेश राज्य स्तर पर एनसीसी का सर्वश्रेष्ठ कैडेट घोषित किया जाता है।
1: प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने सेना में जाने की अपनी अदम्य इच्छा को साकार करने के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए में दाखिला लिया। उनके बारे में एक घटना बहुत ही रोचक और प्रेरक है। उस दिन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में भर्ती होने वाले नौजवानों का साक्षात्कार चल रहा था।
4: तो मनोज पांडे जी, आप बहुत अच्छे अंकों से एनडीए की चयन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और इसलिए आपको इस साक्षात्कार में बुलाया गया है।
5: धन्यवाद श्रीमान।
4: तो आप ये बताइए कि आप भारतीय थल सेना में क्यों शामिल होना चाहते हैं?
5: श्रीमान, मैं परमवीर चक्र प्राप्त करना चाहता हूं।
4: वेरी एम्बिशियस। लेकिन क्या आपको लगता है कि परमवीर चक्र एक खिलौना है?
5: श्रीमान, मुझे निश्चय है कि अपने कार्यकाल में मैं अवश्य ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा।
4: बेस्ट ऑफ लक।
0: और उन्होंने ऐसा ही किया भी। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें कमीशन मिला और वो लेफ्टिनेंट के पद पर 11 गोरखा राइफल्स में शामिल हो गए। सेना की ये इकाई अपनी वीरता और पराक्रम के लिए विख्यात है। सेना में कमीशन मिलने के बाद उनकी पहली नियुक्ति कश्मीर घाटी में हुई।
1: मई के महीने में कारगिल और आसपास के सामरिक महत्व के क्षेत्रों में पाकिस्तान

0: अंदरूनी घुसपैठ की खबर दी गई थी। उन दिनों लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की गोरखा राइफल्स रेजिमेंट ने सियाचिन में अपनी तैनाती के 1.5 वर्ष पूरे कर लिए थे और रेजिमेंट को शांति क्षेत्र पूना भेजा जा रहा था, लेकिन इस घुसपैठ का पता चलने के बाद लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को उनके अद्भुत नेतृत्व कौशल के मद्देनजर सियाचिन के ही बटालिक सेक्टर जाने के निर्देश मिले।
1: युद्ध शुरू हो चुका था।

0: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान का नेतृत्व सौंपा गया। अभियान था सियाचिन की सबसे ऊंची चोटियों में से एक जोबार टॉप पर कब्जा करना। भीषण युद्ध के बाद यह अभियान सफल रहा। अब उनकी टुकड़ी को जोबार टॉप के पास वाली एक और चौकी खालूबार पर कब्जा करना था। वो अपनी टुकड़ी के कमांडर थे।
1: 3 जुलाई 1999 को गोरखा रेजिमेंट के निडर लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने पूरी ताकत से अपनी टुकड़ी के साथ पाकिस्तानी चौकियों पर आक्रमण किया।
2: बहादुर साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार आप सबने जोबार टॉप की लड़ाई में अपना युद्ध कौशल दिखाया है, उसी प्रकार खालूबार में भी दिखाएंगे।
3: जी,
4: हम तैयार हैं।
2: लेकिन साथियों, दुश्मन तक पहुंचना आसान नहीं है। वे ऊंची चोटियों पर पोजीशन लिए बैठे हैं और हमारी हर कार्यवाही पर नजर रख रहे हैं। उन तक पहुंचने के लिए हमें इस बार वो करना होगा जो कठिन तो है पर असंभव भी नहीं है।
5: वो क्या साहब?
2: इस मैप को देखिए, सीधी चढ़ाई करने में खतरा है, इसलिए हम यहां से पहाड़ के इन दुर्गम दर्रों को पार करते हुए उन तक पहुंचेंगे और फिर अचानक उन पर हमला करेंगे। ये देखिए, यहां दो दर्रे हैं जिनसे चोटी तक पहुंचा जा सकता है। यह नंबर 1 और यह नंबर 2।
5: तो इसका मतलब है कि हम दो दिशाओं से उन तक पहुंचेंगे।
2: बिल्कुल सही। दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए हमने वायुसेना से अनुरोध किया है कि उनके विमान थोड़ी थोड़ी देर में खालूबार टॉप पर मंडराते रहे। दुश्मन का ध्यान विमानों की ओर रहेगा। इसी बीच आधी टुकड़ी पहाड़ के इस ओर से और आधी पहाड़ के उस ओर से पर्वत शिखर पर पहुंचेगी, और जब सब पहुंच जाएं तो मैं सबको संदेश भेजूंगा। कूट संदेश मिलने का इंतजार करना।
3: जी साहब।
2: संदेश मिलते ही सबको दुश्मन पर टूट पड़ना है। आक्रमण करने का संकेत होगा गोरखा राइफल्स का युद्ध घोष।
3: जय महाकाली। आयो गोरखाली। जय महाकाली। आयो गोरखाली।
2: तो शुरू करते हैं अभियान। सब तैयार हो जाओ, शाम होते ही हम सब मिशन पर निकल पड़ेंगे।
3: जय महाकाली। आयो गोरखाली।
1: और फिर शुरू हुआ सैन्य अभियान। खालूबार टॉप पर समय समय पर वायुसेना के विमान मंडराते रहे और जो बंकर निशाने पर आए उन्हें उड़ाते रहे। इसी बीच लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में रणबांकुरों की टुकड़ी खालूबार टॉप की ओर इंच इंच करके बढ़ रही थी।
0: मार्ग दुर्गम था। खून जमा देने वाली ठंड और अत्यधिक ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन की मात्रा भी धीरे धीरे विरल होती जा रही थी। लेकिन इन सैनिकों के मनोबल और दृढ़ निश्चय के सामने वस्तु स्थिति भी परास्त होती दिखाई दे रही थी। 4 घंटों की दुर्गम चढ़ाई के बाद आखिरकार उनका लक्ष्य सामने आ गया था। दुश्मन इस बात से बेखबर था कि स्वयं महाकाल उनके सरों पर मंडरा रहा है।
1: आक्रमण हुआ
0: और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में वो पलक झपकते ही दुश्मनों पर टूट पड़े।

0: पाकिस्तानी सैनिकों के लिए यह हमला अप्रत्याशित था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमला इस प्रकार होगा। दुश्मन के सैनिक इधर उधर भागने लगे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने मशीन गन के प्रहार से उनका काम तमाम कर दिया।
1: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे पूरी तत्परता और असीम शौर्य के साथ सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। इस बीच दुश्मन भी संभल गया था और उनके बंकरों से भी भारी गोलीबारी होने लगी, जिसके कारण भारतीय सैनिक हताहत होने लगे।
2: जब तक दुश्मन की मशीन गनों को शांत नहीं किया जाता, तब तक हमारे जवान हताहत होते ही रहेंगे। मुझे हर कीमत पर उन बंकरों पर हमला करना होगा।
0: उन्होंने हथगोले लिए और गोलीबारी से स्वयं को बचाते हुए, सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हुए स्वयं उनके बंकरों पर हमला कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने दुश्मन के दो बंकरों का सफाया कर दिया। उनकी इस कार्यवाही में दुश्मन के बहुत से सैनिक मारे गए। अब वो तीसरे बंकर की ओर बढ़ने लगे।
1: इसी बीच गोलियों की बौछार ने उनके कंधे और पैरों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। चोट बहुत गहरी थी और खून बहुत बह चुका था, लेकिन युद्ध के इस वीर नायक ने हार नहीं मानी। वो भारी गोलीबारी के बीच ऐसी घायल अवस्था में भी सैनिक साथियों को आक्रमण जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते रहे।
0: इस बीच जो भी शत्रु सामने आया, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने हथगोलों से उसे मौत की नींद सुला दिया और तीसरे बंकर में घुसकर उन पर हथगोलों से भीषण आक्रमण कर दिया। वो आमने सामने के युद्ध में दुश्मनों से भिड़ गए।
1: तीसरे बंकर को नष्ट करने के बाद वो शत्रु के चौथे बंकर की ओर बढ़ने लगे। वो चौथे बंकर के पास पहुंचे ही थे कि दुश्मनों की मीडियम मशीन गन की एक गोली उनके माथे के बीचों बीच जा लगी। गिरते गिरते भी उन्होंने हथगोलों के भीषण प्रहार से उस बंकर के भी कुछ और सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: बहुत अधिक मात्रा में खून बह जाने के कारण अब उनकी सांसें डूब रही थीं। उनके मुंह से नेपाली भाषा में ये शब्द निकले,
3: ना छोड़नु, ना छोड़नु।
0: जिसका अर्थ है, उन्हें छोड़ना मत। इन अंतिम शब्दों के साथ वो चिर निद्रा में लीन हो गए।
1: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की इस अपूर्व वीरता के कारण ही भारतीय सेना सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण चौकी खालुबार पर कब्जा कर सकी और इस प्रकार कारगिल क्षेत्र के बटालिक सेक्टर में भारत की विजय का मार्ग खुल गया।
0: एक महीने बाद 1999 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस शौर्य के लिए उन्हें मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: देश ने इस महावीर की स्मृति को विस्मृत होने नहीं दिया। द्रास कारगिल युद्ध संग्रहालय, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी पुणे और देश में अन्य कई जगहों पर उनकी स्मृति में स्मारक बनाए और अपने भवनों का नाम रखा।
0: राष्ट्र श्रद्धा सहित

0: असाधारण शौर्य के स्वामी और मूर्धन्य युद्ध नायक को नमन करता है।
1: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल। कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और आर एस रघु। शोध व आलेख अजीत होरो। तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो। ध्वन्यांकन मयंक कुमार और शानु मुक्सीम। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अब जवेरिया को दीजिए अनुमति। अब आगे की सभाओं में आपके साथ तरन्नुम जुड़ी रहेंगी।
5: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 11 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम धरोहर के अंतर्गत नाटक नीरा। लेखिका हैं सरोजनी अग्रवाल। प्रस्तुति असीम सक्सेना की है।
6: उतरती हुई सांझ, दूर एक दुर्गंध युक्त पोखर। पोखर के किनारे मौलसरी का सघन वृक्ष। राजपथ से इसी दिशा की ओर आता एक वृद्ध बालिका का हाथ पकड़े हुए भिक्षा मांगता हुआ। लोग आते जाते निकल जाते, कोई कुछ नहीं देता। तब वो बालिका मधुर स्वरों में गीत आरंभ करती। देखते देखते वृद्ध का कटोरा अनेक छोटे बड़े सिक्कों से भर जाता। दोनों उसी मौलसरी के नीचे तक आ जाते।
7: अब और आगे नहीं, इस गंदगी में कहां चलते होते अपने पास।
8: अरे बस थोड़ी दूर और।
9: हेरा
7: अरे ये तो गिर गए।
10: कहीं चोट तो नहीं लगी बाबा?
9: नहीं बेटी, मैं कहता ना था, मुझे मोटरों से उतना डर नहीं लगता जितना इस बेदुम के जानवर साइकिल से। मोटर वाले तो दूसरे को ही चोट पहुंचाते हैं, पैदल चलने वाले को कुचलते हुए निकल जाते हैं, पर ये बेचारे तो आप भी गिर पड़ते हैं। क्यों बाबू साहब, आपको तो चोट नहीं लगी? हम लोग तो चोट घाव सह सकते हैं।
8: आप मुझे क्षमा कीजिए, कहीं आपको।
9: क्षमा? और मैं करूं? अरे आप ये क्या कह रहे हैं, दो चार हंटर नहीं लगाए आपने? घर भूल गए शायद, हंटर लाए नहीं हैं। अच्छा महोदय, आपको कष्ट हुआ ना? क्या करूं, बिना मांगे सर्दी में पेट गालियां देने लगता है, नींद भी नहीं आती। चार छह पहरों पर तो कुछ ना कुछ इसे देना ही पड़ता है।
8: मुझे खेद है कि मेरी असावधानी के कारण ही आपको।
9: अरे अब इस बात को जाने दीजिए। हाँ तो मैं कह रहा था कि मुझे और भी एक रोग है, दो पैसों बिना वो छूटता नहीं। मुझे पढ़ने के लिए अखबार चाहिए। पुस्तकालय में चिथड़े पहनकर बैठने

0: ना पाऊंगा, इसलिए नहीं जाता। दूसरे दिन का बासी समाचार पत्र 2 पैसों में ले लेता हूं।
1: मैं मना करता था ना, तुम अपनी धुन में कुछ सुनते भी हो, चले तो चले और रुके तो अड़ियल टकते भी छक मारे।
2: क्या बताऊं भाई नन्हे,
1: क्या उसे चोट आ गई है? अरे क्यों बूढ़े, लो ये ठन्नी, आओ अपनी राह, तनिक देख कर तो चला करो।
0: देख कर चलता तो ये अठन्नी कैसे मिलती बाबू साहब? आप लोगों की जेब में अखबार तो होगा, मैंने देखा है, बाइसिकल पर चढ़े हुए बाबुओं की पॉकेट में निकला हुआ कागज का मुट्ठा अखबार ही रहता होगा।
3: चलो बाबा, झोपड़ी में सर्दी लगती है।
0: बस बस अभी चलता हूँ बेटी। ये मेरी बेटी नीरा है, खोने को कुछ भी नहीं है इसके पास, पर फिर भी निज के अभिमान का धन इसके पास बहुत है। अठन्नी ले लेने के बाद भी आप लोगों से अखबार मांगना इसे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए चलने की बात करने लगी।
2: वैसे सर्दी तो सचमुच हो गई है।
0: आप लोग नहीं समझेंगे कि इसकी कौन सी बात में क्या अर्थ छिपा है, पर मैं जानता हूं। वैसे बाबूजी, इसके सामने आप लोग घंटों बहस करते रहिए, ये न कोई सवाल करेगी न बोलेगी, बस चुपचाप सुनती रहेगी, यहाँ तक कि आप झुंझलाकर चुप हो जाएंगे, पर तब भी वह चुपी रहेगी। आपको लगने लगेगा कि जैसे कोई माटी की मूरत बैठी है।
3: बाबा, अब तुमने कुछ और कहा तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आऊंगी।
0: देखा आपने, इसी तरह मुझ पर गुस्सा करती रहती है, जैसे कि मैं कोई छोटा सा नादान सा बच्चा हूं। पर बाबूजी, इस बूढ़े की सेवा भी इतनी करती है कि बस, कैसा जगजननी सा रूप है इसका। अच्छा तो बाबूजी, भगवान यदि कोई हो तो वो आपका भला करे।
2: क्या
1: अरे अब लौटोगे या यहीं जम गए?
2: तुमने कुछ सुना? अमरनाथ वह कहता था भगवान यदि कोई हो, कितना भयानक अविश्वास।
1: दरिद्रता और लगातार दुखों से मनुष्य अविश्वास करने लगता है, यह कोई नई बात नहीं है।
2: सुख और संपत्ति से क्या ईश्वर को विश्वास अधिक होने लगता है?
1: संसार में तो प्रायः ऐसा ही दिखाई देता है। चलो भाई, यहाँ खड़े खड़े बात करने की जगह नहीं है। तुमने तो कहा था कि आज जनकीर्ण कलकत्ते से तुमको दूर एक अच्छी जगह दिखाऊंगा, और तुम?
2: यही मटिया बुर्ज है, और अब तुम कहोगे कि यह बुड्ढा वहीं से लौटा हुआ कोई कुली है।
1: हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। अच्छा चलो, अब लौटें।
2: चलो उसकी झोपड़ी तक, मैं उससे कुछ बात करूंगा।
1: चलो।
0: आइए आइए बाबूजी, आप अखबार देने आए हैं? मैं भी पत्थर ले रहा था, बीमार हूं ना, इसी से लाई खाता हूं, बड़ी नमकीन होती है, अखबार वाले भी कभी कभी नमकीन बातों का स्वाद दे देते हैं, इसी से तो बेचारे कितनी दूर दूर की बातें सुनते हैं। लीजिए, आप लोग भी खाइए, संकोच मत कीजिए।
2: नहीं नहीं, आप अपना पत्थर लीजिए, हम लोगों ने अभी रास्ते में पर्याप्त जलपान लिया है, क्यों अमरनाथ?
1: हाँ बिल्कुल, बिल्कुल भी इच्छा नहीं है।
0: ये आप लोगों ने अच्छा ही किया, वरना यहाँ आपके आदर सत्कार के लिए क्या रखा था। बाबूजी, मैं मॉरिशस में था तब हिंदुस्तान की बातें पढ़ा करता था, मेरा देश सोने का है, ऐसी भावना जब उठी, आह कितनी बार बचपन में सुना, वंदे मातरम का गीत सजीव हो उठा था।
3: बाबा, आप फिर बीती बातें ले बैठे, ये क्या अच्छा है।
0: क्या करूं बेटी, स्मृतियों के अतिरिक्त इस बूढ़े के पास शेष है भी क्या, फिर उन यादों से कैसे विश्वासघात करूं। पर सच कहता हूं बाबूजी, मॉरिशस में अगर गोली न चली होती और नीरा की मां ना मरी होती, हाँ गोली से ही वो मरी थी, तो वहीं से जन्मभूमि का सोने का सपना देखता, और इस अभागे देश, नहीं नहीं बाबूजी, मुझे ये कहने का अधिकार नहीं, मैं हूं अभागा, हाय रे भाग्य।

0: अब ये व्यथा कथा कब तक चलेगी? कोई क्या करेगा मामा?
1: अच्छा, अब कुछ नहीं कहूंगा, भूल गया था।
2: क्या तुमको सचमुच ईश्वर में विश्वास नहीं है?
1: आलोचक में मैंने एक लेख पढ़ा था, वो इसी प्रकार के उलाहने से भरा था कि वर्तमान जनता में ईश्वर के प्रति अविश्वास का भाव बढ़ता जा रहा है और इसीलिए वो दुखी है। ये पढ़कर मुझे तो हंसी आ गई बाबूजी।
2: हंसी आ गई? कैसे दुख की बात है।
1: दुख की बात सोचकर ही तो हंसी आ गई। हम मनुष्यों ने त्राण की शरण की आशा से ईश्वर पर पूर्व काल में विश्वास किया था, परस्पर के विश्वास और सद्भाव को ठुकराकर मनुष्य मनुष्य का विश्वास नहीं कर सका। इसीलिए तो एक सुखी दूसरे दुखी को और घृणा से देखता था।
2: आखिर आप कहना क्या चाहते हैं?
1: मैं पूछता हूं कि दुखी ने ईश्वर का अवलंबन लिया तो भगवान ने संसार के दुखों की सृष्टि बंद कर दी क्या? मनुष्य के बूते का ना रहा तो क्या वो भी?
2: आप भी बस अति करते हैं, ऊट पटांग जो मन में आया।
1: आपको क्रोध आ गया महाशय? आने की बात ही है, ले लीजिए अपनी अठन्नी। अठन्नी देकर ईश्वर में विश्वास नहीं कराया जाता। उस चोट के बारे में पुलिस से जाकर न कहने के लिए भी अठन्नी की आवश्यकता नहीं। आप क्या समझते हैं कि मनुष्य अकारण ही भगवान पर अविश्वास करने लगा है? आप
2: इस समय यहां से चलो देवनिवास। तुम्हें इनके कुतर्क सुनना हो तो कल फिर आ जाना। चलो उठो।
1: अच्छा, तो मैं कुतर्क करता हूं, अति करता हूं, पर किसी को यह भी ज्ञात है कि मेरे जीवन की कथा ही संसार से झगड़ते रहने की कथा है। कितनी बार मैंने न्याय के लिए भगवान को पुकारा है, पर अपराधी को भीषण दंड देने के लिए भी कभी उनका भीषण रूप प्रकट नहीं हुआ। और इनके लिए मैं कुतर्क करता हूं? क्यों नीरा बेटी, तुम उस समय भी चुपचाप सुनती रही, कुछ बोली नहीं। तुम कहती कि
0: बाबा, अब तुम बहुत थक गए हो, रात भी काफी हो गई है, सो जाओ। बाबा बाबा उठो, देखो तो सूर्य की किरणें कैसा अद्भुत सुनहरा जाल बुनने लगी हैं।
1: अच्छा, पर आज शरीर कुछ ठीक नहीं लगता बेटी।
0: तो फिर विश्राम करो, मैं लाई और जल ले आती हूं।
1: नहीं, अभी रहने दे, मन नहीं है। सोचता हूं अगर बाहर ना जा पाया तो।
0: कोई चिंता नहीं, मैं अकेली ही बाहर जाकर।
1: नहीं बेटी, नीरा तू अकेली मत जा। सुनती नहीं बेटी, संध्या तक मैं अवश्य स्वस्थ हो जाऊंगा। हाँ, अगर थोड़ा मूंग का सूप मिल जाता तो। ना रहने दे, मूंग कहाँ होगी घर में, मैं भी कितना पागल हूं।
0: नहीं बाबा, मैं कुछ ना कुछ व्यवस्था कर ही लूंगी।
3: उस दिन ईश्वर के प्रति आपका क्रोध देखकर मैं विस्मय से भर उठा था, इसलिए।
1: मैं ये मानता हूं बाबूजी कि सृष्टि विषमता से भरी है, चेष्टा करके भी इसमें आर्थिक या शारीरिक साम्य नहीं लाया जा सकता। हाँ तो ऐश्वर्य वालों की, जिन पर भगवान की कृपा है, अपनी सहृदयता से ईश्वर का विश्वास कराने का प्रयत्न करना चाहिए। कहिए, इस तरह भगवान की समस्या सुलझाने के लिए आप प्रस्तुत हैं?
3: क्षमा करें, मैं आपका तर्क नहीं समझ सका। अच्छा तो आप मेरे घर चलकर रहिए, संभव है कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। तब आप विश्वासी बन जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं। क्या आप?
1: भैरव भाई, तुम बड़े जल्दबाज मालूम होते हो, क्या सचमुच तुम मेरी सेवा करना चाहते हो? तो
0: बाबा,
1: या नीरा को, जिसे
0: बाबा
1: बड़ी देर से देख रहे हो, अपने घर लेवा ले जाने की उत्कंठा है, क्षमा करना। मैं अविश्वासी हो गया हूं, जानते हो क्यों? जब कुलियों के लिए इसी सीली गंदी और दुर्गंधमय भूमि में एक सहानुभूति उत्पन्न हुई थी, तब मुझे ये कटु अनुभव हुआ था कि वो सहानुभूति भी चिरान से खाली ना थी। मुझे एक सहायक मिले थे,

0: और मैं यहां से थोड़ी दूर पर उनके घर रहने लगा था।
1: बाबा चुप रहो ना, खांसी आने लगेगी।
0: ठहर नीरा, जब बात शुरू कर ही दी है तो पूरी बात बता लेने दे। हां तो मैं कह रहा था महाशय जी, मैं उनके घर रहने लगा था और उन्होंने मेरा आतिथ्य साधारणतः अच्छा ही किया, पर एक ऐसी काली रात थी।
2: काली अंधेरी रात, बादलों में चमकती बिजली, आराम की नींद लेता वृद्ध, पासी निद्रामग्न नीरा, सहसा दबे पांव उस सहायक का आना जिसने वृद्ध को अपने यहां रहने का आश्रय दिया। उसकी वासना जन्य कुटिलता, नीरा को दोनों हाथों से पकड़कर घसीटना, अप्रत्याशित आक्रमण से
0: विवश नीरा, क्या हुआ? बाबूजी, उस समय वो मेरा ऐश्वर्यशाली सहायक बिजली के लैंपों में मुलायम गद्दे पर सुख की नींद सो रहा था। यद्यपि मैं उसे लौटकर देखने नहीं गया तो भी मैं निश्चय पूर्वक कहता हूं कि किसी प्रकार बाधा उपस्थित करने का दंड देने के लिए भगवान का न्याय अपने भीषण रूप में नहीं प्रकट हुआ। मैं रोता था, पुकारता था, किंतु वह सुनता कौन है?
1: बाबा, हर किसी से अपनी सारी बात क्यों कहने लगते हो? कितनी बार समझाया पर
3: बस एक दो बातें और कर लेने दीजिए। हाँ तो तुम्हारा बदला लेने के लिए भगवान नहीं आए, इसलिए तुम अविश्वास करने लगे। लेखकों की कल्पना का साहित्यिक न्याय तुम सर्वत्र प्रत्यक्ष देखने चाहते हो ना?
0: क्यों क्यों ना मैं ऐसा चाहता? क्या मुझे इतना भी अधिकार ना था?
3: तुम समाचार पत्र पढ़ते हो ना?
0: अवश्य।
3: तो उसमें कहानियां भी कहीं कहीं पढ़ लेते होंगे और उसकी आलोचनाएं भी।
0: हाँ तो फिर?
3: जैसे एक साधारण आलोचक प्रत्येक लेखक से अपने मन की कहानी कहलाना चाहता है और हट करता है कि नहीं, यहां तो ऐसा ना होना चाहिए था, ठीक उसी तरह सृष्टिकर्ता से अपने जीवन की घटनावली अपने मनोनुकूल सही कराना चाहते हो?
0: सवाल सही और गलत का इतना नहीं है जितना यह है कि पापों का तत्काल दंड क्यों नहीं मिलता, और यदि नहीं मिलता तो यह मेरा अधिकार है कि मैं आपके तथा कथित ईश्वर पर विश्वास करूं या ना करूं। समझे
3: महाशय? मैं भी जानता हूं कि अगर पापों का दंड तुरंत मिल जाता तो सभी पाप करना छोड़ देते। क्या तुमने कभी अपने अपराधों के बारे में सोचा है?
1: बाबा बाबा बाबा, तुम्हें ये क्या हो रहा है?
0: मुझे कुछ नहीं हुआ बेटी, तुम चिंता मत करो। हाँ महाशय, मैं इसे मान लेता हूं कि आपके पास बड़ी अच्छी युक्तियां हैं और उनके द्वारा वर्तमान दशा का कारण आप मुझे ही प्रमाणित कर सकते हैं, किंतु
1: बाबा लो पानी पियो, थोड़ा सा पानी पीजिए। और अब आप चुप क्यों नहीं रहते?
0: बस बेटी, एक अंतिम बात और कहना चाहता हूं। हाँ तो तार्किक महाशय, वृक्ष के नीचे पुआल से ढकी हुई मेरी झोपड़ी को और उसमें पड़े हुए अनाहार, सर्दी और रोगों से जीना मुझे अभागे को मेरा ही भ्रम बताकर आप किसी बड़े भारी सत्य का आविष्कार कर रहे हैं, तो कीजिए, जाइए।
1: आप लोग क्यों बाबा को तंग कर रहे हैं? इन्हें ज्वर है, अब इन्हें सोने दीजिए।
3: कदाचित मैंने आपके बाबा को अधिक बोलने का कष्ट दिया, मुझे खेद है। चलो अमरनाथ।
4: बहुत अच्छा है, तुम भी लो ना। वैसे मुझे तुम्हारा वो बुड्ढा ना आधा पागल लगता है।
3: नहीं, मुझे लगता है उसके अंतर्मन में कहीं कोई दुख अवश्य है, उसने मेरे तर्क काफी ध्यान से सुने हैं।
4: हो सकता है, पर मुझे तुम्हारे वाद विवाद में कोई रस नहीं लग रहा, इसलिए तो मैं सारे समय अपने को उसी अखबार के टुकड़े में उलझाए रहा।
3: ये तो अपनी अपनी रुचि है।
4: हाँ देखता हूं तुम्हारी रुचि कहीं और भी है, शायद बुढ़े की लड़की में।
3: हाँ,

0: संभव है।
1: बाबूजी आज फिर?
0: नहीं, मैं वाद विवाद करने नहीं आया हूं। क्या तुम बीमार हो?
1: हाँ बीमार हूं बाबूजी, और आपकी कृपा है।
0: मेरी?
1: हाँ उसी दिन से आपकी बातें मेरे सिर में चक्कर काटने लगी हैं। मैं ईश्वर पर विश्वास करने की बात सोचने लगा हूं। बैठ जाइए, सुनिए।
2: बाबा फिर?
1: कोई हर्ज नहीं है बेटी, बाबूजी से बातें करके मन हल्का हो जाता है। ला थोड़ा पानी दे दे।
2: लो और देखो, ज्यादा मत बोलना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है।
1: अब ठीक होगी भी नहीं, इसलिए तो। हाँ बाबूजी, मैं हिंदू हूं, कुछ सामान्य पूजा पाठ का प्रभाव मेरे हृदय पर भी पड़ा है। मुझे ईश्वर के बारे में कभी कुछ बताया गया ऐसा मुझे याद नहीं। अच्छा जाने दीजिए, वो एक लंबी कहानी है। नीरा बेटी
2: जी बाबा।
1: आ तू भी सुन ले, तुझे भी तो मैंने काफी कुछ नहीं बताया है। तो बाबूजी अपनी घोर आवश्यकताओं से लड़ता झगड़ता मैं कुली बनकर मॉरीशस पहुंचा। वहां एक दिन अकेला बैठा था, अपने लिए सोच रहा था।
3: सुनो, तुम हिंदुस्तान से आए हो अपनी रोजी रोटी कमाने?
1: हाँ।
3: यहां तुम्हारा कोई अपना नहीं है, बिल्कुल अकेले हो।
1: हाँ पर तुम कौन हो और इस तरह मुझसे?
3: डरो मत, मैं भी तुम्हारी ही तरह बेसहारा हूं। मेरा नाम कुलसुम है।
1: कुलसुम? अर्थात तुम?
3: हाँ ठीक समझे। सुनो एक बात कहूं, मुझसे ब्याह करोगे?
1: ब्याह तुमसे? मैं हिंदू हूं और तुम?
3: तो क्या हुआ, आदमी तो है ना। फिर प्रेम में कोई जात पात नहीं होती, मोहब्बत तो मन का रिश्ता है।
1: तुम यहां क्या करती हो?
3: वही मजदूरी, मेहनत के अलावा हम गरीबों के लिए और क्या रखा है ना। सही अमीरी पर किसी तरह कटती तो है।
1: एक बात बताओ, तुम ऐसा कैसे हंस लेती हो, इतनी कठिनाइयों में भी, गुलामी में भी?
3: जो आज गुलाम हैं, वही कल सुल्तान हो सकते हैं, फिर रोना किस बात का। जितनी देर हंस सकती हूँ उस समय को रोने में क्यों बिताऊं।
1: कितना उल्लास है, हृदय में कितना विश्वास है।
3: तुमने कुछ कहा, कुछ तय कर पाए, रहोगे मेरे साथ? डर लगता है? डरो मत, साफ साफ कहो।
1: तो फिर चलो, हम और कुछ भी हों, सबसे पहले तो एक ही हाड़ मास से बने मनुष्य हैं।
3: पर एक बात बताओ, वहां कहीं घर तो नहीं है, कोई इंतजार में बैठा रहे, ऐसा तो नहीं है?
1: नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं मेरा घर। अब तो मेरा घर, मेरा सब कुछ तुम ही हो। मेरा और उसका ब्याह हो गया। आप हंसिए मत, कुलियों के लिए वहां किसी काजी या पुरोहित की उतनी आवश्यकता नहीं, हम दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता थी। कुलसुम ने मेरा घर बसाया, पहले वो चाहे जैसी रही, किंतु मेरे साथ संबंध होने के बाद से आजीवन वो एक साध्वी गृहिणी बनकर रही। कभी कभी जब वो अपने ढंग से ईश्वर का विचार करती तो मैं...
3: मैंने दुआ की है कि तुम्हारा आज का दिन कामयाब रहे, खुदा जरूर मदद करेंगे।
1: मैं किसी खुदा को नहीं मानता।
3: छी, क्या कहते हो, जिसने इंसान को इतनी नियामतें बख्शी हैं, उसे ना मानना गुनाह है? या परवरदिगार अपने बंदों की नादानी माफ कर, तुम्हारे खुदा नहीं भगवान तो हैं?
1: मेरा कोई भगवान भी नहीं है।
3: ऐसा गुमान, ये ठीक नहीं है। देखो राम हो या रहीम, कोई फर्क नहीं, दोनों ही एक नूर के दो नाम हैं, चाहे जिसकी बंदगी करो

0: दोनों मेहरबान हैं। हर मजहब का मतलब सिर्फ मोहब्बत है और कुछ नहीं। उससे मोहब्बत, उसके बनाए हुए बंदों से भाईचारा, आपसी मेलजोल, मजहब तो इंसानियत का ही दूसरा नाम है, उसमें नफरत की कहीं कोई गुंजाइश नहीं।
1: मेरे लिए तो ईश्वर भी तुम ही हो, तुम ही खुदा हो और मेरी सब कुछ तुम ही हो कुलसुम।
0: ये रहने दो, हो सके तो उसकी इबादत करो जिसने तुम्हें, हमें और इस सारी दुनिया को बनाया है।
1: तुम अब अपनी इबादत करो और मैं चला अपनी इबादत गाह को। मेरे मन में जितना कुलसुम के प्रति आकर्षण था, उतना ही उसके ईश्वर संबंधी विचारों से विद्रोह मेरे मन ने ढोंग किया कि मैं नास्तिक हो जाऊं और मैं अपनी गाढ़ी कमाई के रुपए शराब के प्याले में गलाकर मस्त रहता। पर उस रात
0: या खुदा, तुमने आज फिर पी ली है, क्यों?
1: तो क्या हुआ, क्यों मैं तुम्हें इसका जवाब देता फिरूं? हाँ हाँ पी है, जी भर के पी है और पीऊंगा, खूब पीऊंगा, कोई क्या करेगा मेरा, अपनी कमाई की पी है।
0: या मेरे परवरदिगार, अब तुम्हारा ही भरोसा है, मेरे ऊपर रहम कर, मेरे गुनाहों को माफ कर, मेरी फैली झोली को अपनी रहमतों से भर दे। मैं हाथ जोड़कर तेरे दर पर भीख मांगती हूँ, मैं क्या करूँ, ये छोटी सी मासूम बेगुनाह बच्ची, अब बर्दाश्त नहीं होता, अब तू मुझे अपने पास बुला ले, अपने कदमों में मुझे पनाह दे, मुझे पनाह दे, हो मेरे खुदा।
1: कुलसुम, कुलसुम, कुलसुम, कुलसुम। वो आत्महत्या करने का उसका एक नया ढंग था। उस दिन जब गोली चली थी, कुलसुम के वहां जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। मुझे विश्वास होता है कि मैं ही इसका कारण था।
2: ओह, उसके बाद क्या हुआ बाबा?
1: उसके बाद मेरी वो दंडता तो नष्ट हो गई। जीवन की पूंजी जो मेरा निज का अभिमान था, वो भी चूर चूर हो गया। मैं नीरा को लेकर भारत के लिए चल पड़ा
2: और फिर
1: तब तक तो मैं ईश्वर के संबंध में एक उदासीन नास्तिक था, किंतु इस दुख ने मुझे विद्रोही बना दिया। मैं अपने कष्टों का कारण ईश्वर को ही समझने लगा और मेरे मन में ये बात जम गई कि मुझे दंड दिया गया है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे मुझे
3: देखिए देखिए तो बाबा को क्या हो गया। बाबा बाबा, लावा ले आई हूँ, कुछ खा लो।
1: ठहरो बेटी, पहले मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दो।
3: पर तुम्हारी तबीयत, आज रहने दो ना।
1: नहीं बेटी, फिर समय मिला ना मिला। हाँ तो बाबूजी, उस दिन भी जब नीरा के लिए मैंने भगवान को पुकारा था, तभी उसी कट्टा से, संभव है इसीलिए वे ना आए हो और आज।
2: अरे बाबा, अब आप शांति रहें तो।
1: बाबूजी, जरा जरा मेरे पास आइए। हाँ। और पास, मुझे नीरा के लिए चिंता हो रही है, वो क्या करेगी?
3: बाबा,
1: किसी अत्याचारी के हाथ में पड़कर नष्ट तो ना हो जाएगी मेरी बेटी? ये बहुत सरल है बाबूजी, ये बहुत सरल है।
3: बाबा बाबा, तुम मेरी चिंता ना करो, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, अवश्य करेंगे।
1: करेंगे बेटी, सचमुच करेंगे।
3: हाँ।
1: क्या ये ठीक कह रही है बाबूजी, बोलिए ना।
2: हाँ हाँ बाबा, बिल्कुल ठीक, भगवान सबके हैं। बाबा, यदि आपको आपत्ति ना हो तो।
1: कहो बाबू, कहो, क्या कहना?

0: चाहते हो?
1: बाबा, मैं नीरा से ब्याह करने के लिए प्रस्तुत हूँ।
0: क्या ये सच है? हे भगवान, क्या ये सच है? बाबूजी, मुझे क्षमा करना, मैंने तुम्हें बड़ा दुख दिया।
2: खून? बाबा के मुख से खून कैसा? बाबा,
0: बाबूजी, मुझे क्षमा करना, मैंने तुम्हें बड़ा दुख दिया।
2: बाबा मुझे छोड़कर चले गए। बाबा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम धरोहर के अंतर्गत नाटक नीरा। लेखिका थी सरोजनी अग्रवाल, प्रस्तुति असीम सक्सेना की थी। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 11:30 हुए हैं। पेशे खिदमत है कार्यक्रम मन भावन, एक ही शीर्षक, दर्द से कुछ नगमे।

कार्यक्रम मन भावन सुनने वाले हमारे सभी रेडियो श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। कीजिए स्वीकार तरन्नुम का प्यार भरा सलाम व नमस्कार। दिल के दर्द को छुपाना कितना मुश्किल है, टूटकर फिर मुस्कुराना कितना मुश्किल है। किसी के साथ दूर तक जाकर तो देखो, अकेले लौट कर आना कितना मुश्किल है।

टूटे दिल को रोने की जगह नहीं मिली, इसके दर्द की कहीं कोई दवा नहीं मिली। सबको मिली थी अपनी सच्ची मोहब्बत, तो क्यों मेरी ही मोहब्बत की मुझे वफा नहीं मिली।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन भावन, एक ही शीर्षक दर्द से कुछ नगमे। मोहब्बत का दर्द भी अजीब होता है, मोहब्बत का दर्द भी अजीब होता है, उसे छुपा कर

जुदाइयों के जख्म दर्दे ज़िंदगी में भर दिए, जुदाइयों के ज़ख्म दर्दे ज़िंदगी में भर दिए, तुझे भी नींद आ गई, मुझे भी सब्र आ गया।

आज तो दिल के दर्द पर हंसकर, आज तो दिल के दर्द पर हंसकर, दर्द का दिल दुखा दिया मैंने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन भावन, एक ही शीर्षक दर्द से कुछ नगमे। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में दिन के 12 बजने को है। अब हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से कुछ ही पलों में रिले किए जाएंगे।

0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठी की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: घुसपैठियों को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिन में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई। श्री शाह गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों देशों के मंत्रियों ने आर्थिक विकास और व्यवसायों के लिए व्यावसायिक अवसरों में वृद्धि करने पर द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश संबंधों की पुष्टि की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने

0: जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला किया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसे चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास और किसान समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति चौधरी चरण सिंह की अटूट प्रतिबद्धता को हमेशा याद रखा जाएगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मिला जुला असर देखा गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 36 अंक बढ़कर 75,904 पर था। निफ्टी 25 अंक की गिरावट के साथ 23,882 पर कारोबार कर रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

12:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कुछ गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री नसीम अख्तर पुत्र अब्दुल बसीर, जिला लाल मस्जिद बाड़ा, शाह सफा थाना कोतवाली जनपद मुरादाबाद द्वारा थाना कोतवाली नगर मुरादाबाद में दिनांक 24/2/26 को थाने में आकर सूचना दी। उनका पुत्र शुएब अख्तर पुत्र नसीम अख्तर निवासी लाल मस्जिद बाड़ा शाह सफा थाना कोतवाली जनपद मुरादाबाद से घर से अहमदाबाद के लिए गया था, जो अभी तक वापस नहीं आया, जिसके संबंध में थाना कोतवाली नगर जनपद मुरादाबाद में मुकदमा सूचना दर्ज कराई गई है। हुलिया गुमशुदा का इस प्रकार है। उम्र करीब 23 वर्ष, रंग गेहुआ, कद 5'3", कपड़े आसमानी नीले रंग का हुड पहने हैं। यदि किसी व्यक्ति उपरोक्त गुमशुदा व्यक्ति के संबंध में कोई जानकारी मिले तो निम्न नंबरों पर सूचित करें। उप निरीक्षक गौरव कुमार, थाना कोतवाली नगर जनपद मुरादाबाद। मोबाइल नंबर है 9258936401। मोबाइल नंबर एक बार फिर से सुन ले, 9258939364 01। प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर जनपद मुरादाबाद। मोबाइल नंबर है 9454404044। मोबाइल नंबर एक बार फिर सुन ले, 9454404044। ये सूचना समाप्त हुई। अगली सूचना इस प्रकार है। प्रभारी निरीक्षक थाना नूरिया जिला पीलीभीत हमें सूचित करते हैं कि फरहा पत्नी जमील अहमद निवासी मोहल्ला नई बस्ती खब्बापुर थाना नूरिया जिला पीलीभीत से विगत 3/4/2026 से लापता है। इनकी उम्र 35 वर्ष, रंग गेहुआ, कद 152

0.4 सेंटीमीटर और चेहरा गोल है। यदि किसी व्यक्ति को इनके संबंध में कोई जानकारी हो अथवा सूचना प्राप्त हो तो कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। प्रभारी निरीक्षक थाना नूरिया जिला पीलीभीत, मोबाइल नंबर 9411474358। मोबाइल नंबर एक बार फिर सुन लें, 9411474358। सूचना समाप्त हुई। कृपया एक और सूचना सुने। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित कर रहा है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार शौर्य, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला और संस्कृति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 18 वर्ष से कम आयु जो 31/7/2026 तक है के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है। नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.government.in के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत किए जा सकते हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 12:10 हुए हैं। पेशे खिदमत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत आपके नाम।

कार्यक्रम गीत आपके नाम सुनने वाले हमारे सभी रेडियो श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। स्वीकार कीजिए तरन्नुम का प्यार भरा नमस्कार।

जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना फिल्म अमर अकबर एंथोनी से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के संगीत से सजे इस गीत को। फरमाइश आप सबकी, पारस मणि रेडियो श्रोता क्लब, गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार।

लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल, रक्षिता लोखंडे ने। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा और गव्या मल्होत्रा ने। मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान ताइड़े, वसंत राव भोजने, पीएस नवारकर ने। खैल बाजार पानीपत से रमेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा। साथ में है नानक चंद्र मल्होत्रा। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, गोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का ने। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म राजकुमार से आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में शंकर जयकिशन के संगीत से सजे इस खूबसूरत से गीत को। फरमाइश आप सबकी। गांव फांसी हिसार से राजकुमार दौदी, प्रमोद कुमार दौदी, पुष्पेंद्र कुमार दौदी की। इसी गीत को सुनना चाहा है दुर्गा कॉलोनी हासी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू ने। इसी गीत की फरमाइश की है फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर सिंह पांधा, जी एस रामगढ़िया ने। गांव व डाकघर निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर व करमजीत कौर ने। किशन गंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी ने। इसी गीत की फरमाइश की है गुवाहाटी आसम से हरेंद्र पांड्या, नरेन पांड्या, वीरेन पांड्या ने। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, जिशान छीपा और पूजा परिहार ने। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना की। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: महके हैं दो गुलाब,
1: एक डोर में होते हैं दो मोती,
0: एक साथ धड़के हैं।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत आपके नाम, ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म काला धंधा गोरे लोग से मोहम्मद अजीज की आवाज़ में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजे इस खूबसूरत से गीत को फरमाइश आप सबकी। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी हेमलता हिन।

हर्षित खुशी गोस्वामी की। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल और विशाल सपकाल की। इसी गीत को सुनना चाहा है चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा ने। हरियाणा से अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा, प्रिंस बोट, सीताराम कांगड़ा, साहिल कांगड़ा ने। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल ने। भटिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, तानिया नारंग ने। इसी गीत की फरमाइश की है बाड़ी खामगांव से अंतावाड़े रामेश्वर, छोटू साक्षी, समस्त वाड़े परिवार ने। इसी गीत को सुनना चाहा है बोड़खेड़ा पीतरामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मूड़त, चेतन नहाटा ने। नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन अंसारी, नाजमा बेगम, मोहम्मद तौफीक, मोहम्मद कलीम अंसारी ने। सनावत ग्राम खगवाड़ा गडगू खगवाड़ा से धर्मेंद्र सेन, श्रीराम सेन, कलाबाई, सावित्री, निशा, आयुष, दीपांशु, आरुषि, लक्षित सेन ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म मेरे सनम से। गायक कलाकार हैं आशा भोसले। फरमाइश आप सबकी। दीदार रेडियो श्रोता संघ बिलराम गेट कासगंज से एम असलम सैफी, जैबुन्निसा बेगम, सद्दाम सैफी, सोनी जाहिद और आबाद खान की।

गीत को सुनना चाहा है विग्नेश कुमार, माफ कीजिएगा, विनेश कुमार रागनी और मुस्कान से, बरेली कैंट चनहेटी से। पूरा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, सुलोचना भगत, चेतन भगत ने। इसी गीत की फरमाइश की है रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदयभान पाल, जय हिंद पाल, दीक्षा प्रतीक्षा, विमलेश, दिव्यांश बघेल और समस्त परिवार ने। टैगोर गार्डन दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा ने। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुलरकर, रतनमाला ओम सुलरकर ने।

महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार, विशाल कुमार, शीला धनजे, गायत्री धनजे ने खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद ने नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी बिहार से अकरम हुसैन, वसीम अकरम, आरिज शमीम, ममता रानी शर्मा, बच्चू शेख बेगम, इशरत अकरम, रुबीना वसीम, नदीम अमन, पूनम कुमारी शर्मा, चीना शेख ने कोआथ बिहार से शेख जफर हसन, नरगिस जफर ने नूर महल महसूल से हुमैरा नाज, सुमैरा नाज, अबीहा नाज, फरहान माफ कीजिएगा अरहान बाबू, हमजा बाबू और मुजम्मिल बाबू ने। अफजलपुर पट्टी तहसील सदर जिला रामपुर यूपी से राहुल गौतम, दिलीप सिंह, विशाल, चमनलाल मिस्त्री, रूमा, मंजू, प्रियंका, शीतल, पूजा, बबीता, सोहन गौतम ने खेड़ावाड़ी तहसील जिला हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोटके, नंदा बोटके, हनुमान, सारिका, सुरेखा व सोनम बोटके ने लुधियाना पंजाब से विनोदपुरी राजू, अशोक, सुशील, बीकेपुरी, कैलाश, अनीता, ममता, मेघा, पूजा, गगन कपूर, गुंजन कपूर, लालसा, रमा मलिक, कुणाल, निधि, हरीश, सतीश, राकेश, विनोद पाली, डीसी पुरी और अरुण पाली ने सारिमपुर बक्सर से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा अंसारी और मोहम्मद समी अंसारी ने इंदिरा विहार दिल्ली से डब्लू अंसारी और बेबी अंसारी ने छटिया पोखरा गांव डुमराव से लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती ने डोडी लोहारा बालोद से कमलेश जयपुरिया टाउनशिप भिलाई से अनुश्री प्रदीप, पिंकी और प्रमिला प्रदीप, जेल रोड रायगढ़ से लालचंद्र मिश्रा और नरेंद्र कुमार राम ने ग्राम घाटमपुर से रामभजन सैनी, हरप्यारी सैनी, राजीव सैनी, संजय, मुकेश, आशा, अंशिका, पूजा सैनी और राम प्रकाश सैनी ने गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म मेरे सनम से।

कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवाते हैं फिल्म शराबी से किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में बप्पी लहड़ी के संगीत से सजे इस खूबसूरत से गीत को। फरमाइश आप सबकी। जमानिया मध्य प्रदेश से मनीष रावत, नीलू रावत, रोहन रोशन की। इसी गीत को सुनना चाहा है। जिला अमरोहा नई बस्ती पतेई खालसा से बहरुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद सिफान सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, अनाबिया सिद्दीकी, बिटिया अलीशा, शकील सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, मोहम्मद यासीन अंसारी, सुदेश चौहान ने। गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप नूर, गुर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह ने। इसी गीत की फरमाइश की है। लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा ने। वारसी क्लब सिंघौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख, करुला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शुएब खान ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

कार्यक्रम के इसी अंतिम गीत के साथ गीत आपके नाम संपन्न करने की अपनी रेडियो साथी तरन्नुम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत आपके नाम। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में दिन के 1 बजने को हैं। अब अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से कुछ ही क्षणों में रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है, बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए ओडिशा सरकार, इंटेल और 3DGS को समझौता ज्ञापन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
1: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति

0: पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
1: भारत और कनाडा में व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सीईपीए पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी सीईपीए समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुज जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में कल देर रात आए तूफान में निर्माणाधीन पुल के ढहने से 6 मजदूरों की मौत हो गई। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल बचाव कार्य में लगे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख दर्ज किया गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 69 अंक गिरकर 75,799 पर था, जबकि निफ्टी 54 अंक की गिरावट के साथ 23,854 पर कारोबार कर रहा था। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 1:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के
1: यात्रियों आई एम हियर
2: मोबाइल चार्ज करना
3: दिमाग चार्ज कर अपना
4: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक
3: देखा
2: पापा रुको मैं पे करता हूँ नो सिग्नल
4: अब क्या करोगे
2: फ्री वाईफाई है ना
3: बुद्धू सुधर जा
4: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय
4: RBI कहता है
5: करो से ही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट
6: अब से कुछ ही देर के बाद 1:15 पर सुनिएगा नात व कव्वाली कलाकार होंगे शाहिद नियाजी व साथी 1:30 पर कार्यक्रम कुमकुम के अंतर्गत चर्चा सुनिएगा फैशन चक्र कल का स्टाइल आज का ट्रेंड साथ ही वार्ता में बदलते समय में परिवार की बदलती परिभाषा वार्ताकार होंगी वैशाली गुप्ता क्षेत्र संकलित कार्यक्रम में सुनिएगा कम बजट में छुट्टियों में बनाएं यादगार और छुट्टियों को बनाएं यादगार और मजेदार वार्ताकार होंगी भावना साथ ही गर्मियों में फिट और एक्टिव रहने के लिए कुछ आसान टिप्स भी दिए जाएंगे प्रस्तुति श्रद्धा जिंदल की होगी पांच बजकर 15 पर सुनिएगा हमारे युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी और शाम 5 कार्यक्रम आज शाम आप सुन सकेंगे छह 6:10 पर चित्रपट संगीत का कार्यक्रम होगा और 6:20 पर

कृषि जगत में सुनिएगा चर्चा चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर। कार्यक्रम लोक मंजरी फरमाइशी लोकगीतों का पर आधारित कार्यक्रम आप सुनेंगे, साथ ही क्षेत्र संकलित कार्यक्रम मौसम की जानकारी आप सुन सकेंगे। पेशकश अब्दुल हफीज और अनिल किशोर की होगी। सात बजे शास्त्रीय संगीत में गायन ठुमरी भैरव कलाकार गिरजा देवी होंगी। सुगम संगीत में कलाकार आलोक गांगुली के गाए कुछ गीत आप सुनेंगे। आठ बजे सुनिएगा कार्यक्रम गीत गाता चल, व्हाट्सएप पर फरमाइशी कार्यक्रम। 9:30 पर स्पोर्ट्स राउंडअप कार्यक्रम आप सुनेंगे, प्रस्तुति अवधेश कुमार गौतम की होगी। ये था, माफ कीजिएगा, रात्रि 10 बजे हेलो फरमाइश आप सुन सकेंगे। ये था संक्षिप्त विवरण हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। कुछ ही समय में 1:10 होने को हैं। अब इलाकाई खबरें हमारे लखनऊ मरकज से नश्र की जाएंगी।

0: आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज मऊ जिले में 392 करोड़ की लागत वाले 114 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। इन प्रोजेक्टों के तवस्सुत से सड़कों, खेल सहूलियात, तालीमी इदारों, शहरी बुनियादी ढांचों को मजबूती मिलेगी। इस मौके पर अपने खिताब में वजीर आला ने कहा,
1: जब अच्छी सरकार आती है, अच्छे लोग चुन करके जाते हैं तो अच्छी सरकार आती है, और अच्छी सरकार आती है तो विकास लेकर के भी आती है। ये जो विकास है, ये आपके जीवन स्तर को उठाने का माध्यम है, बिना भेदभाव। ये सब तब होता है जब अच्छे लोग चुने जाते हैं और अच्छी सरकार बनती है, तब परिणाम आते।
0: ज़राअत, किसान बहबूद और देही तरक्यात के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में दो रोज़ा कौमी ज़रई इजलास की इफ्तिताही तकरीब को खिताब किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के मेहनती किसानों की कोशिशों की वजह से मुल्क में वाफर गजाई जखीरा मौजूद है। जनाब चौहान ने कहा कि मुल्क के गजाई तहफ़ को यकीनी करना, किसानों की आमदनी को बेहतर बनाना और मुल्क की आवाम को तगज़िए से भरपूर खुराक मुहैया कराना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है।
2: देश के किसानों के परिश्रम से, भारत सरकार की योजना, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और नीतियों के कारण, हमारे वैज्ञानिकों ने जो नई नई किस्में बीजों की बनाई उनके कारण, और राज्यों ने भी अपने अपने राज्यों में मेहनत की। इस बार सारे रिकॉर्ड उत्पादन के हमने तोड़े हैं इस वर्ष में। इस साल कुल मिला के जो खाद्यान्न उत्पादन के आंकड़े आ रहे हैं 3,765.63 टन अनुमानित है, जो पिछले साल से 188 लाख टन अधिक है।
0: मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से वजीर आजम रिहायशी स्कीम दिल्ली के तहत 12 रियासतों को 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम भी जारी की। इस मौके पर जनाब चौहान ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का अहादा है कि मुल्क में कोई भी गरीब कच्चे मकान में न रहे। हुकूमत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सिलेबस में जामे इस्लाह के लिए इंडस्ट्री वर्ल्ड के साथ मिलकर काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलातो तकनीकी के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में AI सिलेबस अफरादी कुवत के साथ एक आला सतही मीटिंग की। मीटिंग में AI तालीम को मुस्तकबिल की तकनीकी जरूरियात के मुताबिक ढालने पर बातचीत हुई। मरकजी वजीर बराए तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली वाके CBSE सदर दफ्तर में एक आला सतही जायजा मीटिंग की। मीटिंग में बोर्ड के दर्जा 12वीं के इम्तिहानात की तशखीस और नतायज के बाद के अमल से मुतालिक मौजू का जायजा लिया गया। इस दौरान मरकजी वजीर ने अफसरान को तलबा की दिक्कतों का वक्त पर शफाफ तरीके से और तलबा के मफाद के तरीके से तस्फिया यकीनी करने के अहकाम दिए। साबिक वजीर आजम भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की यौम वफात पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए खराज अकीदत पेश किया है। वजीर आला ने कहा कि उनकी सादा जिंदगी, किसानों के तई मानवन और अवामी बहबूदी सियासत सभी को हमेशा रागिब करती रहेगी। उनकी यादों को और उसूलों को बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश हुकूमत कई अवामी बहबूदी स्कीमें चला रही है। दरियासना वजीर आला ने आज लखनऊ में साबिक वजीर आजम चौधरी चरण सिंह की यौम वफात के मौके पर उनके मुजस्मे पर गुल्हाए अकीदत पेश किए। जिला हमीरपुर में ललपुरा थाना हलके के मोरांग कादर गांव के नजदीक बेतवा नदी में जेर तामीर पुल का स्लैब गिरने से 6 मजदूर जां बहक हो गए हैं। SDRF और NDRF की टीम और गांव के लोग राहत और रसाने के कामों में लगे हुए हैं। 2 लाशों को बरामद कर लिया गया है, बकिया 4 मजदूरों की लाशों की तलाश जारी है। जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक गोयल ने बताया कि गुज़िश्ता देर रात 100 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी तूफान के चलते ये जेर तामीर पुल की स्लैब गिर गई। बेतवा नदी में जेर तामीर पुल के हादसे की जानकारी लेते हुए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मरने वालों के लवाहिकीन को 5-5 लाख रुपए और जख्मियों को 50-50 हजार की माली मदद और मुनासिब इलाज के अहकाम दिए हैं। अमेठी जिले के मुंशीगंज थाना हलके में कल देर रात पेश आए एक सड़क हादसे में 3 नौजवानों की मौत हो गई, जबकि एक शदीद तौर से जख्मी हो गया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब प्यास से लदा एक तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू हो गया और सड़क किनारे जा रही 2 बाइकों पर पलट गया, जिससे 3 नौजवानों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस फरार ड्राइवर की तलाश कर रही है। और रियासत के कई जिलों में गुज़िश्ता शब और आज सुबह तेज आंधी और गरज चमक के साथ शुरू हुई बारिश से आवाम को फिलहाल शदीद गर्मी से राहत मिली है। संत कबीर नगर, बलिया, कौशाम्बी, कुशीनगर, अम्बेडकर नगर, पीलीभीत, अयोध्या, चंदौली, जौनपुर, हमीरपुर, गोरखपुर और दारुल हुकूमत लखनऊ समेत कुछ दीगर अजला में बारिश होने की खबर है। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने रियासत में कई मकामात पर 31 मई तक आंधी बारिश और तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया है। इससे दर्ज हरारत में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का इम्कान है। महकमे के मुताबिक 1 जून से मौसम खुश्क होने की उम्मीद है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
3: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 1:15 हुए हैं। पेशे खिदमत है कार्यक्रम नात कव्वाली। कलाकार हैं शाहिद नियाजी व साथी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नात व कव्वाली। कलाकार थे शाहिद नियाजी व साथी। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है।

ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 1:30 हुआ है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कुमकुम, प्रस्तुति श्रद्धा जिंदल की है।

कभी पुराने फोटो देखते हुए मन मुस्कुरा उठता है और कभी बच्चों के साथ बातें करते करते एहसास होता है कि वक्त कितना बदल गया है, लेकिन कुछ चीज़ें आज भी वैसी ही पसंद की जा रही हैं। नमस्कार सखियों, आप सभी को श्रद्धा का प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आपका अपने पसंदीदा कार्यक्रम कुमकुम में। तो मेरी प्यारी सखियों, उम्मीद है गर्मियों के इन दिनों में आप सब अपने कामकाज के साथ साथ बच्चों की छुट्टियों को भी अच्छे से एंजॉय कर रही होंगी। घर में बच्चों की चहल पहल, उनकी फरमाइशें और बातों बातों में निकलती पुरानी यादें, यही तो इन दिनों को और भी खास बना देती है। और फिर इन्हीं बातों बातों में कभी पुरानी साड़ियों का जिक्र छिड़ जाता है, कभी पुराने गानों वाले स्टाइल की बात होने लगती है और तब महसूस होता है कि फैशन भी सच में एक चक्र की तरह है जो घूम कर फिर वहीं लौट आता है। बस अंदाज नया होता है लेकिन रंग वही पुराने होते हैं। और फिर धीरे धीरे बात निकल पड़ती है उस दौर की, जब फिल्मों के गानों से लेकर लोगों के पहनावे तक सबका अपना अलग ही अंदाज हुआ करता था। कभी किसी अभिनेत्री की साड़ी लोगों को पसंद आ जाती थी तो कभी किसी गाने में पहना हुआ स्टाइल अगले ही दिन बाजारों में दिखाई देने लगता था। और अब देखिए ना सखियो, बड़ी बही बड़े झुमके, ढीले ढाले कुर्ते, बेल बॉटम, पुरानी डिज़ाइन की साड़ियाँ और हाथों का पारंपरिक काम एक बार फिर लोगों की पसंद बनता जा रहा है। सखियो, आपने देखा होगा कि पहले के समय में महिलाएं सलवार सूट, घेरदार पैजामे और ढीले मोरी वाले कपड़े ज़्यादा पहनती थीं और आज उसी आरामदायक अंदाज ने पैंट स्ट्रेट फिट का रूप ले लिया है और बेल बॉटम का नया रूप प्लाजो, वाइड लेग पैंट्स और फ्लेयर ट्राउज़र के रूप में फिर से ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। फैशन का यही दिलचस्प पहलू है सखियो, जो चीज़ें कभी पुराने ज़माने की पहचान थीं वही आज नए ट्रेंड बनकर लोगों को फिर पसंद आने लगी हैं। लेकिन कई बार क्या होता है सखियो, हम दूसरों को देखकर या टीवी और सोशल मीडिया से प्रभावित होकर ऐसे कपड़े पसंद कर लेती हैं जो ट्रेंड में तो होते हैं लेकिन हमारे व्यक्तित्व या सुविधा के अनुसार नहीं होते। इसलिए फैशन अपनाते समय अपनी पसंद, आराम और अवसर का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। और जब बात स्टाइल की हो तो नया खरीदना ही ज़रूरी नहीं होता। अब आप सोच रही होंगी तो वो कैसे, तो वो ऐसे सखियो जैसे पुरानी बनारसी साड़ियों से खूबसूरत अनारकली सूट तैयार किया जा सकता है। दुपट्टों को स्टाइलिश रग या कुर्तों के डिज़ाइन में बदला जा सकता है या पुरानी साड़ियों से बच्चों के लिए लहंगा या फ्रॉक डिज़ाइन करा सकती हैं या पुरानी जीन्स पर एम्ब्रॉयडरी या पेज वर्क करके उसे ट्रेंडी लुक दे सकती हैं। यानी फैशन में नया अंदाज जोड़ना अच्छा है और यही वजह है कि आज एक जगह का पहनावा दूसरी जगह की पहचान बनता जा रहा है, चाहे वो पंजाब का पटियाला, लखनऊ की चिकनकारी या बनारसी साड़ियाँ अब हर गली मोहल्ले तक पहुँच चुके हैं। भले ही फैशन हर जगह पहुँच गया हो लेकिन उसकी पहचान आज भी उसी शहर और संस्कृति के नाम से जुड़ी रहती है। यानी फैशन चक्र में कल का स्टाइल आज का ट्रेंड बनता जा रहा है। और जब बात फैशन और पहनावे की हो तो अपनी पसंद, ज़रूरत और सुविधा के अनुसार सही चयन करना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है। लेकिन कई बार हम बड़ी सेल और भारी छूट देखकर हम ऐसे कपड़े भी खरीद लेते हैं जिनकी हमें वास्तव में ज़रूरत नहीं होती। इसलिए शॉपिंग करते समय सिर्फ ऑफर के पीछे भागने के बजाय ये जरूर सोचें कि कपड़ा हमारे काम का है या नहीं और क्या हम उसे बार बार इस्तेमाल कर पाएंगे। याद रखिए, समझदारी से की गई खरीदारी न सिर्फ पैसा बचाती है बल्कि हमारी पसंद और ज़रूरत दोनों का सही

संतुलन भी बनाए रखती है। और सखियों, बात जब पसंद और ज़रूरत के बीच संतुलन बनाने की हो तो महिलाएं वैसे कपड़ों को ज़्यादा पसंद करने लगी हैं जिन्हें कई तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। एक ही ड्रेस को अलग दुपट्टे, जैकेट या एक्सेसरीज के साथ नया लुक दिया जा सकता है। ऑफिस में सिंपल अंदाज तो छोटी सी पार्टी में वही पहनावा थोड़ा स्टाइल बदल कर खास बन सकता है। यानी थोड़ी सी क्रिएटिविटी और समझदारी से महिलाएं अपने फैशन को आगे बढ़ा सकती हैं और बजट को भी आसानी से संतुलित रख सकती हैं। शायद यही सोच आज कई महिलाओं को घर बैठे अपने हुनर को नई पहचान देने के लिए भी प्रेरित कर रही हैं। चाहे शहर हो या गांव, महिलाएं सिलाई कढ़ाई और पुराने कपड़ों को नया रूप देकर अपने हुनर को आगे बढ़ा रही हैं। सोशल मीडिया और ऑनलाइन माध्यमों की मदद से अब अपने काम को लोगों तक पहुंचाना भी पहले से कहीं आसान हो गया है। इससे उन्हें आत्मविश्वास के साथ साथ आर्थिक मजबूती भी मिल रही है। और जो महिलाएं अपने काम को बड़े स्तर तक ले जाना चाहती हैं तो सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ उठाकर स्वयं सहायता समूह से जुड़ सकती हैं। इन समूह के माध्यम से वे सिलाई कढ़ाई और छोटे घरेलू व्यवसायों से जुड़कर अपने हुनर को आगे बढ़ा सकती हैं। और सखियों, यही छोटी छोटी शुरुआत आगे चलकर बड़े बदलाव की वजह बनती है। आज अगर हम अपने कौशल को सही दिशा दें तो घर बैठे भी एक मजबूत पहचान बनाई जा सकती है। फैशन का यही चक्र हमें सिखाता है कि पुराना कभी ख़त्म नहीं होता, बस नए रूप में अवसर बनकर लौट आता है। और यही बात हमें फैशन की दुनिया में भी साफ दिखाई देती है, जहाँ हर पुराना स्टाइल किसी न किसी नए अंदाज में फिर से अपनी जगह बना लेता है। इसी सोच के साथ जब हम पुराने गीत सुनते हैं तो उनका वही पुराना जादू आज भी दिल को छू जाता है। बस रूप बदल जाता है, एहसास वही रहता है।

0: सखियों, अभी आप सभी ने सुना एक खूबसूरत गीत, और अब जरा ठहर कर बात करते हैं उन रिश्तों की जो हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। वक्त बदला, लोगों की सोच बदली, रहन सहन बदला, और इसी के साथ परिवारों का स्वरूप भी बदलता चला गया। पहले जहां एक आंगन में कई पीढ़ियां साथ नज़र आती थीं, वहीं आज रिश्तों को निभाने के तरीके और मायने दोनों नए रूप ले रहे हैं। आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में समय की कमी, काम का दबाव और बदलती प्राथमिकताओं ने पारिवारिक जीवन को काफ़ी प्रभावित किया है। फिर भी हर दौर में परिवार ही वह जगह रहा है जहां अपनापन, सहयोग और भावनाओं का सबसे सच्चा एहसास मिलता है। बदलते समय के साथ रिश्तों की परिभाषाएं भले बदली हों, लेकिन उनकी अहमियत आज भी उतनी ही गहरी है। तो आइए इन्हीं बदलते पहलुओं पर सुनते हैं हमारी मेहमान वैशाली गुप्ता की वार्ता। वार्ता का विषय है बदलते समय में परिवार की बदलती परिभाषा।
1: परिवार मानव सभ्यता की सबसे प्राचीन और आधारभूत संस्था है, जिसने न केवल व्यक्ति के अस्तित्व को अर्थ प्रदान किया है, बल्कि समाज और राष्ट्र के निर्माण में भी भूमिका निभाई है। यह केवल रक्त संबंधों का समूह नहीं, बल्कि भावनात्मक, सांस्कृतिक, नैतिक और सामाजिक मूल्यों का संगम है। परिवार को समाज की वह प्राथमिक इकाई माना जाता है, जहाँ से व्यक्ति जीवन के प्रथम संस्कार, अनुशासन, सह अस्तित्व और जिम्मेदारियों की शिक्षा प्राप्त करता है। जिस प्रकार कोशिकाएं शरीर का निर्माण करती हैं, उसी प्रकार परिवारों से समाज और राष्ट्र का स्वरूप निर्धारित होता है। भारतीय संदर्भ में परिवार की अवधारणा विशेष रूप से व्यापक और गहन रही है। यहाँ परिवार का अर्थ केवल माता पिता और उनकी संतान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें दादा दादी, चाचा चाची, ताई ताऊ, भाई बहन और अन्य रिश्तेदार भी शामिल होते हैं। संयुक्त परिवार भारतीय समाज की पहचान रही है, जहां सामूहिकता, सहयोग, त्याग और परस्पर निर्भरता जैसे मूल्यों का विकास होता था। यह प्रणाली न केवल आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती थी, बल्कि सामाजिक स्थिरता, भावनात्मक संतुलन का भी आधार थी। किंतु 21वीं सदी में वैश्वीकरण, तीव्र तकनीकी प्रगति, शहरीकरण और उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रभाव ने परिवार की पारंपरिक संरचना, उनके मूल्य को चुनौती दी है। आधुनिक जीवन शैली, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बढ़ती भावना और रोजगार के नए अवसरों ने संयुक्त परिवार को धीरे धीरे एकल परिवार में परिवर्तित कर दिया है। आज के समय में परिवार की परिभाषा अधिक लचीली और विविधतापूर्ण हो गई है। इसमें एकल माता पिता परिवार, लिव इन रिलेशनशिप और अन्य प्रकार की पारिवारिक संरचनाएं भी शामिल हो रही हैं। इस परिवर्तन के साथ साथ परिवार की भूमिका और कार्यों में भी बदलाव आया है, जहां परिवार पहले सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक परंपराओं का प्रमुख केंद्र था, आज वही इन भूमिकाओं का कुछ हिस्सा बाहरी संस्थाओं जैसे शिक्षा प्रणाली, बाजार और डिजिटल माध्यमों द्वारा भी निभाया जा रहा है। इसके बावजूद परिवार का महत्व कम नहीं हुआ है, बल्कि इसकी प्रकृति और स्वरूप में परिवर्तन आया है। अतः यह तो स्पष्ट है कि परिवार एक स्थिर संस्था नहीं, बल्कि एक गतिशील व्यवस्था है जो समय और सामाजिक परिवर्तनों के अनुसार स्वयं को ढालती रहती है। प्राचीन और मध्यकालीन समाज में परिवार केवल एक सामाजिक संस्था नहीं, बल्कि जीवन यापन, सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था का केंद्र था। उस समय आर्थिक ढांचा मुख्यतः कृषि पर आधारित था, इसलिए परिवार की संरचना भी इसी के अनुरूप विकसित हुई। अधिक सदस्यों वाला परिवार अधिक श्रम शक्ति का स्रोत माना जाता था। खेतों में काम करने के लिए अधिक हाथ और भारी संकटों से बचाव के लिए एक मजबूत सामूहिक व्यवस्था। इस प्रकार आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा तीनों दृष्टियों से ही परिवार अत्यंत महत्वपूर्ण था। उस समय परिवार की संपत्ति साझा होती थी, उस पर अधिकार एक व्यक्ति का न होकर पूरे परिवार का होता था। इस बाल्यावस्था में परिवार का सबसे बुजुर्ग पुरुष परिवार के मुखिया होते थे। उनका निर्णय अंतिम होता था। उस समय परिवार शिक्षा और संस्कारों का मुख्य माध्यम था। विशेष रूप से दादा दादी और अन्य सदस्य कहानियों, लोक कथाओं और अनुभवों के माध्यम से नई पीढ़ी को नैतिक शिक्षा देते थे। यह प्रक्रिया न केवल ज्ञान संचार का साधन थी, बल्कि परिवार के भीतर भावनात्मक जुड़ाव और परंपराओं के संरक्षण का भी आधार थी। उस युग में परिवार की परिभाषा स्व की अपेक्षा सर्व पर आधारित थी। प्राचीन और मध्यकालीन परिवार व्यवस्था सामूहिकता, अनुशासन और परंपराओं के संरक्षण का उदाहरण प्रस्तुत करती थी, जिसने भारतीय समाज की नींव को लंबे समय तक स्थिर और मजबूत बनाए रखा। परिवार की संरचना परिभाषा में जो बदलाव आज हम देख रहे हैं, वह किसी एक घटना और कारण का परिणाम नहीं है। यह लंबे समय से चली आ रही प्रक्रिया है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, कानूनी सभी प्रकार के परिवर्तनों ने मिलकर भूमिका को निभाया है। 21वीं सदी में आए इन व्यापक बदलावों में न केवल परिवार के स्वरूप को प्रभावित किया है, बल्कि उनके मूल्य, संबंधों और कार्यप्रणाली को भी नया रूप दिया है। औद्योगिकरण ने भारतीय समाज की संरचना को जड़ से ही बदल दिया है। जब देश में उद्योग का विकास हुआ तो रोजगार के अवसर शहरों में केंद्रित हो गए, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोग गांव से शहरों में पलायन करने लगे। परंतु शहरों की बढ़ती लागत और तेज जीवन शैली के कारण वे अपने पूरे संयुक्त परिवार को साथ में ना ला सके। इस परिस्थिति ने एकल परिवार की धारणा को जन्म दिया। धीरे धीरे छोटा परिवार, सुखी परिवार की सोच समाज में गहराई से स्थापित हो गई, जिसने संयुक्त परिवार प्रणाली को कमजोर कर दिया। शिक्षा ने समाज में बड़ा वैचारिक परिवर्तन लाया है। आधुनिक शिक्षा ने युवाओं को तर्क करने, प्रश्न पूछने और अधिकारों के प्रति जागरूक करने की प्रेरणा दी है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की भावना मजबूत हुई है, जिसमें परिवार के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित किया है। 20-24 सदस्यों वाले संयुक्त परिवार को आर्थिक रूप से संभालना आज एक बड़ी चुनौती बन गया है। इसके विपरीत छोटे परिवार आर्थिक रूप से व्यावहारिक लगते हैं। इस कारण लोगों ने स्वेच्छा से छोटे परिवारों को अपनाना शुरू किया है और संयुक्त परिवारों का विघटन शुरू हो गया है। आज के समय में महिलाएं आर्थिक और सामाजिक रूप से अधिक स्वतंत्र हो गई हैं, जिसमें वे अपने जीवन और परिवार से जुड़े निर्णयों को सक्रिय भूमिका निभाने लगी हैं। आज की नारी केवल परिवार का हिस्सा ही नहीं, बल्कि उसकी दिशा और दशा तय करने वाली सशक्त शक्ति बन चुकी है। पहले के समय में महिलाओं की भूमिका घर की देखभाल, बच्चों के पालन पोषण और घरेलू कार्यों तक ही सीमित थी, लेकिन जैसे जैसे महिलाओं ने शिक्षा प्राप्त की और नौकरी के क्षेत्र में प्रवेश किया, उनकी स्थिति में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। अतः वे केवल घर की सीमा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि परिवार की आय में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। बेकार महिलाएं अब चूल्हे चौके तक सीमित न होकर घर की वित्त मंत्री और नीति निर्माता बन गई हैं। आधुनिक परिवारों में अब पुरुष भी घरेलू कार्यों जैसे खाना बनाना, सफाई करना और बच्चों की देखभाल में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। यह बदलाव केवल व्यवहार में नहीं बल्कि मानसिकता में भी दिखाई देता है। अब पति पत्नी का संबंध आदेश और पालन करने के बजाय सहयोग पर आधारित होता है। आधुनिक नारी में न केवल अपनी पहचान को नई परिभाषा दी है, बल्कि परिवार की अवधारणा को भी बदल दिया है। समय के साथ साथ स्वरूप बदलना प्रकृति का नियम है। परिवार का ढांचा बदला है, दीवारें बदली हैं और सदस्यों की संख्या भी कम हुई है। अब पति पत्नी का संबंध आदर्श और पालन के लिए नहीं बल्कि सहयोग पर आधारित हो रहा है। आधुनिक नारी ने न केवल अपनी पहचान को नई परिभाषा दी है, बल्कि परिवार की अवधारणा को भी बदल दिया है। समाज के साथ साथ स्वरूप बदलना प्रकृति का नियम है। परिवार का ढांचा बदला है, दीवारें बदली हैं और सदस्यों की संख्या भी कम हुई है, लेकिन परिवार केवल ईंट पत्थर का मकान या जनगणना का आंकड़ा नहीं है जो हम मनुष्य को बांधे रखता है। परिभाषाएं चाहे कितनी बदल जाएं, यदि उसमें धैर्य, करुणा और एक दूसरे के लिए सम्मान जीवित है तो वह परिवार सार्थक है। परिवार वह सुरक्षा का घेरा है जो दुनिया के हर तूफान से हमें सुरक्षित रखता है। स्वरूप चाहे जो भी हो, स्नेह का होना अत्यंत आवश्यक है और यदि हम एक दूसरे का हाथ थामे रखें तभी एक स्वस्थ समाज का निर्माण संभव है।
0: सखियों, अभी आप सभी ने सुनी हमारी मेहमान वैशाली गुप्ता की वार्ता। वार्ता का विषय था बदलते समय में परिवार की बदलती परिभाषा। उम्मीद है वार्ता आपको पसंद आई होगी और अब बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए जुड़ते हैं एक नए रंग और नए अंदाज के साथ, जहां छोटी छोटी खुशियों को खास बनाने की प्यारी सी कोशिश की गई है। तो आइए अब सुनते हैं हमारा क्षेत्र संकलित कार्यक्रम। गर्मी की छुट्टियां यानी बच्चों के चेहरे पर मुस्कान, परिवार के साथ थोड़ा सुकून और रोजमर्रा की भागदौड़ से कुछ खूबसूरत पल चुरा लेने का मौसम। तो आज हम बात करेंगे कि कम बजट में भी छुट्टियों को कैसे बनाया जा सकता है यादगार और मज़ेदार। और इसी खास विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं एक खास मेहमान। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले इनका नाम। आपका नाम?
2: जी मेरा नाम भावना है।
0: भावना जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो भावना जी, सबसे पहले अपने बारे में और अपने शौक के बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा बताइए।
2: जी मुझे परिवार के साथ समय बिताना, नई जगहों पर घूमना और बच्चों के साथ छुट्टी एंजॉय करना बहुत पसंद है।
0: बहुत सुंदर, बच्चों की छुट्टियाँ भी हैं, ऐसे में घर का माहौल भी थोड़ा खुशियों भरा हो जाता है। तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि बच्चों में छुट्टियों को लेकर आपके घर में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है।
2: जी बिल्कुल, बच्चे तो छुट्टियों का बेसब्री से इंतजार करते हैं, उन्हें लगता है कि अब पढ़ाई से थोड़ा सा आराम मिलेगा
0: जी।
2: और परिवार के साथ कहीं घूमने भी जाने को मिलेगा।
0: जी सही कहा आपने, और बच्चों की यही खुशी बड़े लोगों को भी खुश कर देती है। लेकिन आजकल बढ़ते खर्चों के बीच लोग सोचते हैं कि कम बजट में अच्छी छुट्टियां कैसे प्लान की जाए। आपको क्या लगता है कि कम बजट में भी अच्छी और यादगार ट्रिप प्लान की जा सकती है?
2: जी बिल्कुल, आजकल अगर सही तरीके से प्लानिंग की जाए तो कम बजट में बहुत अच्छी और यादगार छुट्टियां बिताई जा सकती है। सबसे पहले हमें ये तय करना चाहिए कहाँ जाना है और कितने दिनों के लिए जाना है। उसके बाद आने जाने, रहने और खाने के छोटा सा बजट पहले से बना लेना चाहिए। अगर टिकट और होटल पहले बुक किए जाएँ तो काफ़ी खर्च बच जाता है। इसके अलावा अपने शहर के आसपास की अच्छी जगहें भी चुनी जा सकती हैं जहाँ कम खर्च, परिवार के साथ अच्छा समय बिताया जा सके। और सबसे ज़रूरी बात, छुट्टियों खास बनाने के लिए हमेशा ज़्यादा पैसे ज़रूरी नहीं होते। अपनों का साथ, अच्छी यादें और थोड़ा सा सुकून भी सफ़र को यादगार बना देता है।
0: बिल्कुल, यानी छुट्टियों को खास बनाने के लिए हमेशा बड़ा बजट ज़रूरी नहीं होता, थोड़ी सी सही प्लानिंग और अपनों का साथ ही सफ़र को यादगार बना देता है। अच्छा भावना जी, अगर कोई कम बजट में कहीं घूमने जाना चाहे तो ऐसी कौन सी जगह हो सकती हैं जहां परिवार के लोग घूम सकें?
2: जी बिल्कुल, कम बजट में भी बहुत अच्छी जगहों पर घूमने जाया जा सकता है। अगर उत्तर भारत की बात करें तो ऋषिकेश, हरिद्वार, मंसूरी, नैनीताल या जयपुर जैसी जगह चुन सकते हैं। वहीं अगर किसी को शांति और प्राकृतिक पसंद हो, आसपास के छोटे हिल स्टेशन या धार्मिक स्थल भी बहुत अच्छे विकल्प होते हैं। और अगर पहले से टिकट और होटल की प्लानिंग की जाए तो खर्च भी काफ़ी कम होता है। कम बजट में घूमने का मतलब मज़ा कम होना नहीं है, सही साथ और खूबसूरत यादें ही सफ़र को खास बनाती हैं।
0: बाकी सच में प्रकृति के बीच बिताए गए पल हमेशा याद रह जाते हैं। अच्छा भावना जी, आजकल लोग सिर्फ घूमने ही नहीं बल्कि जिम्मेदारी के साथ घूमने की बात करते हैं, तो आजकल लोग इको फ्रेंडली ट्रैवल की भी बात करते हैं, यानी घूमिए भी और प्रकृति का ध्यान भी रखिए। तो आपके हिसाब से प्रकृति का ध्यान रखते हुए घूमना कितना जरूरी है?
2: जी हाँ, बहुत जरूरी है
0: जी।
2: हमें जहाँ भी जाएं वहाँ सफाई रखनी चाहिए, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना चाहिए और प्राकृतिक जगहों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए।
0: बिल्कुल, क्योंकि प्रकृति सुरक्षित रहेगी तभी आने वाली पीढ़ियाँ भी उसका आनंद ले पाएंगी। भावना जी, आजकल बच्चे ज्यादा समय मोबाइल पर बिताने लगे हैं, ऐसे में परिवार क्या कर सकता है, हमारी क्या जिम्मेदारी है?
2: जी, परिवार बच्चों के साथ आउटडोर गेम खेलें, छोटी छोटी फैमिली एक्टिविटी करें, घूमने जाएं और बच्चों को नई चीजें सिखाएं।
0: बहुत सही बात की आपने। अब आखिर में हमारे श्रोताओं के लिए आपका छोटा सा संदेश क्या रहेगा?
2: मैं बस यही कहना चाहूंगी, छुट्टी चाहे छोटी हो या बड़े, उन्हें खुशी और अपनों के साथ बिताएं, मोबाइल से थोड़ा दूर रहकर हर पल को यादगार बनाएं।
0: ये थी भावना जी, जिन्होंने बहुत खूबसूरती से हमें बताया कि थोड़ी सी प्लानिंग, अपनों का साथ और खुशियों भरे पल ही छुट्टियों को खास बनाते हैं। भावना जी, हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोताओं, आप भी इस गर्मी अपनी छुट्टियों को सुरक्षित, खुशहाल और यादगार बनाइए।
3: सखियों, अभी आप सभी ने सुना हमारा क्षेत्र संकलित कार्यक्रम। उम्मीद है बातचीत आपको पसंद आई होगी। और अब समय है कुछ छोटी छोटी बातों का, जो इस गर्मी के मौसम में आपकी दिनचर्या को और बेहतर बना सकती है। तेज धूप और बढ़ती गर्मी के बीच खुद को फिट और एक्टिव रखना भी बेहद जरूरी हो जाता है, इसलिए आज हम आपके लिए लाए हैं गर्मियों में फिट और एक्टिव रहने के कुछ आसान टिप्स। सखियों, सबसे पहले कोशिश करें कि दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें, ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो और आप खुद को तरोताज़ा महसूस करें। इसके साथ ही मौसमी फल, हल्का भोजन और ताज़ी चीज़ों को अपनी दिनचर्या में शामिल करना भी फायदेमंद रहता है। साथ ही इस मौसम में खान पान के साथ साथ पहनावे का भी ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है। सखियों, गर्मियों में हल्के रंग यानी सफ़ेद, पिंक, आसमानी या हल्के रंग के सूती कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदायक माना जाता है। ऐसे रंग शरीर को ठंडक का एहसास देते हैं, जिससे आप दिन भर तरोताज़ा और एक्टिव महसूस करेंगी। वहीं तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और अगर बाहर जाना जरूरी हो तो सिर को ढककर ही निकलें। सखियों, छोटी छोटी अच्छी आदतें, सही खान पान और थोड़ा सा ध्यान हमें दिन भर तरोताज़ा महसूस कराने में मदद करता है। तो इस मौसम में खुद का ख्याल रखिए, एक्टिव रहिए और गर्मियों का आनंद भी भरपूर उठाइए। इसी के साथ अपनी सखी श्रद्धा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुमकुम, प्रस्तुति श्रद्धा जिंदल की थी। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। कुछ ही समय में दिन के 2 बजने को हैं। अब अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से कुछ ही पलों में रिले किया जाएगा।

0: बढ़ावा मिलेगा।
1: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और सुधारों तथा नीतिगत समर्थन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। आंध्र प्रदेश की दो दिन की यात्रा के दौरान आश्रय सिंह ने कृष्णा जिले के मल्लावल्ली औद्योगिक पार्क में स्थित मोहन स्पिनटेक्स कंपनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत के वस्त्र बाजार का कारोबार 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक है और सरकार वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर अधिक पहचान मिली है।
2: 12 साल अगर कंपेयर करूं मैं तो एक ही चीज कहा, इकोनॉमी में एक्सपोर्ट

ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है, बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक अभूतपूर्व सफलता थी, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 4 दिन में ही युद्ध विराम के लिए विवश कर दिया। ये भारत के अब तक के लड़े गए सभी युद्धों से अलग था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर स्मृति प्रकाशन जारी करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये प्रकाशन केवल ऐतिहासिक विवरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वीर सैनिकों के व्यक्तिगत अनुभवों को भी समाहित किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि ये आधुनिक युद्ध के मानवीय पहलू की भी झलक देता है, जहां नेतृत्व, साहस, दबाव में निर्णय लेने की क्षमता और प्रतिबद्धता रणनीति को सफलता में बदल देती है। रक्षा मंत्री ने इस प्रकाशन से प्रेरणा लेने और देश की सुरक्षा तथा संप्रभुता को सुनिश्चित करने और बलिदान योग्य नागरिक बनने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आंतरिक और वैश्विक शांति प्राप्त करने के लिए भक्ति और ध्यान को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इंटरनेशनल सेंटर के 45वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भक्ति स्वयं, परिवार, समाज, राष्ट्र और मानवता के प्रति समर्पण का प्रतीक है। रिजर्व बैंक ने आज अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि ऊर्जा की ऊंची कीमतों, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक बाजार में अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बाद भी मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी कारक चालू वित्त वर्ष में भारत के विकास गति को बनाए रखेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉरपोरेट और बैंकिंग क्षेत्रों की स्वस्थ बैलेंस शीट, साथ ही पूंजीगत व्यय पर सरकार का निरंतर ध्यान आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करेगा। इसमें भू राजनीतिक संकट और पश्चिम एशिया संघर्ष, वैश्विक विकास तथा मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाली प्रमुख चिंताओं के रूप में उभरे हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज संसद भवन परिसर में संसदीय कार्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मेघवाल ने कहा कि बैठक में सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रभावी, सरल और व्यापक उपयोग पर सार्थक चर्चा हुई। श्री मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिंदी भाषा को सुशासन, जनभागीदारी और लोकतांत्रिक संवाद का एक सशक्त माध्यम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुज जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। ईरान की सरकारी एजेंसी ने बताया है कि ईरान के प्रस्तावित पारगमन शुल्क को लेकर जारी तनाव के बीच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने 24 घंटों में 23 वाणिज्यिक जहाजों को जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दी। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सीईपीए पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी सीईपीए समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। सशस्त्र सीमा बल ने 2 थाई महिला नागरिकों को भारत नेपाल सीमा के खारीबाड़ी क्षेत्र से नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया। ये महिलाएं फर्जी आवेदन मोहरों का इस्तेमाल कर नेपाल में प्रवेश करने की

0: कोशिश कर रही थी। जांच जारी है। दिल्ली सरकार 21 जून को होने वाली नीट यूजी परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को दिल्ली परिवहन निगम की सभी बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उम्मीदवार वैध प्रवेश पत्र दिखाकर मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @yarnewshindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली एकीकृत अगली पीढ़ी की विमानन मौसम और कोहरे की निगरानी प्रणाली स्काईकास्ट का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन मिशन मौसम के अंतर्गत किया गया है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि इस नई प्रणाली का उद्देश्य हवाई अड्डे पर मौसम की निगरानी और कोहरे के पूर्वानुमान को मजबूत करना है।
1: आज हम विमानन क्षेत्र के जरिए देश को एक इंटीग्रेटेड मौसम निगरानी सिस्टम समर्पित कर रहे हैं। यह सिस्टम हवाई यात्रियों, एयर क्रू और पायलटों को मौसम का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम बनाएगा, खासकर उस समय जब कोहरे और धुंध वाले मौसम में प्रदूषण और हवा में मौजूद अन्य कणों के कारण दृश्यता काफी प्रभावित होती है। यह एक इंटीग्रेटेड उपकरण स्काईकास्ट के माध्यम से संभव होगा।
0: मौसम विभाग ने जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में देश भर में सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए विभाग के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि जून माह में देश की औसत वर्षा सामान्य से कम रहने की सबसे अधिक संभावना है।
2: 2026 के जून से सितंबर के दौरान पूरे देश में सामान्य से कम बारिश होने का सबसे ज्यादा संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में सामान्य वर्षा होने का संभावना है। अभी जून महीने के तापमान की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में तथा महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में सामान्य से अधिक हीट वेव कंडीशन डेवलप होने का उम्मीद किया जा रहा है। हालांकि राजस्थान और झारखंड में सामान्य से कम उष्ण लहर होने का संभावना है।
0: मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों के लिए तूफान और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आज भी लू चलने की आशंका है। रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इस स्पर्धा में पदक जीतने वाली वे पिछले 25 वर्ष में पहली भारतीय महिला बनी। वहीं महिला ट्रिपल जंप में साधना रवि ने रजत पदक जीता। नितिन गुप्ता ने पुरुष वर्ग में 5000 मीटर पैदल चाल का खिताब जीता। पुरुषों के अंडर 18 एशिया कप में भारत ने आज जापान के काका मिगाहरा में कजाकिस्तान पर 13-0 की शानदार जीत दर्ज की। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज पूर्व प्रधानमंत्री

0: पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल। इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान। कई राज्यों में लू की संभावना। और हांगकांग में आयोजित अंडर-20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 2:30 हुए हैं। पेशे खिदमत है कार्यक्रम सुनहरा दौर, जिसमें हम आज आपको सुनवा रहे हैं 90 के दशक के कुछ सदाबहार फिल्मी नगमे।

कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दिल से। उदित नारायण की आवाज में आनंद मिलिंद के संगीत से सजे इस प्यारे से गीत को।

कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवाते हैं फिल्म सौदागर से लता मंगेशकर सुरेश वाडकर की आवाज में इस गीत को।

कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवाते हैं फिल्म फूल और कांटे से अलका याग्निक कुमार सानू की आवाज़ में नदीम श्रवण के संगीत से सजे इस गीत को।

कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण साधना सरगम की आवाज में फिल्म मोहरा से ये गीत।

कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बेटा से अनुराधा पौडवाल विपिन सचदेवा की आवाज में इस गीत को।

कार्यक्रम के इसी अंतिम गीत के साथ कार्यक्रम सुनहरा दौर संपन्न करने की अपनी रेडियो साथी तरन्नुम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरा दौर, 90 के दशक के सदाबहार फिल्मी नगमे। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स एवं एफएम 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। दिन के 3 बजे हैं। मीडियम वेव और एफएम पर अभी तक आप हमारी प्रथम सभा के कार्यक्रम सुन रहे थे। अपनी दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे हम पुनः उपस्थित होंगे। अब से लेकर शाम 5 बजे तक विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम उपलब्ध रहेंगे। मीडियम वेव पर हमें ये सभा संपन्न करने की आज्ञा दीजिए।

0: आप सभी सुनने वालों को आपकी सखी चंचल वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है, जिसे हम एक बार गवा दें तो फिर वापस कभी नहीं पा सकते? सखियों, वो अनमोल पूंजी है समय। दुनिया भर की दौलत लुटाकर भी हम गुजरा वक्त नहीं खरीद सकते। बीता हुआ एक भी पल कभी वापस नहीं आता। सखियों, हम भी आपके समय की कीमत को समझते हैं। आप सब लगातार प्रयास करती हैं हमारे साथ फोन पर जुड़ने के लिए। आप अपना सारा काम छोड़कर लगातार अपना समय हमें देती हैं। और देखिए ना, स्टूडियो के फोन की घंटी लगातार बज रही है, तो देखें पहला कॉल कहाँ से आया है और किस सखी ने हमें ये कॉल किया है। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली जी, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, नाम बताइए अपना, कौन बोल रही हैं और कहाँ से बात कर रही हैं?
1: मैं संगीता फुलमाली बात कर रही हूँ, इंदौर से, न्यू चित्रा नगर वेलोसिटी के पीछे से।
0: संगीता जी, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: जी, मेरा बुटीक है, मैं ब्लाउज वगैरह बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड भी कटिंग मास्टर है, जो रेडीमेड फ्रॉक उनकी कटिंग करते हैं फैंसी।
0: तो आप दोनों का काम अलग अलग रहता है या एक साथ मिलकर काम करते हैं आप?
1: जी, वो मतलब मार्केट भी जाते हैं तो वहीं पे दुकान पे मतलब कटिंग वगैरह करते हैं, कारीगर उन बनाते हैं माल।
0: अच्छा,
1: और मैं घर पे ब्लाउज वगैरह बनाती हूँ।
0: तो आप ऑर्डर्स किस तरह लेती हैं, किस तरह से आपको ऑर्डर्स मिलते हैं, इस बारे में कुछ बताएंगी हमें?
1: जी, मेरा तो गिराकी काम है मैम, मैं मतलब ब्लाउज वगैरह लेडीज को ही आती है बनवाने के लिए। हाँ, सूट सलवार राजस्थानी पोशाक सब बना लेती हूँ मैम।
0: आपने कहीं से सीखा था या?
1: जी, सीखा था मैम, और मेरे पति भी सीखे हुए पहले से, तो उन्होंने और मुझे ज्यादा ट्रेन कर दिया।
0: और पिछले कितने सालों से आप इस काम को कर रही हैं?
1: मैं कम से कम 6-7 सालों से कर रही हूँ।
0: अच्छा, इसके अलावा हाँ, जिस तरह से आजकल बैग बनाने का काम भी बहुत चल रहा है, ऐसे काम भी करती हैं सिर्फ जो महिलाओं की पोशाकें हैं वही बनाती हैं आप?
1: सिर्फ पोशाक होने ना, वही बनाती हूँ, ब्लाउज सब।
0: अच्छा, आपके अलावा घर में और कौन कौन है आपके?
1: मेरे पति है और मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है 10 साल का पूरा कंप्लीट।
0: अच्छा, और काम करते करते आप रेडियो भी सुनती रहती हैं?
1: जी मैम, रेडियो तो मैं कई सालों से सुन रही हूँ, कम से कम 10-15 साल से ज्यादा ही हो गए, और मेरा पहली बार कॉल लगा है इसमें।
0: आपको बहुत बहुत बधाई, आपका कॉल लग गया। अब ये बताइए कि आप आज गीत कौन सा सुनना चाहती हैं?
1: जी, थानेदार फिल्म का, और भला क्या मांगू मेरा बुझे, मुझे तेरा प्यार मिला।
0: आपकी
1: मैं मेरे
0: पसंद
1: पति का
0: का
1: नाम लेना चाहूंगी मैम।
0: हाँ जी मैम, ले लीजिए।
1: उनका नाम है गुड्डू फुलमाली, और राजवाड़े पे मतलब मास्टर है, कटिंग करते हैं।
0: तो आपको सुनवाते हैं थानेदार फिल्म का, आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: आप कौन बात कर रही हैं?
1: हम प्रेरणा प्रलखन लरे नांदेड़ से बात कर रहे थे। हाँ
0: नांदेड़ से प्रेरणा बात कर रही हैं।
1: हाँ हाँ
0: प्रेरणा जी कैसी हैं आप?
1: हाँ बहुत अच्छे हैं। आप कैसे हैं?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्रेरणा जी मुझे बताइए आप क्या
1: मुझे भी
0: करती
1: बहुत।
0: हैं?
1: मैं घर पे हूँ, मेरे बीए तक पढ़ाई हुई है
0: जी
1: और मुझे अभी अंधत्व आया है। मैं 100% अब अंधी हो गई हूँ। उसके
0: जी
1: बाद मैंने एक्यूप्रेशर एंड मसाज का कोर्स किया। अभी मैं हजारों पेशेंट अच्छे करती हूँ
0: बहुत अच्छी बात
1: और
0: है।
1: घर का सारा काम भी करती हूँ।
0: देखिए, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि कई बार हमारे अंदर ऐसी कोई कमी आ जाती है, चाहे अनचाहे, लेकिन उससे उबर कर हम दूसरों के लिए प्रेरणा बन पाते हैं। तो आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, खुद को भी संभाल रही हैं, अपने परिवार को संभाल रही हैं, और कितने अन्य लोग हैं जिन्हें आप अपनी सेवाएं दे रही हैं।
1: हाँ बहुत सारे लोग गए, उनकी बहुत पीड़ा मैंने बहुत अच्छी तरह से ठीक किया उनको। कौन
0: तो किस तरह का काम होता है आपका, बताएंगी?
1: से भी पेशेंट आए, मैं लेडीज को ही देखती हूँ और
0: जी
1: स्पर्श किया तो किस नाड़ी में क्या प्रॉब्लम है ये मुझे समझ में आता स्पर्श करने के बाद ही। तो
0: सिर्फ नाड़ी देखकर
1: मैंने
0: आप सिर्फ नाड़ी
1: नाड़ी
0: देखकर आप रोग
1: नाड़ी
0: का पता
1: देखी।
0: लगा लेती हैं?
1: हाँ हाँ नाड़ी देखकर सिर्फ मैं स्पर्श कर सकती हूँ। उसके बाद का कोई मुंह टेढ़ा होना, अर्धांग वायु, पेट का दर्द, घुटनों का दर्द, पीठ का दर्द, ऐसे सब मैंने ठीक किए हैं। ज्यादा
0: और जो रोगी होते हैं इन्हें ठीक होने में कितना समय लग जाता है?
1: दिन से रोगी है तो ज्यादा दिन लगेंगे, कम है तो कम लगेंगे। एक लड़का मेरे पास आया था, 6.5 साल का बच्चा था, वो जन्म से ही कभी चलता ही नहीं था, लेकिन मैंने उसको 1.5 महीने में अपने पैरों पे खड़ा किया और 3 महीनों में वो काठी के सहारे चलना सिखाया।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। उन माता पिता को कितना अच्छा लगा होगा आपके उपचार के बाद में कि जो बच्चा चल नहीं सकता
1: हाँ
0: था उसे आपने अपने पैरों पर खड़ा कर दिया।
1: बहुत उनको अच्छा लगा, उन दोनों ने बहुत दुआई दी।
0: उपचार के लिए आप
1: अब
0: कोई दवाइयां देती हैं या?
1: नहीं दवाइयां नहीं, मैं सिर्फ अपने स्पर्श से नाड़ी देखती हूँ और उसके एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाती हूँ और मसाज करती हूँ।
0: आप रेडियो किस वक्त सुनती हैं फिर? अब क्योंकि मरीजों को देखने के बाद में आपको कब समय मिलता है रेडियो सुनने के लिए?
1: वो चालू से रहता है रेडियो, क्योंकि मैं घर पे ही मैरिज को देखती हूँ, दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं कभी नहीं जाती बाहर।
0: अच्छा,
1: घर का खाना बनाना, बच्ची को स्कूल भेजना, पेशेंट देखना, काम करते करते ये सुनती भी हूँ और काम भी करती हूँ।
0: आपकी बच्ची कितनी बड़ी है?
1: मेरी बच्ची अभी 8 साल की है।
0: तो फिर तो बड़ी मुश्किल होती होगी आपको उसे भी संभालने के लिए।
1: नहीं मुझे कुछ मुश्किल नहीं होती, अंदर से मुझे बहुत सारी निसर्ग ने शक्ति दी है। बीच में ही ऐसे अंदर तो आने के बाद कोई भी ऐसे ही हो जाता, लेकिन मैं अपने हिम्मत से खड़ी हुई और मैंने 2 साल की बच्ची अडॉप्ट की। चल गई
0: प्रेरणा जी, आपका जो नाम है आप इसे सार्थक कर रही हैं।

0: आप बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बन रही हैं और हमें भी बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर, आपकी कहानी सुनकर। अब ये बताइए कि आप कौन सा गीत आज सुनना चाहती हैं?
1: मेरे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है यादों की बारात का, चुरा लिया है मैंने ये दिल को।
0: आपको सुनवाते हैं यादों की बारात फिल्म का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और शुरू करते हैं सिलसिला सखियों के फोन कॉल्स का। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: नमस्ते सहेली जी, बताइए कौन बोल रही हैं और कहां से आप बात कर रही हैं?
1: मैं उत्तराखंड से पुष्पा डोबरियाल बोल रही। मैम
0: पुष्पा डोबरियाल
1: जी।
0: उत्तराखंड से बात कर रही हैं।
1: जी मैम।
0: उत्तराखंड के कौन से शहर से बात कर रही हैं?
1: देहरादून शहर से बोल रही मैम।
0: अरे बहुत खूबसूरत शहर है आपका।
1: जी मैम, थैंक यू। और मैम तो आपके प्रोग्राम सारे सुनते मैम।
0: मैडम हमें देहरादून के बारे में कुछ बताइए। बहुत खूबसूरत शहर है और ये ऐसा शहर है इस समय पर खास तौर पर वहाँ चहल पहल रहती होगी क्योंकि जब गर्मी से लोगों को।
1: आजकल तो बहुत ट्रैफिक इतना है मैम कि बहुत मतलब यात्री कई कई टूरिस्ट आते रहते हैं। मसूरी है यहाँ से, और ऋषिकेश, राम झूला, लक्ष्मण झूला, और हरिद्वार, यहाँ से सारे आते रहते हैं यहाँ पे।
0: आपने जितनी भी जगहों के अभी नाम लिए ना, ये सब वो जगह है मध्य भारत में और उत्तर भारत में गर्मी बहुत तेज हो जाती है ना, तो उस गर्मी से राहत के लिए ऐसी जगह पर ही जाना लोग पसंद करते हैं। और वहाँ का जो वातावरण है ना,
1: मसूरी मसूरी हो गया, केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, हेमकुंड साहिब हो गया, और हरिद्वार, ऋषिकेश, यहाँ पे तो टूरिस्ट बहुत ज्यादा आ रखे मैम आजकल।
0: अच्छा आप बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं तो घर पे ही रहती मैम।
0: पुष्पा जी, घर पर समय काटने के लिए आपका सबसे पसंदीदा काम कौन सा होता है?
1: मेरे को तो साफ सफाई अच्छी लगती है मैम, और रेडियो सुनना।
0: अच्छा, रेडियो के कौन से प्रोग्राम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
1: सखी सहेली, हेलो फरमाइश।
0: आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: पतंग फिल्म का गाना सुना दीजिए।
0: तो आपको सुनाते हैं पतंग फिल्म का गाना जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेनी मैडम।
0: हाँ बताइए, आप कौन बोल रही हैं?
1: हम आरती वर्मा बोल रहे हैं कानपुर से। हाँ
0: कानपुर से आरती जी बात कर रही हैं। आरती जी, कानपुर में तो बहुत गर्मी होगी ना इस समय,
1: हाँ मैं तो गर्मी तो पड़ रही बहुत।
0: और अभी गर्मियों की छुट्टी भी चल रही होंगी बच्चों की,
1: हाँ छुट्टी चल रही है।
0: तो बच्चों को बाहर जाने से रोकना पड़ता होगा ताकि वो धूप में जाकर परेशान ना हो जाएं।
1: हाँ मैडम जी, घर ही में रखते हैं, निकलने नहीं देते, बाहर बहुत धूप रहती है, इसी वजह से अंदर रखते हैं बच्चों को।
0: आरती आप क्या करती हैं बताइए?
1: हम घर ही में रहते हैं मैडम, घर ही के काम काज करते हैं।
0: अच्छा, आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आज?
1: हम नगीना का सुनेंगे, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा।
0: नगीना फिल्म का ये गीत आपको सुनवा
1: हाँ
0: रहे हैं।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन सी सखी बात कर रही हैं हमसे?
1: मैं त्रिपुरा से, मैं बुल्टी दास बोल रही हूँ।
0: बुल्टी दास त्रिपुरा से बात कर रही हैं।
1: जी
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं हाउस वाइफ।

0: जी मुझे बताइए कि आप विविध भारती सुनती हैं?
1: जी, मैम सुनती है। हेलो सहेली, हेलो फरमाइश।
0: इसके अलावा आपके परिवार में और कौन-कौन हैं?
1: एक बेटा, दुई बेटी,
0: एक बेटा और दो बेटियां हैं आपकी?
1: हो हस्बैंड।

0: सहेली, हेलो फरमाइश।
1: इसके अलावा आपके परिवार में और कौन कौन है?
0: एक बेटा, दुई बेटी।
1: एक बेटा और दो बेटियां हैं आपकी?
0: हो हस्बैंड, बेटा दुई बेटी।
1: एक बेटा और दो बेटियां हैं आपकी?
0: हो हस्बैंड,

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और शुरू करते हैं सिलसिला सखियों के फोन कॉल्स का। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: सहेली अपना नाम बताइए, आप कौन बोल रही हैं और किस शहर से आपने कॉल किया है हमें?
1: मेरा नाम मोनिका साहू है, मैं बोरिया खुर्द रायपुर छत्तीसगढ़ से बात कर रही हूँ।
0: मोनिका साहू जी, अपने बारे में कुछ बताइए हमें कि आप क्या करती हैं?
1: मैं BSc फोर्थ सेम में हूँ अभी और मेरे अभी फोर्थ सेम के फाइनल एग्जाम चल रहे हैं।
0: अच्छा, आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही हैं और आपको रेडियो सुनने के लिए समय मिल जाता है अपनी पढ़ाई, स्कूल कॉलेज वगैरह सबसे?
1: हाँ, कभी कभी नहीं मिल पाता तो फिर मैं मोबाइल में सुन लेती हूँ, और जब मिलता है फोन तो मतलब या फिर नहीं मिलता घर में सुनती हूँ। हमारे घर में हम लोग सभी रेडियो में सुनते हैं विविध भारती।
0: और मोबाइल पर जब आप सुनती हैं तो न्यूज ऑन एयर ऐप पर सुनती हैं?
1: नहीं, मैं ज्यादातर तो यूट्यूब पे ही सुनती हूँ क्योंकि उसमें लाइव और सारे वीडियोस मिल जाते हैं मुझे मेरे सुनने वाले पे, जैसे सखी सहेली, हेलो फरमाइश, ये सब मैं सुनती हूँ।
0: तो जो पुराने प्रोग्राम है उन्हें सुनती हैं या लाइव सुनती हैं यूट्यूब पर आप?
1: लाइव भी सुनती हूँ और पुराने प्रोग्राम भी सुनती हूँ मैं।
0: आप लाइव सुनना चाहती हैं तो न्यूज ऑन एयर ऐप के जरिए आप सभी प्रोग्राम सुन सकती हैं, विविध भारती के भी और प्रसार भारती के सभी कार्यक्रम आप सुन सकती हैं।
1: हाँ,
0: और आप बताइए कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है अभी?
1: अभी मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, अभी तो मेरे एग्जाम चल रहे हैं, अभी सिर्फ दो ही एग्जाम हुए हैं और बाकी के अभी बचे हैं।
0: अच्छा, और इसके बाद में आपके जो भविष्य की योजनाएं हैं वो क्या हैं? इसके बाद आप और आगे पढ़ना चाहती हैं या कोई नौकरी वगैरह करना चाहती हैं?
1: मैं वैसे तो टीचर बनना चाहती हूँ और मैं बच्चों को

0: पढ़ाना चाहती हूँ। मैं अभी भी मेरे भाई को और मेरे आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं उनको पढ़ाती हूँ, समझाती हूँ।
1: तो ये आप ट्यूशंस लेती हैं या इसी तरह बस यूं ही मदद करने के लिए आप पढ़ाती हैं?
0: नहीं, मैं ट्यूशंस नहीं लेती हूँ, बस ऐसे ही कभी किसी को डाउट हो जाता है तो उन्हें
1: अच्छा,
0: क्लियर करती हूँ, और अपने लिए भी करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है किसी को किसी चीज के बारे में अच्छे से बताना और समझाना।
1: बहुत अच्छा काम होता है एक शिक्षक का, और आप इस काम को चुनना चाहती हैं। बहुत सारे लोगों को राह दिखाएंगी, और शिक्षक वो काम है जो बहुत सारे लोगों के लिए एक खुद जलकर रोशनी फैलाता है। और आप बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: मुझे मासूम पिक्चर का लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा सॉन्ग सुनना है।
1: क्या बात है, आपकी उम्र के हिसाब से जो छोटे बच्चों वाली सोच है और जैसी पसंद है आपकी, ये हमें बड़ा अच्छा लगा। सुनवाते हैं आपको अपनी पसंद का ये गीत, जिसे हमने लिया है मासूम फिल्म से।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो, नमस्ते मैम
0: नमस्ते। मुझे बताइए आप कौन सखी बात कर रही
1: जी।
0: हैं?
1: मैं इंदौर से बोल रही हूँ, जीनत परवीन
0: इंदौर से जीनत परवीन बात कर रही हैं।
1: जी। हाउस
0: जीनत जी, अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
1: वाइफ हूँ
0: तो घर पे करने के लिए काम बहुत सारे होते हैं, जो शायद बाहर महिलाएं जाती हैं ना, उससे कहीं ज्यादा काम एक घर में काम करने वाली महिला को होते हैं। और आपके घर में कौन कौन है जीनत जी?
1: जी। हस्बैंड है, मैं हूँ और बच्चे हैं, तीन लड़के। सबसे छोटे वाला 13 साल का है बस, और एक 15 साल के और एक 21 साल का
0: तो अभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तीनों?
1: जी। दो पढ़ाई कर रहे हैं और बड़े वाले उनके पापा के साथ जाते हैं ड्यूटी
0: तो अपने पिताजी के काम है उसमें वो हाथ बटाते हैं।
1: जी। वो
0: आपके पति क्या काम करते हैं?
1: आरओ का प्लांट ये बनाते हैं, जो उस पर फैक्ट्रियों में लगते हैं ना बड़े बड़े,
0: जी।
1: तो बाहर का काम है सब, अमेरिका और यहाँ जाते हैं तो बड़े प्लांट बनते हैं।
0: और आप बताइए, आप घर में समय काटने के लिए क्या-क्या करती हैं?
1: अपना काम

0: लेती हूँ 1 बजे तक,
1: हाँ
0: और रेडियो सुनती रहती हूँ। सुबह से चालू जाता है रेडियो 7 बजे से, तो रात के 11 बजे तक चलता है। और फिर अपने काम निपटा के 3 में रेस्ट करती हूँ, तो अपने लिए समय निकालती हूँ थोड़ा। जी
1: जब आप अपने लिए समय निकालती हैं तब आपका
0: नहीं,
1: पसंदीदा काम क्या होता है?
0: बस यही रेडियो सुनती रहती हूँ, और उसमें कभी नींद आ जाती है थोड़ी, इधर लेट जाती हूँ बस।
1: आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: शान पिक्चर का सुनूंगी, यम्मा यम्मा यम्मा यम्मा ये खूबसूरत समा।
1: सुनवाते हैं आपको शान फिल्म का ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली।
0: अपना नाम बताइए, आप कौन बात कर रही हैं और कहाँ से आपने हमें कॉल किया है?
1: हाँ, मैं सोनू बोल रही हूँ, भोपाल से। जी
0: भोपाल मध्य प्रदेश से सोनू बात कर रही हैं। सोनू जी, अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
1: घर में ही रहती हूँ मैं, शाम के प्रोग्राम सुनती हूँ और एक ब्यूटिशियन भी हूँ।
0: अच्छा, ब्यूटिशन का काम भी करती हैं और आपको खाली समय में रेडियो सुनना पसंद है?
1: हाँ, रेडियो तो पूरा ही टाइम सुनती हूँ, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक।
0: आप ये बताइए, आपका जो ब्यूटी पार्लर है वो आपने घर में ही किसी हिस्से में बनाया है या कहीं अलग से आपका ब्यूटी पार्लर है?
1: घर में ही है, साइड
0: अच्छा
1: में बनाया है शॉप जैसा।
0: अच्छा और कितने समय से आप अपना ब्यूटी पार्लर चला रही हैं? तो
1: हाँ, पार्लर चलाते हुए तो 22 साल हो गए मेरे को। जी,
0: फिर तो आपका बहुत अच्छा हाथ बैठा हुआ होगा।
1: सारे काम कर लेती हूँ, इस टाइम के भी, पुराने टाइम के भी, सभी आता है मुझे।
0: अपने काम में अपनी एक पहचान बनाना ये बहुत जरूरी होता है और आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लोगों को सजा संवार रही हैं, खूबसूरत बनाती हैं। और गीत किस तरह के सुनती हैं, संगीत किस तरह का पसंद है आपको? जैसे विविध भारती के सारे ही प्रोग्राम आप सुनती हैं, तो कौन से
1: गीत भारती के तो सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन पुराने गाने ज्यादा पसंद है मुझे।
0: आपका पसंदीदा कार्यक्रम
1: हेलो
0: कौन सा है?
1: सहेली फेवरेट।

0: मेरा हेलो फरमाइश फेवरेट है
1: ये बताइए कि
0: जी।
1: गीत कौन सा सुनना चाहती हैं?
0: 20 साल बाद पिक्चर का गाना है, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे।
1: ये
0: अनुराधा जी और मोहम्मद अजीज की आवाज में है ये, और मिथुन वाली 20 साल बाद पिक्चर है ये।
1: ठीक है, आपको सुनवाते हैं ये गीत, हम तुम्हें कितना प्यार करेंगे।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, मैं खुशी कौशल बात कर रही हूँ इंदौर से। जी
0: इंदौर से खुशी कौशल बात कर रही हैं।
1: हाँ,
0: आपका शहर तो बहुत खूबसूरत है और खास तौर पर इंदौर जाना जाता है अपनी साफ सफाई के लिए।
1: जी मुझे बहुत गर्व है कि मैं इंदौर शहर में रहती हूँ। मतलब प्राउड होता है इंदौर का नाम लेके। हाँ
0: इंदौर का जब हम नाम सुनते हैं तो एक बहुत साफ सुथरी जगह की छवि हमारे जहन में आती है, और आप जैसे जो इस शहर में रहने वाले लोग हैं, इसका बहुत बड़ा सहयोग है कि ये शहर इतना सुंदर है और साफ भी है।
1: जी
0: खुशी, आप क्या करती हैं?
1: मैम, मैं स्टूडेंट हूँ अभी 10th क्लास में। हाँ
0: 10वीं में जाएंगी, मतलब 9वीं की आपने परीक्षा दी है अभी, तो अब 10वीं के लिए तो बहुत अच्छी तैयारी आपको करनी पड़ेगी, बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी,
1: जी मैम,
0: क्योंकि 10वीं वो पहला पड़ाव होता है जहां से आपकी पढ़ाई की नींव डलती है,
1: जी
0: और फिर इसके बाद में ही आपको अपना करियर चुनने के लिए आगे और क्या पढ़ना है इसमें बहुत मदद मिलती है।
1: जी मैम,
0: खुशी, आप क्या करना चाहती हैं आगे चलकर, क्या बनना चाहती हैं?
1: मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरी मम्मी का सपना था कि मैं मेरी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगी।
0: बहुत अच्छा सपना आपकी मम्मी ने देखा है, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप जरूर एक दिन बहुत बड़ी कामयाब डॉक्टर बने। और मुझे बताइए कि पढ़ाई आप करती हैं, फिर आप रेडियो सुनती हैं, तो ये आपकी पढ़ाई में बाधा तो नहीं बनता, या आपको?
1: नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है रेडियो सुनना। मैं जब बचपन से छोटी थी, मेरे पापा मम्मी दोनों रेडियो सुनते थे, तो मुझे इतना अच्छा लगता है रेडियो सुनना। मतलब ऐसा लगता है कि तो मेरी फैमिली है रेडियो। मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ। मैंने पापा मम्मी को आज तक मैंने वैसे सामने से नहीं बोला, पर मैं रेडियो के माध्यम से बोलना चाहूंगी। पापा मम्मी, आप वर्ल्ड के बेस्ट पेरेंट्स हो। मुझे आप दोनों पे गर्व है कि आप मुझे इतना प्यार करते हो।
0: बहुत अच्छी बात है खुशी की, आप जैसी प्यारी बिटिया उनकी है, और खुशी को बहुत खुशी हो रही है कि आज उसका कॉल लग गया, और खुशी से बात करके हमें भी खुशी हो रही है। तो अब बताइए खुशी की, कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मेरे मम्मी पापा के लिए अलग गीत सुनना चाहूंगी, मुझे माफ करना, ओम साईं राम।
0: सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली
0: कौन सी सहेली हमसे बात कर रही है इस समय?
1: जी, मैं हर्षिता गुजराती बात कर रही हूँ।
0: हर्षिता जी, कहाँ से कॉल लगाया है आपने?
1: मैं हरपन मौला कलाकार किशोर कुमार की नगरी खंडवा मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ।
0: क्या बात है, आपने जो अपने शहर का परिचय दिया है ये बड़ा अच्छा था।
1: जी, मैं बहुत दिनों से हेलो सहेली में फोन ट्राई कर रही थी, आज सफलता मिल ही गई।
0: अच्छा, आप किशोर कुमार
1: जी
0: की नगरी में रहती हैं, तो क्या आपने
1: जी
0: कभी किशोर कुमार का जो वहां पर निवास स्थान है वो देखा है जाकर?
1: जी मैं स्थान पर गई हूँ,
0: जी
1: और जो किशोर कुमार की नगरी है वहाँ पे समाधि है, मैं वहाँ भी गई हूँ। वहाँ पे कार्यक्रम होते रहते हैं, मेरे पापा के साथ मैं जाती हूँ, मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट है।
0: और आपको भी किशोर कुमार के गाने पसंद हैं,
1: जी,
0: और आपके पिताजी को भी किशोर कुमार के ही गाने पसंद होंगे ज्यादा?
1: पापा तो पहले से ही किशोर कुमार, रफी साहब, इन सभी के गीत सुनते थे, और धीरे धीरे फिर मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ा, तो उसके बाद फिर मैं पापा से जुड़ गई इस चीज के लिए।
0: हर्षिता, आप क्या करती हैं?
1: मैंने एमकॉम की डिग्री प्राप्त की करी है देवी
0: जी
1: अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से,
0: जी
1: और अभी मैं संस्कार भारती की स्कूल सरस्वती विद्या मंदिर में इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ।
0: अच्छा, अपनी

0: डिग्री लेने के बाद में अभी आपने पढ़ाने का काम भी शुरू कर दिया है,
1: जी
0: बहुत अच्छी बात है। एक शिक्षक के कांधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और इसे आप निभा रही हैं।
1: बिल्कुल जी।
0: और आपके फ्यूचर के क्या, भविष्य के क्या योजनाएं हैं?
1: मेरी भविष्य की यही योजना है कि मैं संस्कार भारती से जो जुड़ी हुई हूँ, विद्या भारती से,
0: जी
1: वहाँ जितना मुझसे हो सके मैं अपना 100% देने की कोशिश करूंगी। वहां से मैं सीख भी रही हूँ और सिखा भी रही हूँ।
0: और आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं हर्षिता?
1: मैं आज नाइट इन लंदन फिल्म से बाहुशो हवास दीवाना,
0: रफी
1: रफी
0: साहब का
1: साहब।
0: गाया हुआ।
1: जी।
0: हर्षिता, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का नाइट इन लंदन फिल्म का ये गाना।

आज के हेलो सहेली कार्यक्रम में कॉल करने वाली सभी सखियों का धन्यवाद। आप सभी सखियों से अनुरोध है कि जिनके कॉल आज के कार्यक्रम में शामिल हो गए, अगले 2 महीने तक वो कॉल ना करें, ताकि हमारी अन्य सखियों को भी इस कार्यक्रम से जुड़ने का मौका मिल सके। हेलो सहेली कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपको करना होगा अगले मंगलवार तक का इंतजार। आप हमें कॉल कर सकते हैं इन नंबर पर 022-400-2462, 022-28-670-288। नंबर आपको फिर से बता देते हैं 022-400-2462। एक अन्य नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 022-28-670-288। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं मंगेश सांगले, संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोले से, विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज के हेलो सहेली कार्यक्रम से दीजिए चंचल वर्मा को इजाजत। नमस्कार सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी, आइए आज सुनते हैं विधि जैन की लिखी गीतों भरी कहानी रिश्ते। वाचन स्वर विधि जैन का।
2: वक्त की मार, रिश्तों का सार। रिश्ते जीवन का आधार होते हैं। जीवन में अगर देखा जाए तो मनुष्यता की पहचान रिश्ते ही तो है। ये रिश्ते कभी रक्त के बंधन होते हैं तो कभी प्रेम के। ऐसे ही रिश्तों को सहेजना अति आवश्यक कार्य है, क्योंकि मन का सुकून और शांति इससे ही है। आज की कहानी इन्हीं रिश्तों के सम्मान और आवश्यकता की है। चलते हैं गांव की ओर, जिस गांव का नाम है शिवपुर।

शिवपुर गांव की सुबह हमेशा शांत और सौम्य होती थी। तलैया के पास खड़े बरगद के पेड़ के नीचे बुजुर्गों की बातें और सूरज की पहली किरण फसल पर पड़ते ही पूरा गांव मानो जाग उठता। प्रेम है एक दूसरे का, सत्कार है और साथ ही है अपनापन। मंदिर की घंटियां की आवाजें, गाय का रंभाना, बच्चों की खिलखिलाहट, पनघट पर पनिहारियों की हंसी ठिठोली और संतोष के साथ गुजर बसर करते लोग। इसी गांव के एक कोने में पुराना लेकिन बेहद स्नेह से भरा घर, राम नारायण का घर। राम नारायण और उनकी पत्नी कमला गांव में सबके आदर का पात्र हैं। मेहनती, ईमानदार और रिश्तों को सबसे ऊपर रखने वाले। इनके दो बेटे विक्रम और अमित बचपन से ही एक दूसरे की छाया की तरह एक दूसरे के साथ रहते हैं। दोनों में इतना गहरा प्रेम है कि लोग उदाहरण देते हैं कि राम नारायण के दोनों बेटे सच में राम लक्ष्मण जैसे हैं। एक दूसरे के लिए तो सदा खड़े रहते हैं और दूसरों के लिए भी साथ में खड़े हो जाते हैं। राम नारायण जी ने उन्हें व्यवहारिक शिक्षा दी है तो माँ यानी कमला जी ने उन्हें सांसारिक और आध्यात्मिक। कुल मिलाकर दोनों बालक ऐसे हैं जैसी चाह सभी को होती है और सभी चाहते हैं उनके बच्चे भी ऐसे ही हो जाएं।

0: लारा।
1: विक्रम बड़ा भाई है तो स्वाभाविक तौर पर जिम्मेदार और शांत भाव का है, और अमित छोटा है तो यह तो तय है कि वह चंचल होगा, पर दिल का साफ है। बच्चे विद्यालय जाते, थोड़ा खेलते, पढ़ते और खेतों में पिता के साथ काम करते। माँ के हाथ का बना भोजन बिना नानुकुर के बड़े प्रेम से करते, और शाम को मित्रों के साथ कभी कभी गांव के मेले में भी घूम आते। दोनों की हंसी सुनकर लगता जैसे घर में कभी कोई तूफान आ ही नहीं सकता। प्रेम देखकर लगता कि कोई शक्ति इन्हें अलग कर ही नहीं सकती। जीवन का सारा पाठ बचपन में ही सीख लिया है इन्होंने। और यह सब देखकर रामनारायण जी और कमला जी ईश्वर को धन्यवाद देते, और रामनारायण जी अक्सर कहा करते, मेरी असली कमाई, असली धन ये दोनों हैं।

समय बीतता गया। पढ़ाई में होशियार तो थे ही, सो बड़े होते होते दोनों शहर में जाकर पढ़ने लगे और यहीं से आवो हवा बदलने लगी। शहर की चकाचौंध रास आने लगी और मासूमियत कहीं खोने सी लगी। फिर दोनों के जीवन में नए सपने, नए विचार, आगे बढ़ने की आकांक्षा, अनंत तक चलने की दौड़ का हिस्सा बनने की चाह, और जो कि बिल्कुल गलत नहीं था, हर किसी को आगे बढ़ना और नई संभावनाएं खोजना भी चाहिए। परंतु दुर्भाग्य यह था, इन्होंने कई बातें मासूमियत के कारण सीखी ही नहीं, तो बड़ा बनने की लालसा ने इनके अंदर थोड़ा थोड़ा लालच भी भर दिया। अब विक्रम का विवाह सीमा से हुआ, जो महत्वाकांक्षी थी, परंतु महत्वाकांक्षा के गुण के साथ एक अवगुण भी था, स्वार्थ परता का। उसे सब कुछ अपने हिसाब से और स्वयं के लिए चाहिए था। उसके हिसाब से तो दुनिया भी उसके लिए ही घूम रही थी, परंतु प्रेम के वशीभूत विक्रम ने उसे पसंद कर लिया और इन अवगुणों पर ध्यान तक ना दिया। वहीं अमित की शादी गांव की सादगी भरी राधा से हुई, जो परिवार को जोड़कर रखने में विश्वास करती थी। उसके भी सपने थे जीवन के, पर चाहत सभी के साथ उनको पूरा करने की। दोनों के मन में लालच तो पहले से आ ही चुका था, और विवाह के बाद घर की हवा बदलने लगी। धीरे धीरे ख्वाहिशें विष का काम करने लगी, और जहां कल तक दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित थे, आज विषवेल फैलने लगी थी। लालच, अहंकार, स्वार्थ अपनी जड़ें जमाने लगे थे, और इसका प्रभाव पूरे परिवार पर दिख रहा था।

घर की बड़ी बहू विक्रम की पत्नी सीमा अक्सर कहती, इतनी बड़ी जमीन है लेकिन फायदा कुछ नहीं, बांट लेना चाहिए। हमारा अपना भी तो परिवार है, उसको देखना है कब तक सबको ढोकर चलेंगे। और वहीं छोटी बहू अमित की पत्नी यानी राधा यह सोचकर दुखी होती, जमीन तो रहती ही है पर रिश्ते टूट गए तो घर कैसे रहेगा। हमारा भविष्य अपनों के साथ है, संस्कार है, अपनापन है और यही तो जीवन की पूंजी है। और विक्रम अमित दोनों अपने अपने जीवन में इतने व्यस्त थे कि उन्हें इस कड़वाहट का पता ही नहीं चला। कहां क्या अंधकार पनप रहा है जीवन की चकाचौंध में वह देख ही नहीं पाए। धीरे धीरे उनके दिलों में दूरियां और बढ़ने लगी। रामनारायण कमला जी प्रयास कर रहे थे, देख रहे थे कि किसी तरह से इसे संभाल लिया जाए, दोनों बेटों को समझा रहे थे, परंतु उनकी सुनता कौन था। शायद उनके पास सब कुछ संभालने के लिए समय भी बहुत कम बचा था।

नारायण जी, हमसे कहाँ गलती हो गई? जो लड़के एक रोटी में साथ खा लेते थे, आज एक घर में रहने से डरते हैं। कल तक जिन पर पूरा गांव गर्व करता था, वैसे ही बालक बनाने की प्रार्थना करता था, आज हम भी लोगों के किस्सों में शामिल हो गए। और वह रोने लग जाती। वहीं रामनारायण जी के पास कोई उत्तर नहीं था, चुपचाप सुनते और दोनों माता पिता जागती आंखों में ही रातें बिता दिया करते।

अब लालच का पेड़ बहुत बड़ा वट वृक्ष बन चुका था और इसी लालच ने रूप ले लिया था बहस का, विवाद का। और एक सुबह जमीन बांटने की बात पर दोनों भाइयों में बहुत भयंकर झगड़ा हो गया। परिवार का छोटा बेटा अमित चिल्लाया, मैया माँ बाप की सेवा की बात करो, तुम बस जमीन के हिस्से गिनते हो, माता पिता की आवश्यकताओं को तो देखना भी आवश्यक लगता नहीं तुम्हें, सब सब मैं अकेले कर रहा हूँ। बड़े बेटे विक्रम ने गुस्से में जवाब दिया, और तुम तो बस यही चाहते हो कि मैं कुछ भी ना बोलूं, सब तुम्हें मिल जाए, सेवा का दिखावा करके पूरा मेवा अकेले खाना चाहते हो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और यही विवाद बैठक से गुजरता हुआ रसोई तक पहुंच गया। साथ ही सीमा और

ज्यादा दोनों के बीच तनाव बढ़ता गया और यह तनाव इतना बड़ा कि रसोई में बना भोजन अमृत नहीं विष का काम करने लगा और दूरियां बढ़ जा रही थी। और बूढ़े हो चुके माता पिता ने जब रोकने की कोशिश की, अपनी असहायता भी दिखाई, संस्कारों की दुहाई भी दी, उनके बचपन का प्रेम भी याद दिलाया, यूं कहें कि सारे हथकंडे अपना लिए, पर दोनों भाइयों की आवाजें इतनी ऊंची हो चुकी थी कि प्यार की सारी बातें उसमें ही दब गईं और ऐसा लगने लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और आगे कोई रास्ता नहीं। क्रोध में आकर एक दिन अमित घर छोड़कर गांव के दूसरे सिरे पर रहने चला गया ताकि वह विक्रम की पूरी संपत्ति को हत्या लेने वाली बात को गलत साबित कर सके। और विक्रम अपने माता पिता से अलग हो गया क्योंकि पहले भी सेवा तो अमित ही कर रहा था और वह सेवा अब समाप्त हो गई थी। उसी रात कमला ने रोते रोते कहा, नारायण जी अब इस घर की दीवारों में भी हमें अपनापन नहीं लगता, प्रभु ही कोई राह दिखाए।

कुछ ही महीनों में लगातार तनाव से पहले रामनारायण बीमार पड़े। डॉक्टर ने कहा उन्हें शांति चाहिए, लेकिन घर में शांति कहाँ थी, तनाव बढ़ता ही जा रहा था। वैसे सच है, कभी कभी हम बच्चे अपने स्वार्थ में अपने माता पिता की उम्र का भी नहीं सोचते, उनके जीवन के अंत का कारण तक बन जाते हैं। और यहाँ यही हो रहा था। पिता के बीमार होने पर भी दोनों बेटों में बहस जारी रही, पैसों की, जमीन की, जिम्मेदारी की। और एक दिन सुबह राम नारायण ने अंतिम सांस ले ली, और जिसका सब कुछ टूटा था वो थी केवल कमला जी। कल तक जिससे सारे दर्द कह लेती थी, आज वो भी चला गया, सब खत्म कर गया। और 2 महीने बाद लगातार यही दुख झेलते झेलते वे भी संसार से चली गई। मृत्यु के पहले उन्होंने बस इतना ही कहा, काश तुम दोनों फिर से एक हो जाओ। ये बात सुनकर भी दोनों भाइयों का अहंकार कम नहीं हुआ। उनके अंतिम संस्कार तक में वो दूर दूर बैठे थे। काश मां की अंतिम इच्छा सोचकर ही एक हो जाते।

अंतिम संस्कार के बाद पंडित हरिदास, जो कि राम नारायण जी के अभिन्न मित्र थे, दोनों को किनारे पर ले गए और थोड़ी कठोर और सच्ची आवाज में कहा, पिता की चिता ने तुम दोनों को जुदा नहीं किया, तुम्हारे लालच ने उन्हें मिट्टी में मिला दिया। तुम लोग जमीन बांटने में लगे रह गए, तुम्हारे हाथों के रिश्ते जलकर खाक हो गए। विक्रम, अमित, क्या किया तुमने? अपने माता पिता को ही खो दिया अपने लालच में। विक्रम और अमित का सीना भारी उठा। पहली बार दोनों ने महसूस किया कि वे वास्तव में अकेले पड़ चुके हैं, आगे सब अंधकार है। उन्हें पछतावा लग रहा था, कल तक जो एक दूसरे की गलतियां खोज रहे थे, आज कहीं ना कहीं अपनी गलतियां देखने लगे थे। कहा भी है ना, किसी को एक अंगुली दिखाने पर तीन अंगुलियां अपनी ओर रहती हैं, और यहां भी यही हो रहा था। कल तक जो एक उंगली उठी थी, आज उन तीन उंगलियों को भी देख पा रहे थे जो उनकी ओर

अगले कुछ दिन तक घर एकदम खाली सा पड़ा था। दीवारें भी रो रही थी, सन्नाटा था, जीवन में पछतावा था, और पछतावा उम्र भर का कि काश हमने समझा होता तो शायद हमारे माता पिता हमारे साथ होते। एक दिन अमित चुपचाप घर आया। उसने देखा कि विक्रम अकेला बैठा है, माता पिता की तस्वीर साफ कर रहा है। दोनों की आंखें मिली और बिना बोले आंसू बह पड़े। विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, अमित माता पिता को तो खो दिया, अब नहीं चाहता कि तुझे भी खो दूं। अमित ने हाथ पकड़ते हुए कहा, भैया दिल में प्यार हमेशा था, बस लालच और गुस्से ने आंखों पर पर्दा डाल दिया था। दोनों पहली बार लंबे समय के बाद गले मिले। दोनों ने एक दूसरे से क्षमा मांगी। इधर राधा और सीमा भी रो पड़ी, उन्हें भी अपनी भूलों का एहसास हुआ।

पंडित हरिदास और गांव के बुजुर्गों ने उन्हें सलाह दी कि तोड़ने वाली ताकतें बहुत होती हैं, पर जोड़ने के लिए संगठन चाहिए। दोनों भाई उसी शाम गांव के किसानों की बैठक में शामिल हुए। वहां जमीन को जोड़कर खेती करने, आधुनिक तरीकों को अपनाने और एक साझा संगठन बनाने पर चर्चा की। विक्रम बोला, हम दोनों ने जमीन बांटने की गलती की, अब हम इसे जोड़कर एक साथ खेती करेंगे। अमित ने समर्थन किया और गांव वालों के लिए भी एक किसान संगठन बनाएंगे ताकि कोई परिवार हमारी तरह ना टूटे, गांव तरक्की करे। हम सभी मिलकर ऐसी खेती करेंगे जिसमें कोई रसायन का प्रयोग ना हो। सोलर सिस्टम से हम पूरे गांव की बिजली की समस्या का निदान करेंगे। हम मिलकर करेंगे तो गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा। साफ सफाई, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य, सबका प्रयास अपने परिवार के लिए नहीं, अपने गांव के लिए करेंगे और गांव को आदर्श गांव बनाएंगे। यही हमारे माता पिता के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी और हमारी ओर से क्षमा याचना भी। गांव वालों ने तालियां बजाकर स्वागत किया।

संगठन बनने के बाद गांव की उपज दुगनी होने लगी, किसानों को बाजार में उचित दाम मिलने लगा, युवक युवतियां गांव छोड़कर शहर जाने के बजाय यहीं रोजगार पाने लगे, रिश्तों में खटास कम होने लगी। विक्रम और अमित ने मिलकर राम नारायण कमला कृषि सहयोग समिति इस नाम से अपने माता पिता की याद में एक केंद्र बनाया। गांव में जब कोई लड़ाई या मनमुटाव होता तो लोग कहते, जाकर विक्रम अमित से बात करो, उनका घर टूटकर जुड़ा है, वे समझाएंगे। और इस सब के साथ गांव को देश के माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा सम्मान भी मिला।

कई सालों बाद विक्रम ने संगठन की सभा में कहा, माता पिता को खोना हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन उनकी यादों ने हमें एक कर दिया। हम समझ गए जमीन, पैसे, चीजें सब दोबारा मिल सकती हैं, पर रिश्ते टूट जाएं तो दोबारा नहीं बनते, और यदि बनते हैं तो संगठन एकता और प्रेम से ही बनते हैं। सभा में बैठे प्रत्येक व्यक्ति की आंखें भर आईं। गांव के बच्चे आज भी कहानी सुनते हैं कि कैसे विक्रम और अमित ने लालच से घर को तोड़ा और प्यार और संगठन से फिर से बना लिया।

रिश्ते। अभी आप सुन रहे थे विधि जैन की लिखी ये गीतों भरी कहानी उन्हीं के स्वर में। संपादन सहयोग काजल भदरगे का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।

0: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। अभी तक आप एफएम 102.9 मेगाहर्ट्स पर सुन रहे थे विविध भारती के प्रसारण। संध्या के 5 बजे हैं। मीडियम वेव और एफएम पर हमारी दूसरी सभा अब एक साथ आरंभ हो रही है। इस सभा का आरंभ आज शाम के साथ।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: आज शाम के सभी श्रोताओं को रेणु तिवारी का नमस्कार।

जब ज़माना हमें अनदेखा कर देता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम इस दुनिया से अलग हैं या फिर किसी काम के नहीं। ज़माना तो केवल उगते सूरज को सलाम करता है, पर सच तो ये है कि डूबता सूरज भी एक नए दिन के लिए रास्ता बनाता है। ढलती शाम परिंदों को वापस अपने घरौंदों में लेकर आती है, अपनों से मिलाती है। बस नज़रिए का फ़र्क है, किसी को शाम उदास कर जाती है तो किसी के इंतज़ार को पूरा कर उसे खुशी का एहसास कराती है। गली गली है अंधेरा तो मेरे साथ चलो, गली गली है अंधेरा तो मेरे साथ चलो, तुम्हें ख्याल है मेरा तो मेरे साथ चलो। मैं जा रही हूँ उजालों की जुस्तजू के लिए, सता रहा हो अंधेरा तो मेरे साथ चलो। जुनू के दश्त में एक छावनी बसा लेंगे, जुनू के दश्त में एक छावनी बसा लेंगे, नहीं है कोई बसेरा तो मेरे साथ चलो।

श्रोताओं, ये जिंदगी का सफ़र है। हर कोई अपने सफ़र में चलता है, लेकिन अगर साथ निभाने वाला कोई हम सफ़र मिल जाए तो यकीनन सफ़र बहुत सुहाना हो जाता है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज शाम, आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर 5:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है युवा साथियों के लिए उनका दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: आपके साथ आपकी रेडियो साथी तरुणा जोगेश
1: और साथ हूँ मैं आपकी रेडियो मेजबान कशिका अग्रवाल।
0: तो साथियों, हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और एक प्यारी सी मुस्कान लिए सुन रहे होंगे आपका फेवरेट प्रोग्राम युववाणी। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम को आज के सवाल के साथ। और हमारा आज का सवाल है, आधुनिक भौतिकी का जनक किसे माना जाता है?
1: साथियों, सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए। हमारा सवाल है, आधुनिक भौतिकी का जनक किसे माना जाता है? और इस सवाल का सही जवाब देने के लिए आपको जाना होगा आकाशवाणी रामपुर के फेसबुक पेज पर और आज अपलोड किए गए सवाल के कमेंट सेक्शन में लिख भेजने हैं अपने अपने जवाब। सवाल का सही जवाब और सही जवाब देने वाले सभी श्रोता साथियों के नाम हम बताएंगे कार्यक्रम के अंत में।
0: और साथियों, आपको बताते चलें कि आज दिन है शुक्रवार, यानी आज के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम चिट्ठी आई है। तो आज के दिन आप हमें अपने प्यारे प्यारे संदेश भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9410087876 पर। हमें रहेगा आपकी प्यारी प्यारी चिट्ठियों का इंतज़ार।
1: तरुणा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यादें हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा होती हैं? हम अपने साथ क्या लेकर चलते हैं? कुछ मुस्कुराहटें, कुछ बातें और कुछ लोग। आखिरकार यही तो वो जाले हैं जो ज़िंदगी के सफ़र को रोशन रखते हैं।
0: हाँ, बिल्कुल ठीक कहा कशिका। और तुम्हारी इस बात से मुझे एक बड़ा ही मशहूर शेर याद आया।
1: अच्छा, कौन सा, सुनाओ।
0: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए।
1: वाह, कितनी सरल भाषा में कितनी खूबसूरत बात कह गए बशीर बद्र साहब। वैसे तरुणा, मुझे लगता है कुछ शायर ऐसे होते हैं जो अपने शब्दों से लोगों के दिलों में हमेशा के लिए घर बना लेते हैं।
0: सच में कशिका, लेकिन जैसे ही ये शेर बोला ना, तो दिल एकदम भारी हो गया। हम सब जानते ही हैं कि बशीर साहब उर्दू शायरी की दुनिया का एक बहुत बड़ा सितारा थे और कल ही के दिन वो हम सभी को अलविदा कह गए।
1: सही कहा तरुणा। और बशीर जी केवल एक शायर नहीं थे, वो मोहब्बत, इंसानियत, रिश्तों और ज़िंदगी को बहुत सादगी से बयां करने वाली एक पूरी दुनिया थे। उनकी शायरी की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि वो सीधे दिल तक पहुंचती थी।
0: हाँ, और शायद इसी वजह से जो लोग शायरी नहीं भी पढ़ते थे, उन्हें भी बशीर बद्र याद थे।
1: बिल्कुल सच कहा तुमने। साथियों, आपको बता दें, डॉक्टर बशीर बद्र जी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की, PhD की और उर्दू साहित्य को अपना जीवन समर्पित कर दिया। लेकिन पता है तरुणा, उनकी ज़िंदगी सिर्फ तालियों और मुशायरों की नहीं थी।
0: हाँ बिल्कुल कशिका, उन्होंने संघर्ष भी देखे। 1987 के मेरठ दंगों में उनका घर जल गया, यहाँ तक कि उनकी कई अप्रकाशित रचनाएं भी नष्ट हो गईं।
1: हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि उन्होंने अपने शब्दों में कभी नफरत को जगह नहीं दी। उनकी शायरी हमेशा मोहब्बत और इंसानियत की बात करती रही।
0: और कशिका, यही तो किसी बड़े लेखक की पहचान होती है कि दर्द मिले तो भी दुनिया को दर्द नहीं संवेदना देना चुने।
1: डॉक्टर बशीर बद्र को पद्मश्री और साहित्य अकेडमी जैसे अनेक सम्मान भी मिले, लेकिन उनका सबसे बड़ा सम्मान था लाखों पाठकों और श्रोताओं का प्यार।
0: बिल्कुल ठीक कहा कशिका। और कल यानी 28 मई को 91 वर्ष की आयु में उनके निधन की खबर आई और इसके साथ ही उर्दू अदब का एक सुनहरा अध्याय जैसे थम सा गया। लेकिन सच तो ये है कि ऐसे लोग कभी जाते नहीं, वो अपने शब्दों में ज़िंदा रहते हैं, अपनी गज़लों में ज़िंदा रहते हैं
1: और उन दिलों में ज़िंदा रहते हैं जिन्होंने उन्हें पढ़ा, सुना और महसूस किया।
0: तो साथियों, इसी तरह बढ़ेंगे कार्यक्रम में आगे की ओर, लेकिन अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। ब्रेक के उस पार जानेंगे आज भी बहुत कुछ खास।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: वेलकम बैक साथियों, एक बार फिर आप जुड़ गए हैं अपने मनपसंद कार्यक्रम युववाणी से। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट कुछ खास है आज की ओर और जानते हैं आज का दिन क्यों है इतना खास।
2: कुछ ख्वाबों की बात,
3: कुछ अपनों का साथ,
2: नरम धागे से बन

0: यही अनुभव आगे चलकर उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा बना।
1: उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और कानून की पढ़ाई करने के बाद वकालत भी की, लेकिन उनका मन समाज सेवा और जनहित के कार्यों में अधिक लगा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वे महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए और देश की आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस दौरान उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा।
0: दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद चौधरी चरण सिंह ने किसानों और ग्रामीण समुदाय के हितों को अपनी राजनीति का केंद्र बनाया। वे मानते थे कि भारत की वास्तविक शक्ति उसके गाँव और किसानों में बसती है। उन्होंने भूमि सुधारों, कृषि विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण प्रयास किए। उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन के लिए किए गए उनके कार्य को आज भी याद किया जाता है।
1: साथियों, चौधरी चरण सिंह जी ने विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए भी जनसेवा की और वर्ष 1979 में भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने। यद्यपि उनका कार्यकाल अपेक्षाकृत छोटा रहा, लेकिन किसानों और ग्रामीण भारत के प्रति उनकी प्रतिबद्धता कभी कम नहीं हुई। उन्होंने हमेशा ऐसी नीतियों का समर्थन किया जो छोटे और मध्यम किसानों के जीवन को बेहतर बना सके।
0: साथियों, उनकी सादगी, ईमानदारी और जनसेवा की भावना ने उन्हें जनता के बीच एक अलग पहचान दिलाई। आज भी उन्हें किसानों के मसीहा के रूप में सम्मान पूर्वक याद किया जाता है। किसानों के प्रति उनके अमूल्य योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उनके जन्म दिवस यानी 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया।
1: श्रोताओं, चौधरी चरण सिंह का जीवन हमें यही संदेश देता है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति की आवाज को सुन सके और उसके हितों के लिए कार्य करे। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके समय में।
0: आइए श्रोता साथियों, उनकी पुण्यतिथि पर हम सभी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें और देश के किसानों तथा ग्रामीण समाज के उत्थान के लिए उनके योगदान को कृतज्ञता के साथ याद करें।
1: तो साथियों, कुछ खास है आज को, यूं ही कंटिन्यू करते हुए आज यानी 29 मई को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स मना रही है। तो साथियों, ये दिवस उन बहादुर पुरुषों और महिलाओं को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है जो संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में दुनिया के विभिन्न संघर्ष ग्रस्त क्षेत्रों में शांति स्थापित करने और मानवता की रक्षा करने का कार्य करते हैं।
0: और दोस्तों, साथ ही ये दिन उन शांति सैनिकों की स्मृति को भी नमन करता है जिन्होंने शांति की स्थापना के प्रयासों में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। संयुक्त राष्ट्र का पहला शांति मिशन वर्ष 1948 में शुरू किया गया था
1: और तब से लेकर आज तक लाखों सैनिक, पुलिस कर्मी और नागरिक कर्मचारी दुनिया के अनेक देशों में शांति बनाए रखने, संघर्षों को कम करने, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और मानवीय सहायता पहुंचाने के कार्य में जुटे रहे हैं।
0: साथियों, शांति सैनिक केवल युद्ध विराम की निगरानी ही नहीं करते बल्कि वे स्कूलों, अस्पतालों और अन्य आवश्यक सेवाओं को सुरक्षित रखने में भी योगदान देते हैं। उनका कार्य अक्सर अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में होता है जहां उन्हें जोखिम, असुरक्षा और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
1: भारत को इस अवसर पर विशेष गर्व होता है क्योंकि भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सबसे बड़ी योगदान देने वाले देशों में से एक रहा है। भारतीय सैनिकों ने अफ्रीका, एशिया और दुनिया के कई अन्य क्षेत्रों में अपनी बहादुरी, अनुशासन और सेवा भावना का परिचय दिया है।
0: दोस्तों, भारतीय शांति सैनिकों ने न केवल शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है बल्कि मानवता और सह अस्तित्व का संदेश भी दिया है। श्रोताओं, शांति केवल युद्ध का अभाव नहीं है बल्कि ये विश्वास, सहयोग और मानवीय मूल्यों की स्थापना का नाम है। संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिक हमें ये प्रेरणा देते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी साहस, धैर्य और सेवा की भावना से दुनिया को बेहतर बनाया जा सकता है।
1: तो आइए दोस्तों, इस अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस पर हम उन सभी शांति रक्षकों को सम्मान पूर्वक याद करें जो विश्व को अधिक सुरक्षित, शांतिपूर्ण और मानवीय बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। और इसी संदेश के साथ कुछ खास है आज में बस इतना ही।
2: कुछ ख्वाबों की बात,
3: कुछ अपनों का साथ,
2: नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने
3: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
2: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
3: वाकई कुछ खास है आज,
2: कुछ खास है आज।
1: साथियों, इसी तरह हम बढ़ेंगे कार्यक्रम में आगे की ओर, लेकिन आइए सुनते हैं उससे पहले एक गीत।

0: दोस्तों, हर बार की तरह आपको इंतज़ार होगा अवधेश कुमार गौतम जी का, पर हमारे आज के कार्यक्रम में आपकी चिट्ठियों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हाजिर हैं रेणु तिवारी जी। रेणु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम युववाणी में।
1: आपका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद, साथ ही साथ श्रोताओं को भी हमारा नमस्कार। कशिका, चिट्ठी आई है। मैं आज भी हमारे पास बहुत सारी चिट्ठियाँ आई हुई हैं, तो और समय ना लेते हुए क्यों ना शुरू किया जाए चिट्ठियों का ये सिलसिला।
0: जी रेणु जी, चलिए जानते हैं हमारी पहली चिट्ठी कौन से श्रोता से मिली है।
2: तो हमारी पहली चिट्ठी आई है गांधी समाधि रोड रामपुर।

0: से हाजी गफ्फार खां, रजिया खान और सिमरन खान जी की ओर से। ये लिखते हैं, कार्यक्रम पेश करने वालों को प्यार भरा आदाब। 1 मई चिट्ठी आई है कि महफिल सजाई हमारे हर दिल अजीज अवधेश कुमार गौतम जी और हुमा सलीम आफाकी और फरीन समद ने। बेहतरीन अंदाज में चिट्ठियां पढ़ीं। अवधेश कुमार गौतम जी ने शानदार अंदाज में चिट्ठियों के जवाब दिए, अच्छा लगा। भारती और स्वास्तिक ने हेलो फ्रेंड्स बेहतरीन किया। भारत के गलियारे से बेहद पसंद आया। इमारतें बोलती हैं में रामपुर के किले की जानकारी बेहद पसंद आई। साइंस नामा कुछ खास है आज पसंद आया। युववाणी के सभी रेडियो साथी बड़ी मेहनत और लगन से प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: हाजी गफ्फार खान, रजिया खान और सिमरन खान जी, आपको सबसे पहले तो ख़त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अवधेश जी को आपने बधाई दी है, चिट्ठी आई है प्रोग्राम के लिए पिछले, तो हमारी तरफ से उनको बधाई पहुंच रही है। साथ ही साथ हमारे जो भी प्रेजेंटर्स हैं, भारती, स्वास्तिक और तरुणा भारती, बाकी जो भी हैं, सभी को आपका बधाई संदेश पहुंच रहा है। और जहां तक बात है हेलो फ्रेंड्स कार्यक्रम की, तो ये कार्यक्रम हमारे श्रोताओं से ही होता है, हमारे श्रोता बातचीत करते हैं और उसी से ये कार्यक्रम बेहतरीन होता है। और जहां तक बात है इमारतें बोलती हैं, तो ये इमारतें हमारी धरोहर हैं, इनके बारे में जानकारी आपको पसंद आई है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ख़त भेजा, शुक्रिया।
2: हमें अगली चिट्ठी प्राप्त हुई है बरेली से। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, ज़रा फासले से मिला करो। कार्यक्रम चिट्ठी आई है प्रस्तुत करने वालों को एकता क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली की तरफ से प्यार भरा आदाब व नमस्कार। हम आकाशवाणी केंद्र रामपुर के सभी कार्यक्रम नियमित रूप से सुनते हैं। पिछले कुछ दिनों से चिट्ठी आई है कार्यक्रम सुनने को नहीं मिला, इसलिए आज इसी कार्यक्रम के माध्यम से अपना ईमेल भेज रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे संदेश को आपके लोकप्रिय कार्यक्रम में जरूर शामिल किया जाएगा। आकाशवाणी रामपुर से प्रसारित होने वाले युवाओं के लिए सभी कार्यक्रम ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और मनोरंजन से भरपूर होते हैं। आपकी पूरी टीम बहुत ही शानदार अंदाज में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। आकाशवाणी रामपुर के 90 वर्ष पूर्ण होने पर युववाणी की पूरी टीम को एकता क्लब की ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद और शुभकामनाएं। आपके सभी सेगमेंट और कार्यक्रम बेहद शानदार लगते हैं, विशेष रूप से फेसबुक लाइव कार्यक्रम, हेलो फ्रेंड्स, रोजगार सूचनाएं और वार्ताएं। इन सभी कार्यक्रमों की प्रस्तुति बहुत ही बेहतरीन होती है। आपकी आवाज़, प्रस्तुति शैली और विषयों का चयन श्रोताओं को बेहद पसंद आता है। हम दुआ करते हैं कि आप इसी तरह शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत करते रहेंगे और श्रोताओं का मनोरंजन करते रहेंगे। धन्यवाद।
1: सबसे पहले तो एकता क्लब सिंधौली के हमारे जो श्रोता हैं, उनका धन्यवाद। चिट्ठी आई है कार्यक्रम, जैसा कि आपने लिखा है कि सुनने को नहीं मिल रहा है, कभी कभी कुछ मजबूरियां आ जाती हैं जिनके चलते ये कार्यक्रम प्रसारित नहीं हो पाता। बहरहाल आप इस कार्यक्रम से जुड़े रहें और हम उम्मीद करते हैं कि आगे ऐसी कोई परेशानी बाधा ना आए और ये कार्यक्रम सुचारू रूप से चले। आपको कार्यक्रम पसंद आते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी जो युववाणी की पूरी टीम है, उसकी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर हम बस यही कहेंगे कि आप श्रोता हमारे कार्यक्रम की रौनक हैं और आपके आने से, जिन कार्यक्रमों में आपकी सहभागिता होती है, उनकी गुणवत्ता अपने आप ही बढ़ जाती है। हमारे श्रोता हमारे कार्यक्रमों को पसंद करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे।
0: साथियों, ये चिट्ठी हमें मिली थी एकता क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली उत्तर प्रदेश से, और ये चिट्ठी हमें लिखी थी इमरान शेख, जीशान वारसी, अयूब खान, करोला मुरादाबाद से। आइए अब जानते हैं अपनी अगली चिट्ठी किसने लिखी है। तो साथियों, इसी क्रम में हमारी अगली चिट्ठी आई है ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से। ये चिट्ठी हमें लिखी है दुर्गेश नागनपुरे राधेश्याम नागनपुरे वंदना भावना बिंदु गोलू कुसुमबाई बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ठाकसे जी ने। ये लिखते हैं, नमस्कार जी, शुभ संध्या। हमें आकाशवाणी रामपुर के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। हमें आकाशवाणी रामपुर से प्रसारित युववाणी कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद।
1: ग्राम जसवाड़ी खंडवा मध्य प्रदेश के श्रोता दुर्गेश नागनपुरे राधेश्याम वंदना भावना बिंदु गोलू कुसुमबाई दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से, आप सभी को हमारे कार्यक्रम पसंद आते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। युववाणी की पूरी टीम की ओर से, और हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी हमारे कार्यक्रमों के साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे, सुनते रहेंगे और अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक भेजते रहेंगे।
2: साथियों, चिट्ठियों का सिलसिला तो यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले सुनते हैं ये गीत।

0: साथियों, चिट्ठियों को पढ़ने का सिलसिला एक बार फिर से शुरू करते हैं और देखते हैं हमारी अगली चिट्ठी हमें किनसे प्राप्त हुई है। हमारी अगली चिट्ठी हमें भेजी है ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी। साथ है लालू मिस्त्री अंसारी और मोहम्मद मुनाजिर अंसारी। वे लिखते हैं, कार्यक्रम चिट्ठी आई है, पेश करने वालों को हमारी तरफ से प्यार भरा आदाब। हमें युववाणी कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है और हर रोज़ हम इस कार्यक्रम को सुनते हैं। इस कार्यक्रम में सबसे खास रहता है आज का सवाल। इसमें सवाल के रूप में जानकारी भी मिलती है। मंगलवार को आप गज़लों का कार्यक्रम पेश करते हैं, अगर आप उसको फरमाइशी कर दें तो अच्छा रहेगा। पहले ये कार्यक्रम शाम एक गज़ल नाम से प्रसारित किया जाता था। 13 मई को नाटक सुना आकाशवाणी पीढ़ियों का साथी, ये नाटक बहुत अच्छा लगा। सभी कलाकारों ने अच्छी प्रस्तुति दी। 14 तारीख को फेसबुक लाइव में मार्क्स विषय को लेकर श्रोताओं के विचार सुने, बहुत अच्छे लगे। गीत आपके नाम और संगीत पहेली कार्यक्रम आपने बंद कर दिए, ऐसा क्यों? 21 तारीख को फेसबुक लाइव में चाय विषय पर लोगों के विचार सराहनीय थे। सभी कार्यक्रम अच्छे चल रहे हैं।
1: ग्राम करेली पुरानी मस्जिद के हमारे श्रोता लाल मोहम्मद अंसारी और साथी, सबसे पहले तो आपको चिट्ठी लिखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि आपने लिखा है कि मंगलवार को गज़लों का प्रोग्राम जो शामिल होता है उसे फरमाइशी कर दें तो अच्छा रहेगा, तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आपका सुझाव हमने नोट कर लिया। जब भी कार्यक्रम में परिवर्तन के विषय में आगे विचार किया जाएगा तो आपका सुझाव उस पर अवश्य विचार किया जाएगा। नाटक आपको अच्छा लगा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही फेसबुक लाइव ये जो सेगमेंट है ये भी आप ही का है। हमारे श्रोताओं के विचार हम अपने दूसरे श्रोताओं तक पहुंचाते हैं। जितने अच्छे विचार आप हमें लिखकर भेजते हैं उतना ही अच्छा ये कार्यक्रम होता है। तो ये आप ही का कार्यक्रम है और आप ही के दम पर चलता है, तो इसके लिए तो बधाई हमारे सभी श्रोताओं को है। जहाँ तक बात है गीत आपके नाम और संगीत पहेली की, तो इस विषय में भी आपका सुझाव नोट कर लिया गया है और जब भी कार्यक्रम में कोई परिवर्तन होता है तो आपके सुझाव पर विचार किया जाएगा। अगला जो खत है वो किसका है तरुणा?
2: रेणु जी, हमें अगला खत प्राप्त हुआ है रामपुर रोड हल्द्वानी नैनीताल उत्तराखंड से गंगा सिंह रावत जी की ओर से। ये लिखते हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। सिने एक्सप्रेस में मैं नियमित रूप से सुन रहा हूं और इसके सवालों के जवाब भी ईमेल और व्हाट्सएप के द्वारा भेज रहा हूं, किंतु मेरे जवाबों को कार्यक्रम में नज़रअंदाज किया जा रहा है, ऐसा क्यों? दूसरा प्रश्न ये है कि जवाब किस तारीख तक भेजे जा सकते हैं ये भी अवश्य बताएं। कुछ खास है, आज में ईद उल अजहा पर उपयोगी जानकारी दी गई। 26 मई को सेगमेंट भारत के गलियारे से में अल्मोड़ा शहर पर जानकारी पसंद आई। 21 मई को फेसबुक लाइव में प्याली में जज्बात पर श्रोताओं के सुंदर विचार सुनने को मिले। कशिका और तरुणा की आज की प्रस्तुति लाजवाब होगी, ऐसा विश्वास है।
1: गंगा सिंह रावत जी, जहां तक सवाल है कि आपके जवाबों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि आपके जवाब हमें समय से ना मिल पाए हों, क्योंकि जवाब देने का एक निश्चित समय है कि सिने एक्सप्रेस के लिए ये संडे को प्रसारित होता है, तो अगले संडे तक आपको उसके जवाब देने होते हैं जिससे कि नाम शामिल हो सके। हो सकता है किसी वजह से आपका जवाब हमें ना मिल सका हो, इसलिए वो शामिल नहीं हुआ। नज़रअंदाज करने की कोई बात ही नहीं है। और अल्मोड़ा शहर वाकई में बहुत ही खूबसूरत शहर है। हमारे जो श्रोता हैं जो घूमने के लिए मान लीजिए कहीं नहीं जा पाते हैं, वो भी हमारे देश की सुंदरता से अवगत हो सके, उसके लिए हमने ये प्रोग्राम रखा है, ये सेगमेंट रखा है। आपको पसंद आया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 26 मई का, 21 मई का फेसबुक लाइव आपको पसंद आया, इसके लिए भी शुक्रिया। और कशिका और तरुणा की तरफ से एडवांस में आपकी बधाई स्वीकार की जा रही है।
2: तो साथियों, चिट्ठियों को पढ़ने का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, लेकिन आइए उससे पहले अब सुनवाते हैं आपको ये प्यारा सा गीत।

0: साथियों, एक बार फिर शुरू करते हैं चिट्ठियों का सिलसिला। हमें अगली चिट्ठी प्राप्त हुई है बीजना मुरादाबाद से। राजवीर सिंह यादव जी, जिसके साथ हैं कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव, यूनुस खान और सोफिया खान, वे लिखते हैं, सादर प्रणाम अवधेश कुमार गौतम जी, युववाणी की पूरी टीम और साथ ही जुड़े सभी प्यारे श्रोता भाइयों बहनों को। मशहूर और अजीम शायर पद्मश्री डॉक्टर बशीर बद्र साहब को आकाशवाणी रामपुर के सभी श्रोताओं की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। आज आकाशवाणी रामपुर के चिट्ठी आइए कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी से जुड़कर बेहद खुशी हो रही है। ये युववाणी कार्यक्रम हम युवाओं की असली धड़कन है, जो हमारी ऊर्जा और सपनों को एक नई उड़ान देता है। युववाणी के उन शानदार प्रस्तुतकर्ताओं के प्रति मैं अपना विशेष आभार प्रकट करता हूँ। आगे उन्होंने अपनी चिट्ठी में हमारे अनेक कार्यक्रमों की प्रस्तावना की है, अलग अलग दिनांकों के बारे में वर्णन किया है। वे लिखते हैं, हमारे आदरणीय अवधेश कुमार गौतम जी इन सभी चिट्ठियों और श्रोताओं की बातों का जवाब जिस आत्मीयता और लाजवाब तरीके से देते हैं, वे हम युवाओं का सही मार्गदर्शन करता है। युवा सोच को इतना खूबसूरत मंच देने के लिए आकाशवाणी रामपुर की युववाणी की पूरी टीम को हृदय से आभार।
1: आकाशवाणी रामपुर की तरफ से भी डॉक्टर बशीर बद्र साहब को बहुत बहुत श्रद्धांजलि। और हमारे कार्यक्रम आपको पसंद आ रहे हैं, इसके लिए पूरी युववाणी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: साथियों, इसी क्रम में हमें अगली चिट्ठी प्राप्त हुई है उदयपुर राजस्थान से संध्या चौरसिया जी की ओर से। ये लिखती हैं, प्रोग्राम पेश करने वालों को प्यार भरा आदाब। अवधेश गौतम जी के निर्देशन में युववाणी कार्यक्रम बहुत बेहतरीन हुआ है। हमें सभी कार्यक्रम बहुत पसंद हैं, जैसे भारत के गलियारे से, साइंस नामा, कुछ असाइनी जैसे नतांश जी, मेघा ठाकुर, तरुणा जी, कशिका जी, असरार जी के कार्यक्रम बहुत पसंद हैं। धन्यवाद।
1: संध्या जी, सबसे पहले तो चिट्ठी भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम हमारे युवा साथियों के लिए है, उनकी पसंद को ध्यान में रखते हुए, ज़रूरत को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। और हमारे जिन भी असाइनीज के नाम आपने हमें लिखकर भेजे हैं, उन सभी की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खत के लिए शुक्रिया।
0: श्रोताओं, अगली चिट्ठी हमें प्राप्त हुई है विवेक शर्मा जी की तरफ से। वो लिखते हैं, मैं आपका नियमित श्रोता हूँ और प्रतिदिन युववाणी कार्यक्रम सुनना मेरी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। विशेष रूप से मुझे कुछ खास है आज समूह चर्चा और श्रोताओं की सहभागिता वाले कार्यक्रम बहुत पसंद आते हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से न केवल नई जानकारियां मिलती हैं, बल्कि समाज और देश के प्रति जागरूकता भी बढ़ती है। आप सभी इस तरह युवाओं की आवाज़ को मंच प्रदान करते रहें और ज्ञान, मनोरंजन तथा प्रेरणा का ये सफर निरंतर जारी रखें। नतांश अग्रवाल, खुशी, नव्या अग्रवाल, मेघा ठाकुर, तरुणा जोगेश और कशिका अग्रवाल के प्रोग्राम बहुत पसंद आते हैं।
1: विवेक जी, सबसे पहले तो यही बात है कि युववाणी कार्यक्रम हमारे युवा साथियों के लिए तैयार किया जाता है, उनकी जो आवश्यकता है, जिस तरह से आज का युवा समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है, उसकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए ये प्रोग्राम तैयार किया जाता है। आपको पसंद आ रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे असाइनीज की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद खत भेजने के लिए।
2: तो साथियों, आइए आप पढ़ते हैं अपने आज के स्पेशल सेगमेंट चिट्ठी आई है कि आखिरी चिट्ठी। और ये पत्र हमें प्राप्त हुआ है मोहल्ला हलवैया शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू भैया और हीना कोसार जी की ओर से। ये लिखते हैं, आपको हमारा प्यार भरा सलाम। कैसे हैं आप अवधेश गौतम जी? हम सब आपके रेगुलर लिसनर्स हैं, सभी प्रोग्राम सुनते हैं और हमें बेहद पसंद भी आ रहे हैं। एक कमी चल रही है, कोई फरमाइश प्रोग्राम नहीं है पत्रों का। SMS या ईमेल पर एक फरमाइशी प्रोग्राम होना चाहिए।
1: मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट बिजनौर के हमारे श्रोता मोहम्मद वक्कार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू भैया और हिना कौसर, आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जहां तक बात है फरमाइशी प्रोग्राम की, तो हर महीने के आखिरी गुरुवार को आप ये फरमाइशी प्रोग्राम सुन सकते हैं। और फ़ोन पर आप हेलो फ्रेंड्स प्रोग्राम सुनते हैं हर शनिवार को। तो जहाँ तक हमें नहीं लगता कि अभी कोई पत्रों पर आधारित प्रोग्राम के लिए समय निकल पा रहा है, लेकिन जब भी परिवर्तन होगा तो आपका सुझाव उस पर अवश्य विचार किया जाएगा।
0: साथियों, अंत में हमें एक चिट्ठी प्राप्त हुई है इरफान खान जी की तरफ से, वे लिखते हैं, आप सभी को हमारा नमस्कार। ईद उल अदा के मौके पर अवधेश कुमार गौतम साहब जी की समय तो युववाणी कार्यक्रम पेश कर रहे हैं। मैडम कशिका अग्रवाल और तरुणा जी, रेणु तिवारी जी, मैम को नमस्कार। आप सबको ईद की शुभकामनाएं। साथियों, ये था हमारा स्पेशल सेगमेंट चिट्ठी आई है। अब समय है हमारे प्रोग्राम के अंतिम पड़ाव का और आज पूछे गए सवाल के सही जवाब को जानने का। हमारा आज का सवाल था, आधुनिक भौतिकी का जनक किसे माना जाता है, जिसका सही जवाब है अल्बर्ट आइंस्टीन।
2: आइए साथियों, अब जानते हैं उन सभी श्रोता साथियों के नाम जिन्होंने दिया है आज के इस सवाल का सही जवाब। अजीत कसाना, धर्मेंद्र छिपा, सतीश अनेजा, नंद कुमार ठाकुर, सुदर्शन शाह, पंकज गुप्ता, मोहम्मद रफीक पवार, राष्ट्रपाल गजभिये, चौधरी राजवीर सिंह, जॉन डी कास्ट्रो, जगदीश ठाकड़, दिनेश वर्मा, नानक खन्ना, रियासत हुसैन सिद्दीकी, मोहम्मद कैफ, दुर्गाराम साहू, शाहरुन नूर अंसारी, बीएल धाकड़, संजय कुमार साहू, दोमेंद्र नेतम डोमू, मसरूर हसन, लालगिरी गोस्वामी, विठल सुरोशे, मोहम्मद सैयद अब्बासी, देवशंकर तामोरिया, गंगा सिंह रावत, रवि कुमार राहुल, जाकिर मंसूरी, राधेश्याम पांडे, राम कुमार रेवार, नवी हसन अब्बासी, राजवीर सिंह यादव, धीरज भाई रबारी, दीपेश वर्मा, बलवंत कुमार वर्मा, सुनील पाठक, पुंजाजी नावकर, फागुराम यादव, हीरामणि वर्मा, मुजफ्फर अली खान, उदय भान पाल, आफ्ताब अंसारी, निसार सलमानी, सुरेश गगनेजा, हल्के जयपाल यादव, रामशरण, सदाशिव धोरात, संजय ढींगिया, अनोखे लाल, संतोष खटसे, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, इरशाद अहमद, आमिर हुसैन, गुरमीत सिंह मीता, शकील अहमद इदरीशी, मोहम्मद जाहिद अली, आकाश रस्तोगी, रवि रस्तोगी, लाल मोहम्मद अंसारी, मोहम्मद यासीन अनजान, इमरान शेख, विजय सुरलकर, गजानन गेले, शाहजी भोटके, मुकेश कश्यप, नितेश, गंगा सिंह रावत, पंकज गुप्ता और प्रवीण चौहान। साथियों, इसी के साथ अब वक्त है आपसे विदा लेने का। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा बताना ना भूलें हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम चिट्ठी आई है युववाणी अनुभाग द्वारा, केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर, पिन संख्या 244901।
0: दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए विषय, नई आवाज़ और नई उमंग के साथ। तब तक के लिए आपके रेडियो साथी कशिका अग्रवाल
2: और तरुणा जोगेश को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार, नमस्कार।

0: अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 6 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में समाचार दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और घुसपैठ पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में संरचनात्मक परिवर्तन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस मॉडल के तहत नागरिकों, प्रशासन, स्थानीय पुलिस और सीमा सुरक्षा बल तथा सेना के सहयोग से पूर्ण क्षेत्रीय सुरक्षा का प्रबंध किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडब्रू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल

0: प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनः परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी।
1: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है, री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: श्री प्रधान ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि सीबीआई इस मामले की पूरी जाँच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दिल्ली में 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट परीक्षार्थी डीटीसी की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट एडमिट कार्ड दिखाना होगा। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी बघेल ने कहा है कि भारत को 2047 तक विश्व की महाशक्ति और अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को सशक्त किए बिना हासिल नहीं हो सकता। असम के गुवाहाटी में कार्यक्रम में उन्होंने राज्य और राष्ट्र की मजबूती के लिए ग्राम स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाए जाने पर बल दिया। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि यह एकेडमी 5 मुख्य क्षेत्रों पर काम करेगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हिलाइन कल से 3 जून तक भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा होगी। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। 6:05 हुए हैं। अब सुनिए सूचना खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में।

प्रभारी निरीक्षक थाना कैला देवी जनपद संभल से प्राप्त सूचना के अनुसार कुमकुम पत्नी मनोज कुमार निवासी लालपुर पोस्ट कैला देवी जिला संभल विगत 8 मई से लापता है। कैला देवी की कुमकुम की आयु 35 वर्ष कद 5 फीट रंगोरा इकहरा बदन चेहरा गोल आंख सामान्य और बाल काले हैं। ये मानसिक रूप से अक्षम है। ये लाल रंग का कुर्ता दुपट्टा पजामी और लाल चप्पल पहने हैं। कुमकुम के विषय में सूचना देने के लिए संपर्क करें मनोज कुमार पुत्र कपराम निवासी लालपुर पोस्ट कैला देवी संभल। दूरभाष संख्या है 9720750352।

एक और सूचना खोए हुए व्यक्ति के संबंध में। प्रियंका पुत्री इमरत सिंह निवासी हाफिजपुर थाना हजरतगढ़ी विगत कुछ समय से लापता हैं। प्रियंका की आयु 22 वर्ष, कद 5 फीट 3 इंच, रंग सांवला, एक गहरा बदन, चेहरा लंबा और बाल काले हैं। प्रियंका का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। इनके विषय में सूचना देने के लिए संपर्क करें श्री इमरत सिंह निवासी ग्राम हाफिजपुर थाना हजरतगढ़ी जनपद संभल। दूरभाष संख्या है 7351464966। खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचना समाप्त हुई। अब सुनिए एक सूचना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित कर रहा है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार शौर्य, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला और संस्कृति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 18 वर्ष से कम आयु तक के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है। नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत किए जा सकते हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। सूचना समाप्त हुई।

हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय शाम के 6:10 में हैं। अब आपके लिए प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। सबसे पहले ये गीत अलका याग्निक और शान की आवाज़ों में, फिल्म का नाम है बस इतना सा ख्वाब है।

बंटी और बबली फिल्म के इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है, मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय आप सुन रहे हैं हमारी दूसरी सभा के प्रसारण, संध्या के 6:20 हुए हैं। अब प्रस्तुत है किसान साथियों के लिए उनका दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: आबो आबो अब्दुल हबीब भैया, राम राम।
1: राम राम अनिल किशोर भैया, और कैसे हैं आप?
0: हम तो अच्छे हैं, और हम उम्मीद करते हैं हमारे जो किसान भैया हैं वे भी अच्छी तरह से होंगे। और आप अपने हालचाल सुनाओ भैया। देखो, हमें लग रही है कि आपको स्वास्थ्य आज अच्छा ना है।
1: हाँ अनिल किशोर भैया, इस समय गर्मी आप देख रहे हो, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और जो पारा है
0: बिल्कुल।
1: वो लगभग 43 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंच गया है। तो ऐसे में हमारे जो किसान भाई खेतों में काम कर रहे हैं और जो पशु हमारे बाहर जाते हैं, काम भी करते हैं और बाहर बंधे होते हैं, उन्हें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि ये गर्म हवाएं चल रही हैं जिसे लू बोलते हैं।
0: बिल्कुल। और लू जो है बहुत ही ज़्यादा नुकसान देती है। गर्म हवाओं में चलन के लिए एक तो हमारे किसान भैया जे चीज़ अजमावे हैं कि जैसे अगर हमारे किसान भैया उनको ऐसे समय में जाने पड़ रहा हो जब तेज़ धूप है और तेज़ हवाएं चल रही हैं, तो उस समय जो है सिर से कोई ना कोई कपड़ा ज़रूर बांध लें, क्योंकि कपड़ा बांध लेंगे तो होत का है कि हमारे जो सिर है ना उस पर जो लू है उसको असर ना हो। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, क्योंकि होत का है हमारे शरीर में जब पानी की कमी हो जाती है ना तो बहुत सारी समस्याएं बन जाती हैं। तो
1: हाँ
0: इस
1: अनिल,
0: तरह से
1: हाँ अनिल किशोर भैया, आपने बहुत अच्छी बात बताई। जो लू होती है ये जो पानी है इसको कम कर देती है, तो इससे डिहाइड्रेशन हो जाता है, और जब
0: बिल्कुल
1: डिहाइड्रेशन हो जाता है अनिल किशोर भैया, तो चलने फिरने में दिक्कत आती है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि वो बोतल लगानी पड़ जाती है, यानी ग्लूकोज चढ़वाना पड़ जाता है।
0: बिल्कुल। तो इस तरह से हमारे किसान भैया ऐसी स्थिति ना आवे, उससे पहले ही अपने स्वास्थ्य के प्रति

0: हाँ अनिल किशोर भैया, ये महान योगदान इन्होंने बहुत ज़्यादा दिए हैं। उन्हें किसानों का मसीहा और देश की प्रगति के लिए ग्रामीण विकास का समर्थक भी इन्हें माना जाता है।
1: बिल्कुल, क्योंकि किसानों के हित में बहुत सारे कामकाज करे चौधरी साहब ने। और देखो जाता है हमारे बहुत सारे किसान भैया या पूरा हमारा जो देश है वो आज भी चौधरी साहब को याद करते हैं।
0: हाँ, इन्हें अनिल किशोर भैया भारत रत्न से भी नवाजा गया था।
1: बिल्कुल, क्योंकि देखो कोई ना कोई काम ऐसे करे जाए जिससे आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी आपको याद करे, और इसी के लिए हम अपने चौधरी साहब की पुण्यतिथि को भी मनाते हैं आज तक। तो भैया देखो इस तरह से हमारे बहुत सारे किसान भैया समझ गए होंगे कि चौधरी साहब को आज जो पुण्यतिथि ही वो मनाई गई। और भैया देखो हम अपने बहुत सारे किसान भैया के लिए कुछ ना कुछ और भी लेकर आते हैं, और आज भी लेकर आए हैं अपने सभी किसान भैया के लिए एक कार्यक्रम लोक मंजरी। तो लोक मंजरी कार्यक्रम में हमारे बहुत सारे किसान भैया हमको पत्र भेजते हैं, और पत्र भेजने के लिए हम बता दें कि हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है
0: 9410087876।
1: या नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे किसान भैया। अगर कोई भी उनके लोकगीत सुनने की इच्छा है और फरमाइश है तो वे हमारे किसान भैया हमको मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। और भैया देखो अब शुरू करते हैं हम अपने लोक मंजरी कार्यक्रम को।

0: तो भैया देखो, हमें पत्र मिलो है ग्राम जहांगीरपुर तहसील सुहार जनपद रामपुर से। पत्र लिखन वाले भैया हैं खलील अहमद, मोहम्मद यासीन, मोहम्मद जाहिद अली। इन्होंने अपने लोकगीत की फरमाइश से भेजी है। और एक खत हमें और मिलो है भैया।
1: हाँ भैया, ये मिला है ग्राम कचनाल तहसील बिलासपुर जनपद रामपुर से। पत्र भेजने वाले हैं मकसूद अली, महबूब अली, अब्दुल शमी, नासिर अली, गुरुदेव सिंह और अतय कुमार व इनके साथी।
0: तो भैया देखो, इन्होंने फरमाइश करी है हमारे किसान भैया ने, हमसे बलम की ऐसी बिगड़ी, और बीना जी की आवाज़ में हम अपने सभी किसान भैया के लिए सुनवाते हैं जो प्यारों सो लोकगीत।

0: और भैया देखो, एक ख़त हमें और मिलो है जाकिर अली, इरफान हुसैन, शकील अहमद, मोहम्मद आरिफ, जो कि ग्राम मुकर्रमपुर तहसील स्वार रामपुर से है।
1: और भैया दूसरा पत्र हमें मिला है, ये मंगल सेन, उपदेश कुमार, सूर्य कुमार, मोहम्मद इरफान, आनंद सिंह और इनके साथी। ये है ग्राम धनोरी, तहसील स्वार, जनपद रामपुर से।
0: इन्होंने भैया देखो फरमाइश करी है कि हो काला मेरा लहंगा मैं खुद काली। प्रेमलता जी की आवाज़ में हम अपने सभी किसान भाइयों के लिए सुनवाते हैं जो प्यारो सो लोकगीत।

0: तो भैया देखो, हमारे सभी किसान भाइयों ने अपनी फरमाइश सुन ली होगी और अब हमें एक और पत्र मिलो है। छत्रपाल तहसील, सतीश कुमार, जितिन कुमार, अतुल कुमार और हेतराम और सोमपाल और उनके साथियों को, जिन्होंने अपनी फरमाइश हमें एक लोकगीत को भेजी है कि आप कोई भी लोकगीत हमें भिजवा सकते हैं, जो हैं ग्राम धनेली उत्तरी तहसील मिलक जनपद रामपुर से।
1: और भैया एक पत्र और मिला है, यह है ग्राम ढकिया तहसील मीरगंज जनपद बरेली से। आप हैं राकेश कुमार, आदेश कुमार, शिवम और उनके साथी।
0: तो भैया, हम अपने सभी किसान भाइयों के लिए सुनवा रहे हैं जो एक प्यारो सो लोकगीत, नेली मेरी साड़ी चुभे नस नस में।

0: और भैया देखो, हमारे सभी किसान भैया ने जे लोकगीत सुन लो, मैं नीली मेरी साड़ी चुभे नस नस में। और अब हमें एक और खत मिलो है रमेश मौर्या जी को, जो कि तहसील मीरगंज जनपद बरेली से हैं, मोहल्ला शेखुपुरा से। इन्होंने फरमाइश करी है कि किसी भी लोकगीत को हमें सुनवा दो जाए, और
1: हाँ
0: एक
1: भैया,
0: और पत्र हम आपके हाथ में देख रहे हैं भैया।
1: एक पत्र और ये है। देवेंद्र कुमार, वैभव, विनय, लव किशोर और रियासत अली, ग्राम बड़ेपुरा मिलक, जनपद रामपुर से हैं।
0: और एक खत हमें और मिलो है भैया, देखो, जो कि ग्राम टहनायक विकासखंड मुन्ना पांडे जनपद मुरादाबाद से है। पत्र लिखने वाले भैया हैं कमल यादव और राजवीर यादव और मलखान सिंह, इनके बहुत सारे साथी हैं। इन्होंने हमें लिख के भेजो कि हमें कोई भी लोकगीत सुनवा दो जाए, जिससे हमारा मनोरंजन हो जाए भरपूर। तो हम अपने सभी किसान बहन के लिए सुनवा रहे हैं प्यारो सो लोकगीत, मैं तो चंदा जैसी नार, प्रेमलता जी की आवाज़ में।

और हफीज भैया देखो, अभी हमारे सभी किसान भाइयों ने लोक मंजरी कार्यक्रम में बहुत सारे लोकगीत की फरमाइश करी और सभी ने अपने अपने मन

0: पसंद के लोकगीत सुने। हम उम्मीद करते हैं हमारे सभी किसान बहन के लिए पसंद आए होंगे। और अब हमारे कार्यक्रम लोक मंजरी को समय समाप्ति की ओर है, तो चलते चलते हम अपने किसान बहन के लिए कार्यक्रम को पता बता दें। पता है कार्यक्रम लोक मंजरी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर, और व्हाट्सएप के लिए मोबाइल नंबर हमारो है भैया
1: 9410087876।
0: और ईमेल हमारे किसान भैया हमें भेज सकते हैं। हमारा जो ईमेल एड्रेस है patramila@rampur.com, इस पर भी हमें मेल कर सकते हैं। और भैया देखो, अब हमारे लोक मंजरी कार्यक्रम को समय समाप्त ही रहो, तो हमारे किसान भैया हमें दें अनुमति

0: तो भैया देखो, हमारे सभी किसान भैया ना अभी लोकमंजरी कार्यक्रम सुनो, और अब हमारे जो भी किसान भैया हैं ना, हम उम्मीद करते हैं हमारे बहुत सारे किसान भैया के लिए जानकारी ज़रूरी हो जाती है, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं एक संदेश।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: साथियों, अब समय हो चला है कृषि संकेत का, तो अनिल भैया क्या सुनवा रहे हैं कृषि संकेत में आज?
0: आज हम अपने सभी किसान भैया के लिए एक विशेष जानकारी लेकर आए हैं, गर्मी के मौसम में पशुओं की देखभाल। जब इसे पर हमारे बहुत सारे किसान भैन के लिए जा समय बहुत ज़रूरी है कि जब उन्हें कोई ना कोई जानकारी दे दी जाए, क्योंकि पशु जो है, जिस तरह से हम अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखते हैं, उसी तरह से हमारे जो पशु हैं ना, उन्हें भी ज़रूरत ही जाती है। और पशुओं को रख रखाव, पशुओं की देखभाल हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है।
2: हाँ अनिल भैया, इस समय देख ही रहे हैं आप, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, और ऐसे समय में हमारे पशुओं की और जो पशुओं के बच्चे होते हैं उनकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम देखभाल इस समय ना करेंगे तो भैया जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और देखा होगा आपने कि लू का भी असर है।
0: बिल्कुल, तो हमारे किसान भैया अपने जो पशु हैं उन्हें एक तो ये काम करें कि जो तेज़ धूप होती है या गर्मी है, ऐसी जगह पे वे न बांधें। कहीं ना कहीं छायादार स्थान है, वहाँ पर बांधें अपने पशुओं को। और जो आवास है ना, उसको जो है अपने जो हवादार होना चाहिए, जहाँ पशु को बांध रहे हैं, चाहे वो दिन में बांध रहे हैं, चाहे शाम को बांध रहे हैं, चाहे रात में बांध रहे हैं, वो इस तरह को होना चाहिए कि उसमें हवा एक तरफ से आवे और दूसरी तरफ को निकल जाए।
2: हाँ अनिल भैया, और जो टीन शेड होते हैं पड़े हुए, उसके ऊपर पराली है या पत्ती है या ऐसा खरपतवार जो होते हैं घास फूस वाले, वो ऊपर डाल दें, और बीच बीच में उस पर पानी का छिड़काव करते रहें, जिससे कि उसमें तापमान जो है कम रहे, नमी बनी रहे, जिससे कि पशु जो होते हैं आराम से रहें।
0: बिल्कुल भैया, देखो बहुत ही अच्छी बात बताई है आपने कि जो टीन आवास हैं, क्योंकि होता क्या है कि जो टीन के आवास हैं ना हमारे पशुओं के, वो टीन जो है बहुत ज़्यादा तपती है, और तप से उसकी जो है जो पशुशाला है उसको तापमान जो है बहुत ज़्यादा अधिक ही जाता है। आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि उस पर पुआल डाल दें, फूस डाल दें, घास फूस डालकर उसके तापमान को आपको कम करने हैं। इसी तरह से जो आपकी पशुशाला है उसमें जो है तापमान जब कम होए तो आपको पशु स्वस्थ रहे। और एक काम और करें हमारे किसान भैया, पानी की व्यवस्था बनाए रखें और साफ़ और ठंडो पानी हमारे पशुओं के लिए उन्हें पिलाने हैं।
2: हाँ अनिल भैया, और बार बार पानी पिलाएं। कई बार हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि सुबह और शाम को पानी पिला दिया और वो देखते नहीं है, तो इस समय डिहाइड्रेशन होता है, चाहे वो पशु हो या मनुष्य हो।
0: बिल्कुल,
2: तो ऐसी स्थिति में कम से कम 4-5 बार पानी उसे पिलाना चाहिए, और पानी भी जो है सुस्त और ताज़ा होना चाहिए।
0: सही बात है भैया। देखो, जब पानी साफ होए और ताज़ा होए तो जो पशु उनको पिया है तो भैया देखो उसके शरीर में ठंडक एहसास होगी, और जो शरीर को तापमान है वो कम होए और पशु को गर्मी कम लगेगी, तो इस
2: हाँ
0: बात
2: अनिल
0: को विशेष ध्यान रखने हैं।
2: हाँ अनिल भैया, और खान पान जो है जैसे हरा चारा है, दाना मिश्रण है, और सुबह शाम ठंडे समय में ही दें, और
0: बिल्कुल
2: खनिज मिश्रण का भैया बहुत ध्यान रखें, और खनिज मिश्रण जितना हमारे किसान भाई दे रहे हैं उसे बढ़ा के रखें, क्योंकि ये गर्मी के मौसम में पशु को ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता होती है।
0: बिल्कुल, और एक काम और हमारे किसान भैया कर रहे हैं कि जो पशु है ना उसको नहलावें जरूर, सुबह शाम नहलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहलान के बाद जो होता है कि जो शरीर की जो गंदगी होती है ना, पसीना के रूप में निकलती है, चाहे

0: हो चाहे मनुष्य हो, तो हम सब जैसे अपने शरीर को ख्याल रखते हैं, इसी तरह से हम अपने पशुओं को भी ध्यान रखने हैं, पशुओं को भी उन्हें नहलाने जरूर है।
1: हाँ भैया, उससे क्या होता है, तापमान जो है वो उनका कम होगा, उन्हें
0: बिल्कुल
1: गर्मी ना लगेगी।
0: बिल्कुल। और चरने के समय को अगर हमारे किसान भैया, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो पशु को चराते हैं ना, तो उसको एक समय होना चाहिए, दोपहर की जो तेज़ धूप होता है ना, उस समय पशु को बाहर चराने के लिए ना ले जाएं, क्योंकि उन्हें जब तेज़ धूप में ले जाएंगे तो उनको जो धूप होए, धूप से उनके शरीर में गर्मी बढ़ेगी, तो गर्मी से भी किसी न किसी तरह के कोई भी बीमारी हो सकता है। तो अपने पशुओं को सुबह शाम ठंड में ही चराने हैं उन्हें, और छायादार स्थान पर ही उनको रखने हैं।
1: हाँ अनिल भैया, अगर हम लू की बात करें तो लू बहुत ज़्यादा इस समय तेज़ चल रही हैं और गर्म चल रही हैं,
0: बिल्कुल।
1: तो यदि पशु हाँफ रहा है, तेज़ सांस ले रहा है, लार गिरा रहा है या शरीर गर्म है, तो ये अनिल भैया लू के लक्षण होते हैं। तुरंत उसे ठंडी जगह पर लाएं, पंखे की व्यवस्था करें और इसे पशु चिकित्सक को भैया ज़रूर दिखा लें, क्योंकि इस समय जो रोग हैं बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, चाहे वो खुरपका हो, मुंहपका हो, इसमें भी गर्मी के जो हमारे पशु हैं उनको बहुत ज़्यादा लगती है। और पशुओं के साथ साथ जो मुर्गी हैं भैया, उनमें भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि जो टीन शेड होता है बहुत तपता है, और नीचे जो दाना डालते हैं हमारे किसान भाई, उस दाने में बहुत ज़्यादा, क्योंकि पोटास, फास्फोरस और ऐसे तत्व होते हैं जो गर्मी पैदा करते हैं,
0: बिल्कुल
1: तो ऐसी स्थिति में उनको भी स्वच्छ और ताज़ा पानी पिलाया जाए और टीन शेड पे उसके घास फूस रख के और पानी का छिड़काव किया जाए, तो जो पशुओं के साथ साथ जो हमारी मुर्गी हैं वो भी सेफ सही रहेंगी।
0: बिल्कुल भैया। देखो एक बात आपने और देखी होगी हमारे बहुत सारे किसान भैया के लिए, कि जो काले पशु होते हैं, जैसे हम भैंस की बात करें, भैंस को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, और अपनी जो भी भैंसा हैं या मादा पशु हो या नर पशु हो, तो इनको क्या करें कि तालाब में या नदी में थोड़ी बहुत देर जरूर बैठो रहने दें, जिससे कि उनको जो है शरीर की गर्मी कम हो। इस बात को भी हमारे किसान भैया ज़रूर अपनावें। होता है कि पशुओं के ले ले जाते हैं और नहलवा के चले जाते हैं, उसमें थोड़ी देर जब वो होड़ में या नदी में बैठेंगे, तालाब में बैठेंगे, तो उनके शरीर को जो तापमान है और कम होए, और उन्हें राहत मिलेगी गर्मी से भी।
1: हाँ नील भैया, और पानी जो है वो स्वच्छ और ताज़ा ज़रूर पिलाएं, क्योंकि जो स्वच्छ पानी होता है वो शरीर के तापमान को कम करता है, वही जो तालाब का पानी हमारे पशु पीते हैं तो वो गर्म पानी होता है। नील भैया जब पानी पीते हैं तो ऊपर से पीते हैं वो, और वो
0: बिल्कुल।
1: पानी गर्म होता है। कोशिश करें हमारे किसान भाई कि नल का और ताज़ा पानी पिलाएं। कई बार हमारे किसान भाई जो हौदिया चलती है, जो ट्यूबवेल चलते हैं उसमें हौदिया बनी होती है, उस पर भी ले जाते हैं, और इसका ध्यान रखें, कई बार उसमें बिजली उतर आती है, लाइट उतर आती है, तो कई बार हानि हो जाती है,
0: बिल्कुल
1: तो ऐसे में भी इनका बचाव बहुत ज़रूरी है। दूसरा,
0: सही
1: जब
0: बात।
1: बरसात, अभी देखा होगा आज का भी तापमान जो है बहुत ज़्यादा है और आज भी तेज़ हवाएं चलने के आसार हैं, और
0: बिल्कुल।
1: इसमें ऐसे स्थिति में हमारे किसान भाई क्या करते हैं, खेतों में हमारे पशु खड़े हैं, जो बिजली गिरती है तो किसी काले पशु पे ज़्यादा गिरती है, देखा होगा
0: बिल्कुल
1: आपने, तो उसकी भी रक्षा करने के लिए जब देखें मौसम गड़बड़ हो रहा है, ख़राब हो रहा है, तो अपने पशुओं को तुरंत घर ले आएँ और अपने जो टीन शेड होते हैं उनके बाड़े होते हैं उसमें अंदर बांध दें।
0: और साथ ही साथ जो छोटे बच्चा होते हैं, देखो जाते हैं नवजात पशु हैं हमारे, जो छोटे छोटे बच्चा होता है उनको भी रख रखाव अच्छे से रखने हैं, है ना, क्योंकि ऐसे मौसम में देखो बच्चा बड़े नाजुक होता है, और बड़े पशु तो थोड़ा बहुत सहन कर सकता है, लेकिन छोटे बच्चा जो है वे सहन ना कर पाते हैं, तो उनको भी बड़ी ही अच्छे तरीक़ा से रखने हैं, उन्हें भी अच्छी जगह नहाए, यानी जैसे हमने बात करी कि बड़े पशुओं को छायादार स्थान पर रखा है, तो छोटे को भी रखने हैं। ऐसा सुना है कभी कभी हमारे किसान भैया छोटे पशुओं को खुले छोड़ देते हैं, और खुले छोड़ने से होता क्या है कि जब पशु इधर उधर जाते हैं, क्योंकि पशुओं को इतनी जानकारी ना है कि हम धूप में हैं या छाँव में हैं, जब गर्मी लगती है तभी वे छाँव को सहारा लेते हैं, तो इसलिए जो है देखो छोटे पशुओं को भी बांध कर रखें और उन्हें भी छायादार स्थान पर ही रखें,
1: हाँ, दूसरा नील
0: छुट्टा ना
1: भैया,
0: छोड़ें।
1: जो ये एल्बेंडाजोल गोली आती है, जो हमारे किसान भाई पशु को कीड़े की यानी कृमि की जो दवाई देते हैं, वो इस समय जो मई जून का महीना होता है इसमें बहुत ज़्यादा जो तापमान है बड़ा रहता है, और ऐसी स्थिति में अगर हम एल्बेंडाजोल की गोली देते हैं तो तापमान और उसका बढ़ जाता है, तो कोशिश करें कि इस समय ना दें, जो ठंडा मौसम होता है उसमें ही उसको गोली खिलाएं, तभी उसके कृमि मरेंगे, और ऐसी स्थिति में अगर हमारे किसान भाई खिलाते हैं तो उसकी गर्मी बढ़ जाती है और ऊपर का तापमान होता है, तो इससे हमारे पशुओं को हानि हो सकती है।
0: बिल्कुल। तो इस तरह से भैया देखो हमने अपने सभी किसान भैया निकले कृषि संकेत में जानकारी दे दी, गर्मी के मौसम में पशुओं की देखभाल, और हमारे सभी किसान भैया ने समझ ली होगी कि किस तरह से हम अपने पशुओं को देखभाल करें, और अब हम अपने सभी किसान भैया के लिए एक और जानकारी दे दें कल के कार्यक्रम की। सबसे पहले चर्चा होगी गर्मी से बचाव एवं पानी की बचत। फिर एक भेंट वार्ता सुनवाई जाएगी आम व लीची की पहाड़ तोड़ाई में सावधानियां। जानकारी देंगे डॉक्टर ए के सिंह और कृषि संकेत में एक जानकारी सुनवाई जाएगी शिमला मिर्च की खेती।
1: भैया साथ साथ मौसम की जानकारी भी दी जाएगी।
0: बिल्कुल, और एक प्यारे से लोकगीत से कराओ जाएगा हमारे किसान बहन के लिए मनोरंजन। और भैया देखो एक और जानकारी हम अपने किसान बहन के लिए लेकर आए हैं मौसम की। कल को मौसम किस तरह से रहने को अनुमान है जहां हम अपने किसान बहन के लिए और बता दें, अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है।
1: आर्द्रता की बात करें तो आर्द्रता 62%, हवा की गति 21 किलोमीटर प्रति घंटा।
0: बिल्कुल, और बारिश की संभावना भैया देखो 43% बताई जा रही है और बादल छाए रहने की संभावना है। इस तरह से तो कल के मौसम रहने को अनुमान है। हमारे किसान भैया जान गए होंगे कि अपनी जो भी खेतीबाड़ी है, जो पशु हैं, अपने जो घर परिवार के सभी लोग हैं उनको किस तरह से रखरखाव रखने हैं, क्योंकि देखो आजकल कभी कभी तेज़ हवाएं चलती हैं, आंधी तूफान आ जाता है, बारिश आ जाता है। रात भी भैया देखो आपने देखी होगी कि बहुत तेज़ बारिश आएगी, तो ऐसे अचानक मौसम ख़राब होने से होता है कि हम अपने आप को जो हमारे घर परिवार है उसकी सुरक्षा पहले से कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे किसान भैया जो हैं वे अपने आप को बचाव कर सकते हैं और किसी भी अप्रिय घटना से बच सकते हैं।
1: हाँ अनिल किशोर भैया, अब समय भी तो समाप्त होने की कगार पे है।
0: बिल्कुल,
1: तो भैया
0: अपने अपने भैया अनिल
1: और अब्दुल हफीज़ भैया को दें अनुमति।
0: राम राम, राम।

अभी किसान साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है, मीडियम वेव और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 7 बजे हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में आज आइए सुनते हैं गिरिजा देवी के स्वर में ठुमरी गायन।

0: गिरिजा देवी के स्वर में अभी आप सुन रहे थे राग भैरव में ठुमरी। शास्त्रीय संगीत अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है, मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

हम अपने श्रोताओं को बता दें 7:31 पर सुगम संगीत में आज कलाकार होंगे आलोक गांगुली और शुभा चटर्जी। व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गाता चल आप सुनेंगे 8:00। 9:30 पर कार्यक्रम होगा स्पोर्ट्स राउंड अप और रात 10:00 सुनिएगा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो रामपुर।

ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 7:18 होने वाले हैं। कुछ ही देर में अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से रिले होगा।

0: भी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ में 392 करोड़ रुपए से अधिक की 114 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में बदली है भारत की तस्वीर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर आदेश सुनाने का दिया निर्देश। हमीरपुर में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरने से 6 मजदूरों की मौत। मुख्यमंत्री ने हादसे में मारे गए श्रमिकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने के दिए निर्देश। और प्रदेश में बीती देर रात आए आंधी तूफान से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश और बिजली गिरने की जारी की चेतावनी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मऊ में 392 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 114 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छी सरकार विकास लेकर आती है। ये विकास बिना भेदभाव नागरिकों के जीवन स्तर को उठाने का माध्यम होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में देश की बागडोर सौंपी तो सभी ने 12 वर्ष में बदलते भारत को देखा। श्री योगी ने बताया कि आज प्रदेश में 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत व मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत निशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मऊ से विभिन्न शहरों की कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है।
4: मऊ जनपद आज फिर से एक नई विकास की यात्रा में आगे बढ़ा है। इस विकास यात्रा के 100 यात्री आपके सामने हैं। कोई सोचता था कि गोरखपुर से वाराणसी का मार्ग 4 लेन का होगा? कोई सोचता था कि मऊ से लखनऊ की दूरी अब मात्र 3 घंटे की हो जाएगी? तो यहाँ आपके लिए प्रदेश की राजधानी इतनी नजदीक हो गई, गोरखपुर नजदीक हो गया, काशी नजदीक हो गया, प्रयागराज की दूरी घट गई, इतनी अच्छी कनेक्टिविटी।
3: मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, चाबी, लैपटॉप, स्वीकृति पत्र आदि देकर

0: भारत की संकल्पना, भारत विकसित होगा तब जब प्रदेश विकसित होगा, प्रदेश विकसित होगा तब जब जनपद विकसित होगा, और जनपद विकसित तब होगा जब ताजोपुर जैसे गांव विकसित होंगे।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत मां का महान सपूत और किसानों का मसीहा बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में कृषि राजस्व के क्षेत्र में तमाम रिफॉर्म का श्रेय उन्हें जाता है। उनका स्पष्ट मत था कि देश के विकास का रास्ता गांव, खेत व खलिहानों से होकर जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान विकास के एजेंडे और सरकार की प्राथमिकता का हिस्सा होना चाहिए। शासन की योजनाएं किसानों को ध्यान में रखकर तैयार की जानी चाहिए।
2: देश के किसानों के मसीहा थे और उनका स्पष्ट कहना था कि देश के विकास का रास्ता गांव के खेत और खलिहानों से होकर के जाता है, और इसलिए विकास

0: के शासन की योजनाएं तैयार होनी चाहिए।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी।
3: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है और री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज जनभवन में स्थापित हाइड्रोपोनिक चारा उत्पादन इकाई का उद्घाटन और अवलोकन किया। ये इकाई जनभवन गौशाला में गौवंशों को वर्ष भर मानक के अनुरूप पर्याप्त पौष्टिक और रसायन मुक्त हरा चारा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थापित की गई है। यह हाइड्रोपोनिक चारा उत्पादन इकाई प्रतिदिन लगभग 100 किलोग्राम हरा चारा उत्पादन करने में सक्षम है। निपुण भारत मिशन के तहत राज्य स्तर पर कार्यरत मिशन के जिला समन्वयक और जिला समन्वयक प्रशिक्षण के लिए 1 और 2 जून को राज्य स्तरीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT लखनऊ में आयोजित होने वाले इस प्रशिक्षण में प्रदेश के सभी 75 जनपदों के जिला समन्वयक प्रतिभाग करेंगे। प्रदेश के विशिष्ट शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए लगातार कार्य कर रही है। निपुण भारत मिशन के माध्यम से बच्चों में आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान विकसित करने के साथ साथ विद्यालयों में सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जनपद हमीरपुर के ललपुरा थाना क्षेत्र के मुरान कादर गांव के पास बीती रात बेतवा नदी में निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरने से 6 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग घायल हो गए। SDRF की टीम बचाव कार्य में लगी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना में श्रमिकों की मौत पर गहरा शोक प्रकट किया है। श्री योगी ने मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में बीती देर रात आए तेज आंधी तूफान, बारिश व आकाशीय बिजली से कई जिलों में भारी नुकसान और जनजीवन प्रभावित हुआ है। सहारनपुर के सिद्धपीठ माता शाकंभरी देवी क्षेत्र में शिवालिक पहाड़ियों में हुई तेज बारिश के बाद अचानक आए पानी के बहाव से कई वाहन बह गए। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को तत्काल फील्ड में जाकर सर्वे कर नुकसान का आकलन करने और राहत राशि शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहत और बचाव कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और हर 3 घंटे में स्थिति की अद्यतन रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। अयोध्या स्थित श्रीराम मंदिर परिसर में बने मां भगवती के मंदिर के शिखर पर आज ध्वजारोहण किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति और साध्वी रितंभरा ने ध्वज को शिखर पर स्थापित किया। वित्तीय वर्ष 2026-27

0: संस्कृति विभाग द्वारा संग्रहालयों की स्थापना, विकास एवं क्यूरेशन कार्य की 17 नवीन परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। इन परियोजनाओं के तहत संग्रहालयों की स्थापना, उच्चीकरण, नवीनीकरण, क्यूरेशन आदि के कार्य कराए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ में 392 करोड़ रुपए से अधिक की 114 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में बदली है भारत की तस्वीर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीनों के भीतर आदेश सुनाने का दिया निर्देश। हमीरपुर में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरने से 6 मजदूरों की मौत। मुख्यमंत्री ने हादसे में मारे गए श्रमिकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने के दिए निर्देश। और प्रदेश में बीती देर रात आए आंधी तूफान से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश और बिजली गिरने की जारी की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। संध्या के 7:31 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत में सबसे पहले आलोक गांगुली के स्वर में सुनिए ये गीत।

आलोक गांगुली के स्वर में अभी आपने सुना ये भजन। सुगम संगीत आप आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से सुन रहे हैं। अब आइए सुनते हैं शुभा चटर्जी के स्वर में ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। आज सुगम संगीत में कलाकार थे आलोक गांगुली और शुभा चटर्जी। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है व्हाट्सएप पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल।

गीत गाता चल कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को रेणु तिवारी का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का ये पहला गीत अनुराधा पौडवाल की आवाज में, फिल्म का नाम है नाम गुम जाएगा और गीत सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर रही, सरिता गवाड़कर, प्रिंस एकांश गवाड़कर, प्रणीता सिद्धांत, टुक टुक गवाड़कर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवाड़कर, सुमित गवाड़कर, ध्वनि गवाड़कर परी, ये श्रोता हैं नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी बिहार से, अकरम हुसैन बेगम, इशरत अकरम, वसीम अकरम, रूबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी और पूनम कुमारी शर्मा, बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल, अर्जुन गवनेकर और धीरज सव्या शेरे, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय, हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोर्ड के, नंदा बोर्ड के, हनुमान बोर्ड के और उत्तम जमदाड़े, नई बस्ती पतेई खालसा अमरोहा से बाहरुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, सिफान सिद्दीकी, बिटिया अलीशा सिद्दीकी, नाविया सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, मोहम्मद यासीन अंसारी और सुदेश चौहान, ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, मोहल्ला अलवायन शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन, प्रवीण रोजी, परवीन बिट्टू भैया और साजदारनी साथ हैं हिना कौसर, गांधी समाधि रोड रामपुर से हाजी गफ्फार खान, राजिया खान, सिमरन खान, संदीप सक्सेना, शहनाज बाबू अंसारी, हबीब अहमद इदरीसी और इरफान खां, वारणा शाहपुर कोल्हापुर महाराष्ट्र से विजय चौहान इंदूरकर, तेजस्विनी चौहान, माई इंदूरकर, बेबी शौर्य, श्रेयस, अंकिता और अनिकेत चौहान, एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश, कार्तिक खर्चे, परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी, आप सभी के अनुरोध पर ये गीत अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में, फिल्म का नाम है नाम गुम जाएगा।

नाम गुम जाएगा। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में, और अब ये गीत जिसे अपनी आवाज़ों से सजाया है।

उदित नारायण और अलका याग्निक ने, हम हो गए आपके फिल्म का ये गीत हमारे इन सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है। सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित, बेबी गर्वी और हिमाक्ष, जलालाबाद वेस्ट से पूनम गगनेजा, सुरेश गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा, पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार और अर्पिता जी, गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह, ये श्रोता हैं दंत्रेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा, मऊनाथ भंजन से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, नूरमहल मैसोल सीतामढ़ी बिहार से मुसरत जहानाज, तलत जहानाज, फरत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज, शाजिया शाहीनाज और नाजिया नूरीनाज, जाफराबाद मराठवाड़ा ग्राम पंचायत कालेगांव से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सर्वद देशमुख, सानवी देशमुख और कल्पना देशमुख, लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर, परमेश्वर मीनाक्षी, मनोहर भाई बागरी, प्रभुलाल बागरी, शोभा, कपिल, नैना, सत्यनारायण और भुंदी भाई बागरी, बागरी मोहल्ला रटलाई से, करणवीर हाउस भूचुकैचिया बठिंडा से प्रेम सिंह जौड़ा, मंजीत कौर, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, संधु, एकम, दमन और अभिजोत, गांव चौहलदा बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, ये श्रोता हैं मेन रोड तिलहारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार और सुजाता पोहरकार, बटिंगखेड़ा से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा, जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार, बबलू निषाद और तरुण यादव, आप सभी की फरमाइश पर ये गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है हम हो गए आपके।

आकाशवाणी रामपुर से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत गाता चल। कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा, मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगैना बरेली से बेदी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार, अमर सिंह, हितेश, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना भारती, ओमवती भारती, खनक, शगुन, सारांश, अयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रथव सिंह, राजद्वारा रोड मीठाकुआं रामपुर से आकाश रस्तोगी, दीपक रस्तोगी, रवि रस्तोगी, अभय, अर्पित, रिया और आरुष रस्तोगी, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई, बहन फिरोजा मुस्कान, अफसर अली और नगमा नाज मंसूरी। ये श्रोता हैं कोल्हापुर से अतुल गौतमी, अरुण काले, एडी कामले, यलगुट्टा, तुषार कुर्णे, प्रशिक एकता कामले, मेघना कुर्णे, उत्कर्षा कामले और अरुण, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्नमाला सुरलकर, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर, वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख, करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और शोएब खान, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल टेम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी, राधे श्याम शाक्य कासगंज से। आप सभी की फरमाइश पर ये गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में, फिल्म का नाम है मैंने दिल तुझको दिया।

गीत गाता चल, ये कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में, जूली फिल्म का ये गीत सुनना चाहा है आप सभी ने। फाजिल्का पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल लाड़ी खेड़ा, शालनी टिवानशी, वाणी खेड़ा, आरबी खेड़ा। स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू और पप्पी भाटिया। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, बीबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। गांव खाबरी अब्बल से चौधरी राजवीर सिंह और चौधरी अनन्या, चौधरी अवान्या। मेन बाजार कुंडलवाली महाराष्ट्र से गंगाधर ये मेकर, प्रमोद ये मेकर, प्रदीप ये मेकर। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्य मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी और जयपाल यादव। जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, फिरोज आलम और चांदनी नाज। धंतरी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजयलक्ष्मी, राजेश, राकेश और ऋषिता। ग्राम दूल्हापुर जिला मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। वैष्णो कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमश खत्री, मोहम्मद अलकमा खत्री, रमेश गौड़ और शादाब खत्री। जामा मस्जिद रोड से हाजी इसहाक लोलामानी, मोहम्मद उमर कासमी और हाजी अयूब शेरी। गांव फरासी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी। आप सभी के अनुरोध पर ये गीत उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में, फिल्म का नाम है जूली।

जूली, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। और अब कार्यक्रम का अंतिम गीत, जिसे अपनी आवाजें दी हैं सोनू निगम और सुनिधि चौहान ने। अरमान फिल्म का ये गीत सुनना चाहा है आप सभी ने। बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीषा यादव, अंशिका यादव, यूसुफ खान और सोफिया खान। परमणि महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई, प्रितेश संघई और पूरा संघई परिवार। मोहन सिंह रावत, ममता रावत, वान्या, इंदिरा कॉटेज, तलीताल, नैनीताल से। चकला बाजार, समाना शहर, पंजाब से पप्पू राजा, खुशदिल, संगीता रानी, पप्पू मह, खुशदिल, सुनीता रानी, आरजू, हसमुख लाल जिंदल, बुलबुल शक्ति, खुशदिल, संजीव बंटी और पूरा ही खुशदिल परिवार। ऊपरकोट बुलंद शहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निकहत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और पूरा अब्बासी परिवार। कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरीन फरान, फारिया ताहिरा। कोल्हापुर महाराष्ट्र से बबन चौगुले और विजय शाहपुरकर। ग्राम दूलापुर जिला मुरादाबाद से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से जावेद अख्तर राही, शमसुल कमर राही, बेगम रुखसार, रकीबा चौहान, तूबा आफरीन और शमीम अख्तर अंसारी। बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूणत, चेतन हाटा, दिशा, दीक्षा और कुश मूणत। हितेंद्र दास, मनोज दास, शेफाली, मधाव दास और वर्षा दास। कुंडाली आसाम से। तालुका निवासा खुपटी महाराष्ट्र से बंडू लोहार, पोपलघट, माया, चंद्रकला, देवीदास पोपलघट और हरिभाऊ बिड़वे। मोहल्ला बारादरी महमूद खान, रामपुर से भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई, फिरोजा मुस्कान, अफसर अली मंसूरी और नगमानाज मंसूरी। डुमराव बिहार से डब्लू अंसारी, सोनम अदीबा, दानिश अंसारी। बिहार से ही शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, सुरीत, रमेश साहू। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभिनंद आर्य और परमानंद आर्य। सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी। ईदगाह गेट मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी और रईस दूल्हा अंसारी। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रेहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर। गुजरात गांधीधाम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी। ये श्रोता हैं दिल्ली शहर मोरीगेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार, राजद्वारा कोठी अफसराला रामपुर से रूमा खान, बॉबी खान, मदीहा खान, सुभान खान, शबनम अब्बासी, गुलफशा, जीनत अमान और शमा परवीन।
सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण और प्रतीक चौहान, आप सभी ने सुनना चाहा है ये गीत सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है अरमान।

हमारी कुछ अन्य श्रोता हैं, बटिंडा रोड बंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग।

अरमान फिल्म के इसी गीत के साथ आज का गीत गाता चल कार्यक्रम समाप्त करने की रेणु तिवारी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे व्हाट्सएप पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गाता चल। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही देर में अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होगा।

0: मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित चार स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य छात्रों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में। और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BHF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BHF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार नकली कीटनाशकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है।
2: सबने मिलकर यह तय किया है कि जो घटिया पेस्टिसाइड है वो एक बड़ी समस्या है। बीज भी गुणवत्तापूर्ण मिले और घटिया पेस्टिसाइड, उस पर जितने सैंपल उठाना चाहिए उतने सैंपल उठाएं। लैब्स कई राज्यों में है लेकिन उनको परफेक्ट करने का काम करें। NABL प्रमाणित लैब वहाँ उन राज्यों में हो, इस पर भी व्यापक पैमाने पर चर्चा हुई है। तो हम लोग इस पर भी नकली के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, व्यापक अभियान चलाया जाए।
0: कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
3: सरकार सभी घरों तक LPG सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मूज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा होगी। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता पर उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह अमेरिका के व्यापारिक दल के भारत आने की उम्मीद है। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए गठित कार्य समिति की हाल की बैठक पर श्री जायसवाल ने कहा कि चर्चा रचनात्मक रही। दोनों पक्षों ने परिसीमन, सीमा प्रबंधन, कार्यतंत्र निर्माण और सीमा सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत में रहे जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: महेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया।
3: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है, जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया, हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में छुपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हम एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनः मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। छठे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। 95.9% गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल मिली है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में जांच कराने वाली महिलाओं की संख्या 70% से बढ़कर 76.2% हो गई है। भारत की कुल प्रजनन दर 2 बनी हुई है। 12 से 23 माह के 96% से अधिक बच्चों को जरूरी टीके लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: fire. The IMD has said that the prevailing heat wave have abated from most parts of northwestern parts of the country and is likely to abate from most parts of the central India from tomorrow. It forecasts thunderstorm activity accompanied by squally winds over northwest, central and east part of the country. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Home Minister Amit Shah announces major shift in border management leveraging technology and four-layered security involving citizens, says eradicating illegal immigration is vital to protect nation's demography. Government establishes national seed reserve of 1,74,000 quintals to ensure seed availability to farmers. Education Minister Dharmendra Pradhan assures strict action against examination mafias and protection for deserving students. Indian shuttlers Satwik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty enter men's doubles semi-final of Singapore Open Badminton. Mixed doubles duo Dhruv Kapila and Tanisha Krasso also advance to semi-final. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वजीर दाखिला अमित शाह ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और शहरियों को शामिल करते हुए चार सतही सिक्योरिटी के साथ सरहदी इंतजामिया में बड़ी तब्दीली का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि मुल्क की आबादी को तहफ्फुज़ फराहम करने में गैर कानूनी इमिग्रेशन को जड़ से खत्म करना जरूरी है। हुकूमत ने किसानों को बीज की दस्तियाबी को यकीनी बनाने की गरज से 1,74,000 क्विंटल का बीज का जखीरा कायम किया है। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इम्तिहान माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई और अहल तालिब इल्मों के लिए तहफ्फुज़ फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। मिक्स्ड डबल खिलाड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो की जोड़ी भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। और आईपीएल क्रिकेट में अहम क्वालिफायर 2 का मैच नए चंडीगढ़ में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान जारी है। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि अपनी सरहदों की हिफाजत करना और गैर कानूनी इमिग्रेशन को जड़ से खत्म करना मुल्क की आबादी को तहफ्फुज़ फराहम करने के लिए इंतहाई अहम है। वह आज गुजरात के शहर भुज में भारत पाकिस्तान सरहद पर G7 और G13 की अहम सरहदी चौकियों का इफ्तिताह करने के बाद फौजियों और अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। वजीर मौसूफ ने कहा कि मरकज ड्रोन्स रडार समेत जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है ताकि एक नाकाबिले दरअंदाजी और खामियों से पाक सिक्योरिटी ग्रिड कायम की जा सके। वजीर दाखिला ने एक नए क्वाड्रीपार्टाइट सिक्योरिटी ग्रिड को मुतारिफ कराने के साथ सरहदी इंतजामिया में एक बड़ी ढांचा जाती तब्दीली का ऐलान किया।
2: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: मगरबी बंगाल में वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने रियासत में दरअंदाजी पर तशवीश जाहिर की है जो आबादियाती तब्दीलियों का बाइस बन रही है। नबन्ना में रियासती सेक्रेटरिएट में मर्दमशुमारी के प्रिंसिपल अफसरान की कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा कि साबिका सरकार दरअंदाजी के मामले पर कार्रवाई करने में नाकाम रही है। उन्होंने वाजे किया कि पहले के टीएमसी इंतजामिया ने मरकज की जानिब से बरवक्त खतूत मौसूल होने के बावजूद मर्दमशुमारी की कार्रवाइयों का आगाज नहीं किया था। वजीर आला ने आबादियाती मुंतकली को सरहदों पर बेकायदा ताड़बाड़ करार दिया। उन्होंने उजागर किया कि सरहदी अजला सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि मर्दमशुमारी की कार्रवाइयों के जरिए जमा किए गए आदाद और शुमार को पॉलिसी साजी और बहबूद की मुख्तलिफ स्कीमें तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। म्यांमार के सदर यू मीन हांग वांग कल से 3 जून तक।

0: भारत के सरकारी दौरे पर रहेंगे। आज दोपहर में नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि दो तरफा बातचीत के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी और म्यांमार के सदर दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने पर तबादले ख्याल करेंगे। भारत चीन सरहदी मामलों पर मुशावरत और तालमेल के लिए मुनक़िदा मीटिंग के बारे में जनाब जायसवाल ने कहा कि मुज़ाकरात तामीरी और मुस्बत थे। बांग्लादेश के गैर कानूनी माइग्रेंट से मुतालिक एक सवाल के जवाब में जनाब जायसवाल ने कहा कि तमाम गैर कानूनी माइग्रेंट्स के मामले में कानून के मुताबिक ही कार्रवाई की जाएगी। भारत और अमरीका के दरमियान तजारती मुजाकरात पर तर्जमान ने कहा कि भारतीय तजारती टीम ने अप्रैल में अमरीका का दौरा किया था। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते अमरीका से एक टीम की भारत आमद मुतवक्का है, जिसमें तजारती उमूर पर मजीद बातचीत की जाएगी। हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का स्टॉक इत्मीनान बख्श है और तमाम रिफाइनरीज पूरी सलाहियत के साथ काम कर रही हैं। नई दिल्ली में बैन वजारती मीडिया ब्रीफिंग से खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी की पैदावार अब तक सबसे ज्यादा योमिया है।
1: हमारे यहाँ पर पेट्रोल और डीजल और एलपीजी के सफिशिएंट स्टॉक है, नेचुरल गैस और क्रूड की सफिशिएंट इन्वेंट्रीज टाइड अप है। हमारी सारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन ऑल टाइम हाई है, लगभग 92 टीएमटी पर डे। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है।
0: मोहतरमा शर्मा ने यह भी बताया कि किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशनशिप से किसी तरह की किल्लत की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। खुर्दा आउटलेट्स के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि 150 अजला ने पेट्रोलियम में 30% इजाफे की रिपोर्ट दी है, जबकि 156 अजला ने 30% से ज्यादा इजाफे की रिपोर्ट दी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत सूरत हाल का जायजा ले रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क की तमाम हाई कोर्ट्स को हिदायत दी है कि अपने फैसले को महफूज करने के 3 महीने के अंदर अंदर फैसला सुनाएं। अदालत उज़्मा ने यह भी वाज़े किया कि फैसला सुनाने में ताखीर से मुकदमे के फरीकैन को नाकाबिले तलाफी नुकसान हो सकता है। इस बात पर जोर देते हुए कि ज़ाती आज़ादी के मुकदमों में तेज तर फैसलों की जरूरत है, चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची पर मुश्तमिल एक बेंच ने कहा कि जमानत की जिम्मेदारियों पर ऑर्डर उसी रोज सुनाया जाना चाहिए, नहीं अगर उन्हें मखसूस रखा जाता है तो अगले रोज उनका फैसला सुनाया या अपडेट किया जाना चाहिए। बड़ी तादाद में हिदायत जारी करते हुए अदालत उज़्मा ने कहा कि जमानत या सजा को मुअत्तल करने के ऑर्डर को फैसला सुनाने के बाद जल्द अज जल्द जेल हुकाम को इरसाल किया जाना चाहिए, क्योंकि फैसला सुनाया जा चुका है और जेर समात मुलजमान को तरजीही तौर पर उसी रोज या ज्यादा से ज्यादा अगले रोज रिहा किया जाना चाहिए। मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हुकूमत ने किसानों को बीज की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए 1,74,000 क्विंटल का कौमी बीज का जखीरा कायम किया है। नई दिल्ली में ज़राअत बराए खरीफ मुहिम 2026 पर कौमी कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन मीडिया से खिताब करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि अब तक 9,76,000 किसान शनाख्ती कार्ड बनाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को मुख्तलिफ स्कीमों तक रसाई के लिए अलहदा दस्तावेजात की जरूरत नहीं होगी। जनाब चौहान ने मजीद कहा कि हुकूमत किसानों के मफादात के तहफ्फुज और इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुराज़म है कि खादों का इस्तेमाल सिर्फ जर्री मकासद के लिए किया जाए।
2: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा है कि पेपर अफशां होने का वाकया इंतहाई अफसोसनाक था, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। डीडी न्यूज के साथ एक खसूसी इंटरव्यू में जनाब प्रधान ने कहा कि दोबारा इम्तिहान का इनेकाद बगैर किसी खामी के मुनज्जम और मुनासिब ढंग से किया जाएगा। उन्होंने इस काम को पूरा करने में हर किसी से ताउन की अपील की।
3: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है और री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: तलबा से खिताब करते हुए जनाब प्रधान ने उन्हें यकीन दिलाया कि हुकूमत उनकी तशवीश को समझती है। उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि उनके एतमाद को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि हुक्काम ने सख्त फैसला किया है, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि किसी भी अहल तालिब इल्म का मुस्तकबिल इम्तिहान माफिया के हाथों में न पड़े या बेजाब

में देखा है, उसने यकीनन सभी के होश उड़ा दिए हैं। सबसे पहले रिवाइंड करते हैं और चलते हैं खूबसूरत वादियों के बीच स्थित धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में। 26 मई मंगलवार का दिन और मुकाबला था क्वालिफायर वन, जहां पॉइंट्स टेबल की सिरमौर रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु का सामना हुआ मजबूत गुजरात टाइटन से। सभी को लग रहा था कि कांटे की टक्कर होगी, लेकिन बंगलुरु के इरादे तो कुछ और ही थे। रजत पाटीदार ने महज 33 गेंदों में 93 रनों की ऐसी तूफानी नाबाद पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 9 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। पाटीदार के इस तूफान की बदौलत RCB ने बोर्ड पर 254 रनों का एक अकल्पनीय पहाड़ खड़ा कर दिया। दबाव में शुभमन गिल की गुजरात टाइटन्स ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। अनुभवी भुवनेश्वर कुमार और बाकी गेंदबाजों के कसे हुए स्पेल के आगे गुजरात महज 162 रनों पर ढेर हो गई। 92 रनों के इस विशाल जीत के साथ RCB ने शान से 31 मई को होने वाले ग्रैंड फिनाले का सीधा टिकट कटा लिया है। अगर आपको लगता है कि क्वालिफायर वन में ही सारा एक्शन था तो जरा रुकिए, क्योंकि 27 मई को न्यू चंडीगढ़ के मैदान पर इलिमिनेटर मुकाबले में जो हुआ वो क्रिकेट के इतिहास में दर्ज हो गया। राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच वो करो या मरो का मुकाबला था। हैदराबाद के कैप्टन पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन उनका ये दांव उन पर ही भारी पड़ गया। उस मैच का सबसे बड़ा हीरो कोई अनुभवी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी नहीं, बल्कि महज 15 साल का एक युवा भारतीय सितारा था, वैभव सूर्यवंशी। इस 15 वर्षीय बल्लेबाज ने मात्र 29 गेंदों में 97 रनों की ऐसी विस्फोटक पारी खेली कि पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजाने पर मजबूर हो गया। 334 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए वैभव ने 5 चौके और 12 छक्के जड़े, और सबसे बड़ी बात, इसी के साथ उन्होंने यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल के एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के 2012 के ऐतिहासिक रिकॉर्ड को भी चकनाचूर कर दिया। वैभव के इस तूफान और मध्य क्रम में ध्रुव जुरेल के 21 गेंदों में 50 रनों की बदौलत राजस्थान ने 243 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। 244 रनों के पहाड़ का पीछा करने उतरी हैदराबाद की टीम शुरुआत से ही दबाव में आ गई। राजस्थान के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने अपनी आग उगलती गेंदों से अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड और ईशान किशन जैसे दिग्गज टॉप ऑर्डर को पावर प्ले में ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। आर्चर ने अपने 4 ओवर में 3 विकेट झटके, वहीं रविंद्र जडेजा और नांद्रे बर्गर ने 2-2 विकेट लेकर हैदराबाद की कमर तोड़ दी। नीतीश कुमार रेड्डी और ईशान किशन की छोटी पारियां नाकाफी रहीं और पूरी हैदराबाद की टीम 19 ओवर 2 बॉल में ही 196 रनों पर ऑल आउट हो गई। राजस्थान रॉयल्स ने ये मैच 47 रनों से जीतकर न सिर्फ हैदराबाद का सफर खत्म कर दिया, बल्कि खिताब की ओर अपना एक बेहद मजबूत कदम बढ़ा दिया है। आज न्यू चंडीगढ़ के इसी मैदान में क्वालिफायर 2 का मैच खेला जा रहा है। इस महामुकाबले में शुभमन गिल की अगुवाई वाली गुजरात टाइटन्स और शानदार फॉर्म में चल रही राजस्थान रॉयल्स आमने सामने हैं। जो भी टीम ये मैच जीतेगी वो 31 मई को रविवार के दिन अहमदाबाद के दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में चमचमाती ट्रॉफी के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से टकराएगी। क्या आप जानते हैं कि 50 ओवर के क्रिकेट यानी वनडे इंटरनेशनल में दुनिया का असली बॉस कौन है? कोई और नहीं, हमारी अपनी टीम इंडिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अपनी ताज़ा सालाना वनडे टीम रैंकिंग जारी कर दी है, और आपको यह जानकर असीम खुशी होगी कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अपना नंबर 1 का ताज पूरी शान शौकत के साथ बरकरार रखा है। सालाना अपडेट के बाद टीम इंडिया 118 रेटिंग अंकों के साथ इस प्रतिष्ठित लिस्ट में सबसे ऊपर मजबूती से काबिज है। हालांकि हमारे रेटिंग पॉइंट्स 119 से मामूली रूप से घटकर 118 जरूर हुए हैं, लेकिन इससे हमारी हुकूमत पर कोई आंच नहीं आई है। दूसरे पायदान पर है न्यूजीलैंड की टीम, जिसने 111 रन से बढ़कर 113 पॉइंट्स हासिल किए हैं। एक वक्त पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो 8 अंकों का एक बड़ा फासला था वो अब घटकर 5 पॉइंट्स का रह गया है। अगर हम बाकी टीमों पर नजर डालें तो मौजूदा वर्ल्ड कप चैंपियन ऑस्ट्रेलिया 109 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर जमी हुई है। वहीं एक बड़ा बदलाव टॉप 5 में देखने को मिला है। दक्षिण अफ्रीका ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 102 अंकों के साथ पाकिस्तान को पछाड़कर चौथा स्थान हासिल कर लिया है, जबकि पाकिस्तान अब 5वें नंबर पर खिसक गई है। इसके बाद श्रीलंका 6, अफगानिस्तान 7 और इंग्लैंड 8 नंबर पर हैं। यह रैंकिंग सलाम करती है कप्तान रोहित शर्मा की उस निडर लीडरशिप को, जिसने टीम को एक आक्रामक और बेखौफ सोच दी है। यह सम्मान है विराट कोहली के उस अदम्य साहस और भूख का, जो सालों बाद भी कम होने का नाम नहीं ले रही। यह नतीजा है

जसप्रीत बुमराह की उस जादुई गेंदबाजी का जिसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाज खौफ खाते हैं, और सबसे बढ़कर यह जीत है हमारी उस युवा ब्रिगेड की, शुभमन गिल से लेकर यशस्वी जायसवाल और कुलदीप यादव की, जिन्होंने बिना किसी दबाव के इंटरनेशनल स्तर पर अपनी छाप छोड़ी है। हम सब जानते हैं कि टीम इंडिया ने पिछले कुछ समय में सिर्फ अपने घरेलू मैदानों पर ही नहीं बल्कि विदेशी सरजमी पर जाकर विरोधियों को धूल चटाई है, फिर चाहे वो तेज और उछाल भरी पिचें हों या स्पिनरों की मददगार धीमी विकेटें, भारत ने हर परिस्थिति में खुद को साबित किया है। और इस रैंकिंग का महत्व सिर्फ आज के लिए ही नहीं है। आपको बता दें कि यह अपडेट 2027 में दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे में होने वाले ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के डायरेक्ट क्वालिफिकेशन के लिहाज से भी बेहद अहम है। वर्ल्ड कप के लिए टॉप 8 टीमों को सीधा एंट्री मिलनी है। हमारी टीम इंडिया का इस वक्त नंबर 1 पर होना यह साफ संदेश देता है कि हम भविष्य की चुनौतियों के लिए कितने तैयार हैं। टीम का यह प्रदर्शन बाकी देशों के लिए एक खुली चेतावनी है कि अगर आपको वर्ल्ड कप जीतना है तो आपको भारत नाम की इस मजबूत दीवार को पार करना ही होगा। अब बात करते हैं शतरंज की दुनिया की, जहां से एक ऐसी धमाकेदार खबर आ रही है जिसने पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। जी हां, भारत के 20 वर्षीय ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। नॉर्वे चेस 2026 के तीसरे राउंड में हमारे प्रज्ञानंद ने शतरंज के सिरमौर और वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को उनके ही घर में मात दे दी है। शतरंज के खेल में मैग्नस कार्लसन को हराना किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं है, लेकिन ओस्लो में जो हुआ वो किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। यह नॉर्वे चेस 2026 का राउंड 3 था। सफेद मोहरों के साथ खेलते हुए प्रज्ञानंद ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया और कार्लसन को उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल दिया। प्रज्ञानंद ने गेम की शुरुआत में ही एक बहुत ही आक्रामक और दुर्लभ ओपनिंग चली जिसने कार्लसन को सोचने पर मजबूर कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि कार्लसन ने अपनी एक चाल चलने के लिए 28 मिनट का समय लिया। यह दर्शाता है कि प्रज्ञानंद की रणनीति कितनी सटीक थी और वर्ल्ड चैंपियन किस कदर दबाव में थे। खेल का पहला हाफ पूरी तरह से प्रज्ञानंद के नियंत्रण में था, लेकिन मैग्नस कार्लसन को यूं ही दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नहीं कहा जाता। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां रफ्तार पकड़ने लगी, दोनों खिलाड़ी टाइम प्रेशर में आए, कार्लसन ने शानदार वापसी की। खेल में एक पल ऐसा आया जब बाजी पूरी तरह कार्लसन के पक्ष में पलट गई। ऐसा लग रहा था कि शायद भारत के हाथ से यह जीत निकल जाएगी, लेकिन जब वक्त कम हो तो दिमाग पर दबाव असहनीय हो जाता है। इसी टाइम स्क्रैम्बल के भंवर में कार्लसन ने एक बड़ी भूल कर दी और प्रज्ञानंद तो जैसे इसी मौके के ताक में थे। उन्होंने कार्लसन की उस गलती का फायदा तुरंत उठाया और ऐसी चाल चली कि 5 बार के विश्व चैंपियन को हार माननी पड़ी। अब अगर बात करें नॉर्वे चेस के पॉइंट्स टेबल की, तो इस जीत के बाद प्रज्ञानंद 4.5 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। टेबल के टॉप पर फिलहाल अलीरेजा फिरोजा हैं 7.5 अंक के साथ, जिन्होंने भारत के ही वर्ल्ड चैंपियन गुकेश डोमा राजू को आर्मागेडन टाई ब्रेक में हराया। वहीं मैग्नस कार्लसन के लिए यह टूर्नामेंट अभी तक किसी बुरे सपने जैसा है। 3 में से 2 मैच हारकर वह पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे यानी 6 स्थान पर खिसक गए हैं। महिला वर्ग की बात करें तो वहां भी भारत की बेटी दिव्या देशमुख ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टेबल टॉपर बीबी सारा को आर्मागेडन में हराकर दूसरा स्थान हासिल किया है। नॉर्वे की धरती से प्रज्ञानंद की यह जीत सिर्फ एक मैच की जीत नहीं है, ये एक ऐलान है कि आने वाला कल भारतीय शतरंज का है। विश्वनाथ आनंद ने जो बीज बोया था, आज वह इन युवा ग्रैंड मास्टर्स के रूप में एक विशाल पेड़ बन चुका है। एक बार फिर भारत के इस लाल ने दुनिया को दिखा दिया है कि जब इरादे फौलादी हों तो कोई भी रिकॉर्ड अजेय नहीं होता। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के स्टार पैरा एथलीट और 2 बार के पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट सुमित अंतिल की। बंगलुरु में चल रहे 8वें इंडियन ओपन इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में कुछ ऐसा हुआ। बुधवार 27 मई 2026 का दिन भारतीय खेलों के लिए एक मील का पत्थर बन गया है। मेंस जैवलिन थ्रो यानी भाला फेंक के F64 वर्ग में सुमित अंतिल ने भाले को हवा में ऐसे उछाला जैसे वो आसमान को चीरने निकला हो और जाकर 74.82 मीटर की दूरी पर गिरा। 74.82 मीटर यह सिर्फ एक नंबर नहीं है,

0: यह एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है और सबसे खास बात यह है कि सुमित अंतिल ने किसी और का नहीं बल्कि अपना ही पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। इससे पहले उनका रिकॉर्ड 73.29 मीटर का था जो उन्होंने 2022 के एशियन पैरा गेम्स में बनाया था। सुमित के इस थ्रो के साथ ही स्टेडियम में जो गूंज उठी वो आज पूरे देश में सुनाई दे रही है। इस इवेंट में महाराष्ट्र के संदीप सरगर ने 62.88 मीटर के साथ सिल्वर और राजस्थान के संदीप ने 61.83 मीटर के साथ ब्रोंज मेडल जीता, लेकिन प्रतियोगिता में पूरी तरह से सुमित का ही दबदबा रहा। हरियाणा के सोनीपत से आने वाले 27 साल के सुमित अंतिल की कहानी किसी फिल्मी कहानी से ज़्यादा प्रेरणादायक है। F64 कैटेगरी उन एथलीट्स के लिए होती है जिन्हें पैरों में कोई समस्या होती है या जो प्रोस्थेसिस कृत्रिम पैर के सहारे खेलते हैं। 2015 में एक भयानक बाइक एक्सीडेंट में सुमित ने घुटनों के नीचे से अपना बायां पैर खो दिया था। एक समय जो युवा होनहार पहलवान था उसके लिए यह कितना बड़ा झटका रहा होगा यह अकल्पनीय है, लेकिन सुमित ने हार नहीं मानी। 2018 में उन्होंने पैरा स्पोर्ट्स की दुनिया में कदम रखा और उसके बाद जो हुआ वो अब इतिहास है। टोक्यो 2020 पैरालंपिक और पेरिस 2024 पैरालंपिक दोनों ही जगह उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किए। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद सुमित ने कहा कि वो पिछले 3 साल से इस पल का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बताया कि इस साल उन्होंने अपनी तकनीक और रनअप में काफ़ी बदलाव किए हैं ताकि वो अपनी पूरी ताकत को थ्रो में बदल सकें। सुमित का सपना यहाँ खत्म नहीं होता। उनका अगला लक्ष्य है 80 मीटर के जादुई आंकड़े को पार करना। 80 मीटर जो अच्छे अच्छे सामान्य एथलीट्स के लिए भी किसी सपने से कम नहीं होता। सुमित ने यह विश्व कीर्तिमान देश को समर्पित किया। आपको बता दें कि बेंगलुरु की इस चैंपियनशिप में भारत के अन्य पैरा एथलीट्स ने भी कमाल किया है। मेंस हाई जंप में पैरालंपिक मेडलिस्ट प्रवीण कुमार ने गोल्ड जीता। वहीं महिलाओं की 400 मीटर रेस में दीप्ति जीवन जी ने 57.84 सेकंड्स के शानदार समय के साथ पहला स्थान हासिल किया। जर्मनी के म्यूनिक शहर से एक ऐसी गोल्डन खबर आई है जिसने पूरे भारत का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। हम बात कर रहे हैं भारत की 21 वर्षीय स्टार शूटर ईशा सिंह की, जिन्होंने म्यूनिक में चल रहे ISSF वर्ल्ड कप 2026 में वो कर दिखाया है जो आज तक इस दुनिया में कोई नहीं कर पाया। ईशा ने महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल इवेंट में सिर्फ गोल्ड मेडल ही नहीं जीता बल्कि एक नया विश्व कीर्तिमान भी स्थापित किया है। 25 मीटर पिस्टल का फाइनल मुकाबला दुनिया की 8 टॉप शूटर्स आमने सामने और भारत की शेरनी ईशा सिंह का निशाना एकदम अचूक। ईशा ने फाइनल में 50 में से 43 का ऐतिहासिक स्कोर बनाया। यह 43 का स्कोर कोई आम स्कोर नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने सीनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड और जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड दोनों को एक ही झटके में तोड़ दिया है। इससे पहले यह सीनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड कोरियाई शूटर किम ये जी के नाम था जिन्होंने 42 का स्कोर बनाया था और जूनियर रिकॉर्ड पेरिस ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट यांग जी इन के नाम 41 का था। ईशा ने 43 का जादुई आंकड़ा छूकर इन दोनों दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है। इस खिताबी मुकाबले में ईशा के सामने जर्मनी की लोकल फेवरेट और पूर्व विश्व चैंपियन डोरीन वेनेकैम्प थी। पूरा स्टेडियम अपनी होम प्लेयर को चीयर कर रहा था लेकिन ईशा की एकाग्रता देखने लायक थी। उन्होंने शुरुआत की 3 सीरीज में लगातार 5 में से 5 परफेक्ट शॉट लगाए। अंत में ईशा ने 43 के स्कोर के साथ गोल्ड पर कब्जा जमाया जबकि डोरीन वेनेकैम्प 38 के स्कोर के साथ सिल्वर मेडल तक ही सीमित रह गईं। 25 मीटर पिस्टल का खेल बहुत तेज और मुश्किल होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें इसमें 2 राउंड होते हैं, प्रिसीजन और रैपिड फायर। रैपिड फायर में एक शूटर को पिस्टल उठाने, निशाना लगाने और फायर करने के लिए सिर्फ 3 सेकंड्स का समय मिलता है। ईशा ने क्वालिफिकेशन राउंड में 587 का शानदार स्कोर किया था और 4th स्थान पर रहकर फाइनल में जगह बनाई थी। इस जीत के पीछे सालों की कड़ी मेहनत और एक बहुत बड़ा टेक्निकल बदलाव छिपा है। 10 मीटर एयर पिस्टल से 25 मीटर पिस्टल में शिफ्ट होना आसान नहीं होता। 25 मीटर पिस्टल का ट्रिगर 1 किलो का होता है। ईशा के कोच रौनक पंडित ने पिछले कुछ सालों में उनकी तकनीक पर बहुत काम किया। उन्होंने ईशा को पिस्टल धीरे उठाने और शॉट को मूवमेंट में ही रिलीज करने की ट्रेनिंग दी। 4 साल की इस लंबी तपस्या का फल म्यूनिक के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में पूरी दुनिया ने देखा।
1: भा
0: भारतीय खेल और वैश्विक वेलनेस के लिए एक ऐतिहासिक कदम के रूप में विश्व योगासन चैंपियनशिप के पहले संस्करण का 26 मई को नई दिल्ली में खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आधिकारिक रूप से अनावरण किया। विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन 4 से 8 जून तक अहमदाबाद के एका एरिना में किया जाएगा। इस चैंपियनशिप में युगांडा, जाम्बिया, श्रीलंका, नेपाल, केन्या, जापान, मॉरिशस और नीदरलैंड सहित 60 से अधिक देशों के योगासन खिलाड़ी और प्रतिनिधि मंडल भाग लेंगे। श्री मांडविया ने कहा कि यह भारत सॉफ्ट पावर के रूप में पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है और वैश्विक स्तर पर शारीरिक फिटनेस, मानसिक शांति और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने वाला सबसे सशक्त माध्यम बन गया है।
1: दुनिया के 75 से अधिक देश उसमें भाग लेंगे। 500 से अधिक एथलीट्स उसमें पार्टिसिपेशन करेंगे। योग ये हमारे देश की संस्कृति भी है, हमारी जीवन शैली भी है। आज से सदियों पहले योग भारत से निकल के सारे दुनिया में गया है। फिर से योगासन की फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप करके उसको पुनः भारत में एक बड़ा कार्यक्रम के रूप में आयोजित करेंगे।
0: किसी ने क्या खूब कहा है कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। और जब इन इरादों को सही सुविधाओं का साथ मिल जाए तो फिर रिकॉर्ड टूटना और नए इतिहास का बनना तय है। रामपुर के खेल प्रेमियों और उभरते हुए एथलीट्स के लिए 22 मई का दिन एक नई सुबह लेकर आया। बमनपुरी स्थित शहीद आजम स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक अत्याधुनिक सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का शिलान्यास किया गया। यह नया ट्रैक सिर्फ एक मैदान का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह उन सैकड़ों युवा खिलाड़ियों के सपनों की नई उड़ान का वो रास्ता है जिस पर दौड़कर कल वो हमारे देश का तिरंगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फहराएंगे। इस मौके पर हमारे सहयोगी सुहेल जैदी ने बातचीत की है जाने माने एथलेटिक्स चैंपियन जावेद खान से।
2: मैं आपका दोस्त सुहेल जैदी। जैसा कि आपको मालूम है कि अब 22 मई को शहीद आजम स्पोर्ट्स स्टेडियम बमनपुरी में शहर विधायक आकाश सक्सेना और जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के अलावा मुख्य विकास अधिकारी गुलाब चंद और जिला क्रीड़ा अधिकारी संतोष कुमार ने सिंथेटिक ट्रैक का शिलान्यास किया। ये सिंथेटिक एथलीट ट्रैक इंटरनेशनल मानकों को पूरा करता है। रामपुर और आसपास के खिलाड़ियों के लिए ये एक मील का पत्थर है। हमारी पीढ़ी घास के मैदान, रेत के मैदानों पर दौड़ी है, लेकिन आज के युवा के लिए सरकार ने बहुत बड़ी उपलब्धि दी है, इसका उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। और रामपुर में जो ये सिंथेटिक एथलीट ट्रैक है उस पर मुरादाबाद, संभल, बिजनौर, अमरोहा, बरेली और उत्तराखंड के खिलाड़ी भी दौड़ में सुधार कर सकते, इससे उनका भविष्य बेहतर बनेगा, संवरेगा, चमकेगा। इसलिए आज हमारे साथ हैं जावेद खान, जो कि एथलीट रहे हैं अपने दौर के प्रसिद्ध एथलीट और फिलहाल फिजिकल कॉलेज रामपुर में कार्यरत हैं। इन्होंने घास के मैदानों में रेत पर दौड़कर अपनी मंजिल को छुआ है। तो आइए हम बात करते हैं जावेद खान से, किस तरह से वो ये इस मुकाम तक पहुंचे, फिर उन्होंने जॉब हासिल की। और मैं बता दूं अपने सुनने वालों को कि सरकार ने अब खेल कोटा भी शुरू कर दिया है, इसलिए मोबाइल पर ना खेलकर मैदान पर खेलें और आगे बढ़ें। तो जावेद साहब, आपने स्टार्टिंग कहां से की और कैसे आप दौड़ में आए?
3: सन 1984 में मुर्तुजा स्कूल में मैं पढ़ा करता था। जब मैं स्टेडियम टीचर्स लेकर आया तो मैंने देखा एक कमाल अली थे, वो एशियाड प्लेयर थे, अच्छे रेसर थे, उनको मैंने देखा। देखने के बाद जब मैं घर गया तो मैंने सोचा इनके साथ मैं भी प्रैक्टिस करूंगा। जब मैं गया तो इतनी फैसिलिटी नहीं होती थी जैसे आजकल की फैसिलिटी है, तमाम स्टेडियम है, सिंथेटिक स्टेडियम है। उस जमाने में एक ही फील्ड हुआ करता था, इतनी प्रैक्टिस हुआ करती थी, हम घास पे फील्ड पे प्रैक्टिस करा करते थे। लेकिन घास की फील्ड पे प्रैक्टिस करने से काम नहीं चलता है, जब तक थाइज में ताकत नहीं हो तो हम रेते पे प्रैक्टिस करने जाया करते थे, सीढ़ियाँ करा करते थे, पजाव पे हिल रनिंग करा करते थे और कोसी पे रेते में दौड़ा करते थे और वेट ट्रेनिंग करा करते थे। टांगें मजबूत हो जाएंगी जभी तो इंसान करेगा। जब हम 10-10, 20-20 चक्कर स्टेडियम के लगाया करते थे तो समझो 200 मीटर भाग सकता आदमी जब 20-20 चक्कर लगा लेता है। तो इतना स्टेमिना होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए। इसी प्रकार जब जो 100 मीटर का एक इंडिविजुअल गेम है उसमें किसी की सोर्स नहीं, किसी की सिफारिश नहीं हो तो खुला खेल होता है, सामने बिल्कुल दौड़ होती है, सामने बस ये होती है स्टार्टिंग अच्छी होनी चाहिए, फिनिशिंग अच्छी होना चाहिए और काफी मेहनत जब हम करते हैं उसकी मेहनत का नतीजा ये होता है कि हम 100 मीटर खींचते हैं तो पूरी ताकत से खींचते हैं, तो हम 11 सेकंड 11-1 10-9 इतने टाइमिंग में भागा करते थे। लेकिन आजकल काफी फैसिलिटी हो गई है बच्चों को, खेल इंडिया में मोदी जी ने ऐसा स्कोप कर दिया है और इतनी अच्छी है कि अब तो रेलवे का भी ले रहा है, जबकि योगी जी ने भी कह दिया हर शहर में एक स्टेडियम बनना अनिवार्य है और ज्यादातर देखा जा रही है और खेलों की बहुत प्रक्रिया बढ़ती चली जा रही है। और जो है योगी जी ने हमारे कहा खेलों पे ज्यादा ध्यान दो, प्रधानमंत्री जी ने कहा खेलों पे ध्यान दो, इसलिए सब लोग अब खेल पे काफी ध्यान दे रहे हैं। अगर इस वक्त का बच्चा जरा सा भी अच्छा खिलाड़ी है नेशनल जाता है तो उसकी नौकरी समझो पक्की है। पहले इतना कंपटीशन था, मेहनत कम करते थे, लेकिन वो जो मेहनत करते थे वो कामयाब भी होते थे। आजकल जो है बहुत बच्चे जो है हर चीज की सुविधा है, मोबाइल पे देख रहे हैं, इस पे देख रहे हैं, उस पे देख रहे हैं, सब चीज की उनको बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज हो जाती है। अब हम ये कह रहे हैं कि आजकल के बच्चे जो है इतनी प्रैक्टिस नहीं करा करते जबकि इतनी फैसिलिटी है। पहले इतनी फैसिलिटी नहीं होती थी लेकिन लोग मेहनत करते थे और हमने भी इतनी मेहनत करी है।
2: आपने खेल की शुरुआत बताई, इस बीच में आपको क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या परेशानियां आई और उनको पार करते हुए आप वहां तक पहुंचे, हमारे श्रोताओं को बताएं और खासकर युवा पीढ़ी को बताएं कि वो घबराएं नहीं, हिम्मत से काम करें और तरक्की की राहों पर आगे बढ़ें।
3: परेशानियां तो कोई नहीं, देखे हमारे पिताजी थे मीडियम परिवार के, हम है 5 बहन भाई थे, हम पे इतना मतलब खर्चा नहीं कर पाते थे कि हमें दूध मक्खन दही बादाम दिया करते थे। हम तो गुड़ का पानी रात को भिगो के रख दिया करते थे, सुबह को पी लिया करते थे सांस के लिए, रात को चने भिगो दिए, चने खा लिए। हमारे घर में 5 बहन भाई थे, उनके लिए करना था कि हम ही पे सब पैसा थोड़ी लग जाए, लेकिन हमने बहुत मेहनत की। बराबर मैं अपने लोगों को बताना चाहता हूँ जो मेरी बात सुन रहे हैं कि मेहनत का फल जाया नहीं जाता है। और आदमी शाम को जाए फील्ड पे जाए, पहले वार्म अप करे, फिर अपने एक्सरसाइज करे, फिर अपने मतलब स्टार्ट लगाए, सुबह को वॉक करे और सीढ़ियां करे, रेते पे दौड़े, वॉकिंग करे और वेट ट्रेनिंग करे, किसी भी चीज को नहीं छोड़े, आपके अंदर फुल ताकत होगी। जिसका स्टार्ट अच्छा हो आप मेहनत करें, ऐसी फिनिशिंग के लिए आप ध्यान रखें कि फिनिशिंग आखिर तक आपको ये सोचना है कि मुझे मतलब आखिर तक दम लगाना है और चेस्ट फिनिशिंग कर दें। अगर कहीं देखें कंपटीशन में कि फर्स्ट में चेस्ट फिनिशिंग हो रही तो आप मार दें जंप। और आप ये देख लीजिएगा, आप इस वक्त दुनिया में जिसका नाम है यूसेन बोल्ट का, जिसकी 9.5 फीट टाइमिंग है, उसकी क्या ताकत है। सिर्फ उसने 100 मीटर रेस के लिए उसने 5 साल मेहनत करी है, ये समझिए 5 साल मेहनत करने के बाद आज उसने ये रिकॉर्ड बनाया। लेकिन इसका रिकॉर्ड तोड़ने में ये 50 साल लग जाएंगे मुझे लग रही है, मेरी समझ से तो यह है 50 साल में। लेकिन वही एथलेटिक्स का, क्रिकेट में भी रिकॉर्ड टूटते हैं, एथलेटिक्स में भी रिकॉर्ड टूटते हैं, रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए। इसलिए मैं चाहता हूं जितने भी बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं वो ध्यान से, अगर आप स्पोर्ट्स में हो, एथलेटिक्स में है, एथलेटिक्स चैंपियन बनना चाहते हैं, तो आपने 100 मीटर, 200 मीटर, 400, लॉन्ग जंप, हाफ स्टेप, सब इवेंट अपने तैयार करिए। खास करके मेन इवेंट जिसमें आपको महारत हासिल है उस इवेंट को आप पकड़िए, जिसके आप नेशनल और इंटरनेशनल जाने की उम्मीद हो आपको, इसीलिए आप आगे भी बढ़ जाएंगे और आपकी नौकरी इंशाल्लाह पक्की होगी।
2: शहीद आजम स्पोर्ट्स स्टेडियम पर सिंथेटिक एथलीट ट्रैक बनने की तैयारी में है, उसका शिलान्यास 22 मई को हो गया। इस ट्रैक से खिलाड़ियों को क्या लाभ मिलेगा?
3: खिलाड़ियों को इस ट्रैक से बहुत ही लाभ मिलेगा कि आसपास में नहीं है, यूपी का पहला बन रहा है जो सिंथेटिक ट्रैक है। इसका शिलान्यास आकाश भाई जो हमारे यहाँ के विधायक हैं, उन्होंने बच्चों के लिए बहुत कोशिश करके ये जो बमनपुरी स्टेडियम है उसमें लगवाने की कोशिश करी है, उनकी कोशिश नाकाम नहीं जाएगी। मैं चाहता हूँ कि जो भी बच्चे हैं वो इसका बनने के बाद फायदा उठाएं, जबकि हम भी सोचते थे हम फिजिकल कॉलेज में हैं, स्टेडियम पे हमारे हुआ लग जाए, लेकिन पता नहीं क्या मसरूफियात थी जो हमारे हुआ नहीं लग पाए। लेकिन जहाँ पे भी लगा है तो रामपुर में ना, कोशिश करना बच्चों का काम है, इतना अच्छा सुविधा मिल रही है। और इसको सुविधा आप ये समझते हैं कहाँ पर, इंटरनेशनल आप समझ ले स्टेडियमों में लगा होता है जो आपके रामपुर में लग रहा है। मैं तो बहुत खुशनसीब रामपुर वालों को समझ रहा हूँ कि खेल के लिए बहुत अच्छे स्तर पे सरकार जो है कार्य कर रही है, और मुझे उम्मीद है कि सरकार ऐसी कार्य करती रहेगी। और योगी जी ने हमारे खास करके कहा कि हर हर शहर में एक स्टेडियम होना जरूरी है, उसके लिए प्रक्रिया चल रही है। और खास करके जैसे अमरोहा है, संबल है, ये है, इसमें नहीं होते हैं फील्ड, लेकिन बच्चे बहुत अच्छे एथलीट होते हैं, बेचारे खेतों में करते हैं, छोटे से मैदानों पे करते हैं। रामपुर में तो बहुत अच्छी सुविधा है, फैसिलिटी है। और मैं चाहता हूँ रामपुर वाले लड़कों को जो खास करके स्पोर्ट्स में है वो ध्यान दें, बमनपुरी में जाए, वहाँ तैयारी चल रही है। और जब ट्रैक बन जाए तो अपनी जितने भी जिशान के अंडर में कोचिंग कर रहे हैं, जितने भी एथलीट शाम को फिजिकल में कर रहे हैं, वो सब ध्यान करें और इतनी तैयारी करें और आप जो है एथलेटिक्स ट्रैक पे आप प्रैक्टिस करें। और मुझे उम्मीद है कि अच्छा एथलीट जो है 10.6 टाइमिंग निकाल देगा और उम्मीद है उसकी नौकरी रुकना नहीं है। रेलवे में हो चाहे वो रेलवे में हो, चाहे वो बिजली घर में हो, चाहे स्पोर्ट्स फील्ड में, कहीं भी जगह दी जाए। जैसे कि एक हमारा खिलाड़ी योगी जी ने उनको डायरेक्ट RSO बनाया, अलीगढ़ के हैं, और उनका RSO देखिए कितनी खुशी की बात है कि आज RSO कितनी मेहनत से बनता है, आप स्पोर्ट्स ऑफिसर के बाद RSO बनेंगे। तो मैं ये दुआ करता हूँ रामपुर के बच्चों को कि हमारी सरकार ने اتنا کچھ کرا ہے تو آپ بھی اتنا کریں, آپ محنت کریں.
2: آپ ایتھلیٹ میں کہاں کہاں کہاں کھیلے؟
3: میں ایتھلیٹکس میں محنت کری, میں نے کمال علی کے ساتھ دوڑا, جبکہ بہت اچھا پلیئر ہے وہ, انٹرنیشنل 82 میں ایشیاڈ کھیلنے گیا تھا, وہ 100 میٹر کا ٹاپر ہے, یو پی چیمپئن ہے. میں نے بھی اس کے ساتھ کہی میں ڈسٹرکٹ چیمپئن بنا, منڈل چیمپئن بنا, میں کیا کہتے ہیں پانچوں سال میں ڈگری کالج کا ریکارڈ دو, پانچوں سال چیمپئن بنا میں, یونیورسٹی دوڑا. اور میں اور اسی کے ذریعے جب میری ٹانگوں میں طاقت آئی 100 میٹر کے ذریعے, تو میں کھو کھو, کبڈی, باسکٹ بال, ہینڈ بال اور ٹیم گیم میں, کبڈی میں سب میں کھیلا ہوں اسٹیٹ. میں یہ کوشش کرتا ہوں آنے والے وقتوں میں میری طریقے سے میں آل راؤنڈر بن گیا تھا, اور میری طرح سے بچے کوشش کریں, چاہے مین گیم ان کا ایتھلیٹکس ہو لیکن ٹیم گیم میں بھی کوشش کریں. پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ کھیل کے ساتھ ساتھ پڑھائی ہونا بھی ضروری ہے, بلا پڑھائی کے بھی کھیل بیکار ہے. یا تو آپ انٹرنیشنل یا اولمپک پلیئر ہوں تو آپ بغیر پڑھے لکھے چل جائیں گے, لیکن اگر میڈیم کھلاڑی ہیں تو آپ بغیر پڑھائی کے نہیں چل پائیں گے. اس لیے میں کوشش کروں گا, جو بھی میری آواز سن رہا ہے میں ان بچوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل بھی کھیلیں, اور جس ایونٹ میں بھی ہیں اس کو اپنا مین ایونٹ بنا کر اتنی پریکٹس کریں کہ آپ نیشنل اور انٹرنیشنل میں بھاگ.
2: جو کھلاڑی ہیں, یووا کھلاڑی ہیں, ان کے لیے کیا سندیش ہے؟
3: میں یووا کھلاڑی ہیں ان کے لیے میں اسٹیڈیم پہ میں خود بھی دیکھتا ہوں, میں اسٹیڈیم انچارج بھی ہوں, میں فزیکل کالج میں سوئمنگ انسٹرکٹر بھی ہوں. میں دیکھتا ہوں ایک ذیشان لڑکا ہے, وہ بہت اچھا پلیئر ہے ایتھلیٹکس کا, وہ کم سے کم 100-200 بچوں کو شام پریکٹس کراتا ہے, بہت اچھے پریکٹس کر رہے ہیں, گرلس بھی ہیں بوائز بھی ہیں. اور میں ان سے ہی کہتا ہوں کوشش کریں, یہاں کوئی ان سے نہ کوئی فیس لی جاتی ہے نہ کوئی جاتی ہے, 5 بجے وہ بچے آ جاتے ہیں, 7 بجے پریکٹس کر کے جاتے ہیں. اور میں ان سے یہ بھی کہتا ہوں کہ شام کو جب جوگنگ کرو, جوگنگ کے بعد سیڑھیاں کر لو, سیڑھیاں کرنے کے بعد اگر آپ کو صبح کو آؤ تو آپ جو ہے ہیل پہ چلے جائیے, رننگ کریے, پجاؤ پہ چلے جائیے, ویٹ ٹریننگ کریے, جتنی آپ کی تھائز میں طاقت ہوگی, جتنے آپ کے کندھوں میں طاقت ہوگی, جتنے آپ کے سینے میں طاقت ہوگی, وہی آپ دوڑ کو, ہوا کاٹنے کے لیے بھی طاقت ہونا چاہیے جسم کے اندر, جو 100 میٹر کے لیے چاہیے. میں چاہتا ہوں بچوں سے کہ بہت بچے کوشش کریں, رامپور کا نام کریں, رامپور کو اب آگے لے جائیں, کہ اس وقت بہت سویدھا ہے. میں سرکار کا شکریہ ادا کرتا ہوں, سرکار نے بہت فیسلٹی دی ہے سب کے لیے. ہمارے زمانے میں اتنی نہیں تھی تو پتا نہیں, اگر ہمارے زمانے میں اتنی ہوتی ہم کیا کرتے. ہارڈ لک خیر ہمارے نصیب میں جو تھا وہ ہم ملا, لیکن اسی کی بدولت جتنا بھی ہم نے کرا اس کی بدولت نوکری مل گئی. میں سرکار کا شکریہ ادا کرتا
2: ہوں. شروع ابھی آپ سن رہے تھے جاوید خان کی زبانی, ان کی کہانی, کس طرح سے انہوں نے محنت کر کے منزل کو چھوا ہے. امید ہے آپ بھی محنت کریں گے, آپ کے سامنے تمام ساری دقتیں نہیں ہیں, بہت آسانیاں سرکار نے کر دیے اور ان کا آپ لابھ اٹھا کر تیزی سے ترقی کی راہوں پر بڑھتے جائیں.
0: आकाशवाणी रामपुर के खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स राउंडअप में आज इतना ही. कार्यक्रम के अगले अंक में फिर से हाजिर होंगे खेल जगत की विभिन्न गतिविधियों के साथ. तब तक के लिए अवधेश गौतम को दीजिए अनुमति.
4: स्पोर्ट्स राउंडअप.

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्पोर्ट्स राउंड अप, प्रस्तुतकर्ता थे अवधेश कुमार गौतम। आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है।

0: हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। रात के ठीक 10 बजे हैं। अब प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो रामपुर। हेलो रामपुर कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आपकी रेडियो साथी रेणु तिवारी। कीजिए स्वीकार, नमस्कार। श्रोताओं, अगर आप हमसे अपने दिल की बात करना चाहते हैं, गीत सुनना चाहते हैं, तो डायल करें। हमारा फ़ोन नंबर है 0595-232-6324। फ़ोन नंबर एक बार पुनः सुन लें, 0595-232-4326। और अब हमारे पहले श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जी, मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: शिमला से आप हमसे जुड़े हैं, ये बताइए आपके शहर में मौसम कैसा है?
1: हमारे यहाँ अभी बारिश हुई थी 1 बजे से लेकर 7 बजे के बीच, तो अभी जो है मौसम साफ हो गया और बहुत ठीक ठाक बारिश हुई थी और थोड़ी आसमानी बिजली भी कड़की थी और थोड़ी बारिश हुई थी।
0: जी, आप एक ऐसे जगह पर रहते हैं जो पर्यटन के लिए बहुत मशहूर है, ऐसे में पर्यटकों का आना कितना हो रहा है आपके शहर में, कैसी है?
1: जी जी, मैं न्यूज में सुन रहा हूँ कि इस बार जो है पर्यटक जो है बहुत ज्यादा रहे, जैसे शिमला और कुल्लू मनाली, क्योंकि जैसे आपके क्षेत्र में 40-45 डिग्री तापमान है, तो ऐसे में क्या कर रहे हैं, और हर राज्य से लोग जो है हिमाचल की ओर।

0: अरे शिमला और कुल्लू मनाली।
1: बिल्कुल, पर्यटक आपके शहर में आ रहे हैं और
0: जी
1: आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं हेलो रामपुर प्रोग्राम में। आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
0: जी दिल मांगे मोर मुख का गाना सुनना है, ऐसा दीवाना हुआ आप दिल।
1: ठीक है, आपकी
0: जी
1: पसंद पर हम सुनवा रहे हैं ये गीत, लीजिए सुनिए।
0: जी धन्यवाद।

0: हेलो रामपुर
1: हेलो रामपुर,
0: जी, हमारे कौन से साथी बोल रहे हैं?
1: मैं सतीश बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से। मैम, आपका शुभ नाम तो भूल गई मैंने,
0: मैं रेणु तिवारी
1: तो
0: बोल रही हूँ।
1: आपके इधर मौसम कैसा है?
0: यहाँ पर वैसे तो गर्मी पड़ रही है, लेकिन आंधी भी आ रही है, गरज चमक के साथ कभी कभी छींटे भी पड़ जाते हैं, तो मौसम मिला जुला है।
1: सेम मौसम जैसे आपके इधर है, सेम मौसम मेरे इधर है, क्योंकि अभी आंधी भी चल रही थी और जैसे छींटे पड़ रहे थे, बारिश बादल वगैरह जो कौंदा होता है वो भी दे रहे थे, तो ऐसे ही चलता है, डिक्का मिच्ची मौसम चलता है।
0: बिल्कुल सतीश जी, आज हेलो
1: और आज
0: राम,
1: अब जिस मौसम में, जैसे मैं गर्मी का मौसम तभी चल रहा है, बारिश भी होती है, तो गर्मी के मौसम में मैं एक टिप्स बताना चाहता हूँ, क्योंकि अभी जैसे गर्मी मौसम में जो पक्षी अच्छी होते हैं तो उनको पानी रखना चाहिए, और भैंस जानवर होते हैं उनको ख्याल रखना चाहिए, चारा पानी करना चाहिए, और जैसे अभी तो मौसमी फल चल रहे हैं, कलिंदे खरबूजा ककड़ी खीरा, तो उनका सेवन करना चाहिए, कहना चाहता हूँ मैडम जी।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है आपने कि गर्मी में हम अपना तो ख्याल रखें ही, अपनों का ख्याल भी रखें और जो जीव जंतु हैं इस धरती पर उनका भी ख्याल रखें।
1: क्योंकि अभी तो गर्मी चल रही है, तो बच्चे जाते हैं नानी के घर पे जाते हैं, तो श्राद्ध करते हैं, कहीं भी जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बचपन में जैसे अभी नानी घर पे जाते हैं तो गिल्ली डंडा ठो जैसे गेंद वगैरह खेलते रहते थे, बहुत अच्छा लगता था बचपन में, तो अब तो बचपन बेगाना हो गया कैसा, क्योंकि अब तो बच्चों के हाथ में मोबाइल देखो तो चश्मा लगने लगा, तो बहुत तो दिक्कत आ रही है मोबाइल से देखने से, चश्मा भी नन्हे नए बच्चों को लगने लगा है।
0: बिल्कुल, ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं, लेकिन आज आपका फ़ोन लगा है हेलो रामपुर में, कौन सा गीत सुनवा दें आपको?
1: आज मुझे फिल्म का नाम है दिल,
0: जी
1: और गाने बोले ओ प्रिया प्रिया, ये गाना सुनवा दीजिए, जितने तमाम सुनने वाले हैं सबको गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ, सब मैम आपके लिए गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: ठीक है, सभी की पसंद पर हम सुनवा रहे हैं ये गीत, लीजिए सुनिए।
1: और पूरा गाना सुनवा दीजिए मैम।

0: हेलो रामपुर।
1: हाँ, हेलो रामपुर मैम। सबसे पहले आपको मेरा मोहब्बत भरा नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: कैसी हो मैम आप?
0: हम अच्छे हैं। हम ये जानना चाहेंगे हमारे किस साथी से बात हो रही है।
1: मैम, मैं जिला रामपुर ग्राम जहांगीरपुर से आपका नेम सौदा मोहम्मद इशरत आप साथ कर रहा हूँ।
0: मोहम्मद इशरत, क्या करते हैं आप?
1: मैम मैम मैं घर पे रहता हूँ, खेती किसानी काम करता हूँ, साथ में आपके केंद्र के प्रोग्राम सुनता रहता हूँ। आपके केंद्र के प्रोग्राम मैम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जिस प्रोग्राम में आप आती मैम छा जाती हो, मैं ये सोचता हूँ आपसे बात हो जाए मैम, बात हो जाती है, अच्छा लगता है काफी।
0: जी, हमें भी अपने श्रोताओं से बात करके बहुत अच्छा
1: मैम आप
0: लगता है।
1: जो लिसनर से बात करती हो काफी पसंद आती है मैम सभी को,
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: और मैम क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है जिस प्रोग्राम में आप आती हो।
0: जी, आज आपका हेलो रामपुर में फोन लगा है। कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: मैं आज गीत सुनवा, मूवी का नाम है छोटे सरकार। मैम उसमें बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, सोचो ना सनम कुछ सोचो। मैम आज के हेलो रामपुर में अला सॉन्ग प्ले कर देना, को सुनने वाले हैं।
0: जी
1: मैम सबसे पहले ये ग्राम बीबीपुर से है, मकसूद बसवाड़ से है, विजय राठौर, ये वाला गाना इनको रेडियो साथ में आप और हम।
0: आप सभी की पसंद पर हम सुनवा रहे हैं ये गीत। लीजिए, सुनिए।

0: हेलो
1: हेलो,
0: हेलो रामपुर।
1: कहाँ से लाऊं हुनर उसको मनाने का कि कहाँ से लाऊं हुनर उसको मनाने का। कोई जवाब नहीं था उसके रूठ जाने का। मोहब्बत में तो सजा हमको ही मिलनी थी, हमने उसे चाहा था अपनी जान से भी ज्यादा।
0: हमारे कौन से साथी से बात हो रही है?
1: मैम जी नमस्कार,
0: नमस्कार।
1: मैं ग्राम्बा पोस्ट हरहरपुर मटकली जिला बरेली से सारू नूर अंसारी आपसे बात कर रहा हूँ। मैम
0: शाहरुख नूर अंसारी जी, बहुत दिनों के बाद हमारी आपसे बात हो रही है आज।
1: बिल्कुल, कम से कम आपसे 6-7 महीने हो चुके हैं, आपसे बात नहीं हो पा रही थी रोनी तिवारी मैडम जी। आज आपसे बात हो गई, बहुत सारी हमें खुशी मिल जाती है जब हमारे किसी भी फोनी प्रोग्राम में कॉल लग जाती है मैडम।
0: बिल्कुल, हमारे श्रोता लगातार हमसे जुड़े रहते हैं, बात करते हैं और अपनी पसंद का गीत सुनते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे जो श्रोता हैं, बहुत लंबे समय तक उनसे हमसे बात नहीं हो पाती उनकी।
1: मैम जी, मैं आपका ये फोन वाला कोई सा भी कार्यक्रम होता है, जैसे हेलो रामपुर हो गया, हेलो फरमाइश हो गया, ये भी मिस नहीं करता हूँ। ये कार्यक्रम सुनता रहता हूँ, चाहे मैं कॉल लगाऊँ ना लगाऊँ, मगर आपका ये कार्यक्रम मुझे इतना अच्छा लगता है सुनने में, इतना मजा आता है जितना कॉल लगाने में मजा नहीं आता मैडम। आप
0: जी, आज हेलो रामपुर में आपका फोन लगा है, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: कहना चाहूंगा कि कभी गम तो कभी तन्हाई मार गई, कि कभी गम तो कभी तन्हाई मार गई, उसकी याद आई और जुदाई मार गई, जिसे बहुत टूट कर चाहा था हमने, आखिर में उसके हमें बेवफाई मार गई। मैम जी फिल्म का नाम है जान।
0: गाने के बोल।
1: मैम जी इसमें एक गाना है कि जुदा अपने दिलबर से होने लगी है, मोहब्बत तो मोहब्बत को रोने लगी, ये गाना सुनवाते ना।
0: जी, ये गाना फिल्म इतिहास का है।
1: हाँ सॉरी मैम जी, इतिहास का है, सॉरी ध्यान नहीं।
0: जी, आपकी फरमाइश हम पूरी कर रहे
1: मैम को
0: हैं।
1: सुनने वालों को नाम लेना चाहता हूँ।
0: बिल्कुल।
1: राजेंद्र गंगवार है, भगवान सिंह परमार जी हैं, प्रेम सिंह सिसोदिया जी हैं, लोकेंद्र वर्मा हैं, श्रीपाल गोयल जी हैं, दिलीप आहूजा जी हैं, शबनम अब्बासी हैं, गफ्फार खान हैं, दिव्यांशु यादव जी हैं, आप हैं, सारुनी अंसारी के साथ होना चाहूंगा। चलते चलते बस यही कहना चाहूंगा कि गुलशन बाती रहे तो गुल जरूर खिलेंगे, कि गुलशन बाती रहे तो गुल जरूर खिलेंगे, और इंशाल्लाह जिंदगी सलामत रही। इस प्रोग्राम में आपसे फिर कभी मिलेंगे, तब तक खुदा हाफिज।
0: बिल्कुल, आप सभी की पसंद हम पूरी कर रहे हैं। लीजिए, सुनिए।
1: धन्यवाद।

0: हेलो रामपुर,
1: हेलो रामपुर।
0: हमारी कौन से श्रोता बोल रहे हैं?
1: नमस्कार मैम,
0: नमस्कार।
1: मैं तहसील स्वार मोहल्ला पंजाबी कॉलोनी से विजय राठौर बोल रहा हूँ।
0: विजय जी, हेलो रामपुर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमें जहाँ तक याद है कि हमारी आज आपसे शायद पहली बार बात हो रही है।
1: जी, आपसे तो मेरी पहली बार ही बात हो रही है, लेकिन पहले काफी टाइम हो गया तब बात हुई थी मेरी रोहित जी। काफी
0: जी,
1: टाइम हो गया, हेलो रामपुर में कॉल लग ही नहीं रहा था, काफी टाइम से मैं ट्राई कर रहा था।
0: क्योंकि हमारे श्रोता बहुत सारे होते हैं और सभी को बात करनी होती है, तो जिसकी किस्मत खुलती है
1: जी
0: उसकी कॉल लगती है।
1: हाँ जी, हाँ जी
0: आज आपकी कॉल लग गई है।
1: जी
0: कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: सैनिक फिल्म का गीत सुनवा देना, कितनी हसरत है मुझे तुमसे दिल लगाने की।
0: ठीक है।
1: जी, ये हमारे एक दोस्त हैं जहांगीरपुर से, मोहम्मद इशरत, ये गाना सुनना चाहते हैं।
0: आप सभी की पसंद पर हम सुनवा रहे हैं ये गीत, लीजिए सुनिए।
1: ओके।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो रामपुर,
1: हेलो रामपुर, कैसे हो
0: हमारी
1: आप
0: हमारी किस साथी से बात हो रही है?
1: जी? पहले शुभ संध्या और
0: आपको भी
1: आकाशवाणी रामपुर के सब दीवाने और दीवानियों को, यानी कि अनूप कुमार भट्टाचार्य का सब प्रेम नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, रात जात, है ना?
0: जी। अनूप जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हमसे जुड़े हैं?
1: जी, मेरा गांव का नाम है राम कृष्ण नगर, डिस्ट्रिक्ट के श्री भूमि, आसाम से ताल्लुका है।
0: बहुत दूर से आप हमें हमसे बात कर रहे हैं।
1: जी बिल्कुल। तो दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं है। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं है। खुद को समझ लीजिए, तभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, है ना?
0: क्या बात कही है आपने, बहुत अच्छी बात कही है। कुछ अपने शहर के बारे में, अपनी जहां आप रहते हैं वहां के बारे में कुछ बताइए हमें।
1: मेरे शहर तो बहुत नीट एंड क्लीन है, और वहाँ के क्या कहो, तो मतलब आखिरकार जो क्या नेचुरल जो सीनरी जो है, नेचुरल ब्यूटी जो है, वो तो एकदम क्या कहो, लाजवाब है। और जो लोग कभी नहीं होते, वो लोग जब आते हैं, मतलब वो कभी हो जाते हैं, क्योंकि ये नज़ारा जो है बहुत अच्छे नज़ारा है। हमारे वहाँ के लार्जेस्ट जो ये है तालाब जो है, वो बहुत बड़ा जलाशय है हमारे यहाँ पे, जिसका नाम है संदिल। वो तरह तरह के जो माइग्रेटरी बर्ड आते हैं, और इस सुष्टमा जो है वो तो लाजवाब है। और हमारे गुवाहाटी मंदिर, नीलाचल पहाड़ के पर हमारे कामाख्या मंदिर है, जो सती माई की जो क्या मतलब शरीर का जो टुकड़ा में पतित हुआ, तो इसके लिए भक्त समागम होते हैं हर साल अम्बुबाची में, और बहुत बड़ा मेला लगते हैं। और खास करके हमारे चाय के बागान तो एकदम बेशुमार है, और बाकायदा उससे जो चाय का फ्लेवर जो है, क्या कहो, वाह वाह क्या बात है,
0: क्या बात है,
1: जैसे
0: बिल्कुल ठंडी हवा के झोंके की तरह आए हैं आज आप हमारे इस प्रोग्राम में।
1: जी,
0: आपसे
1: बहुत
0: बात करके
1: अच्छा
0: हमें
1: लगता
0: बहुत
1: है मैम।
0: अच्छा लगा। आज
1: और
0: आपकी
1: कुछ
0: कॉल लगी
1: जी
0: है। हाँ जी
1: जी जी और कुछ मेरे से प्लेटफॉर्म में गाने का लुत्फ करना चाहता हूँ।
0: बिल्कुल।
1: फिल्म का नाम है प्रेम गीत, और गाने का बोल ऐसे, होठों से बोलो तुम मेरा गीत अमर कर दो, ऐसे करके गाने हैं। कुछ मेरा सुतागन का डेडिकेट कर रहा हूँ। पहले
0: बिल्कुल
1: है बसंती लाल सूर्यवंशी जी, है सतीश भाई के लिए, अमर सिंह साहू जी के लिए, कश्मीर से पुरुषोत्तम कुमार जी के लिए, और है अमर उसका नाम अनवर बिहारी भाई के लिए, श्रीकांत जोशी जी, और है विजय सिंह लखेरा जी के लिए, और ढेर सारे श्रोता भी सुन रहे हैं इस मन हवन आकाशवाणी रामपुर के प्रोग्राम। और खास करके मैम आपके लिए बहुत अच्छी बात कही है आपने, बहुत एकदम दिल खुश हो गया।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। हम सुनवा रहे हैं ये गीत।

0: हेलो हेलो रामपुर।
1: हेलो हेलो रामपुर, नमस्कार जी जी
0: नमस्कार।
1: मैं मनोहर लाल गांधी विजयनगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से बोल रहा था।
0: जी मनोहर जी, हेलो रामपुर में आज आपका फोन लगा है। कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: जी बड़ी खुशी हो रही है, मैं तो बहुत पुराना श्रोता हूँ रामपुर का, लेकिन आज कॉल जो है पहली बार ही लगा शायद।
0: आज पहली बार आपकी हमसे बात हो रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और हम
1: लेकिन मैं
0: यही
1: कई सालों से मैं रामपुर सुन रहा हूँ, तो रामपुर आकाशवाणी में आया भी हुआ हूँ एक बार,
0: जी,
1: करीब 15-16 साल पहले। जी
0: तो आज आपने कॉल ही पहली बार किया है कि कॉल आपकी आज लगी पहली बार है?
1: नहीं, लगी पहली बार है, बहुत मैं ट्राई में करता था, रात के 10 से 11 शुक्रवार को बहुत मैं ट्राई करता था, लेकिन आज लगी, पता नहीं क्या हुआ।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है, आज आपकी कॉल लग गई है। तो जब फोन आपका लग गया है हेलो रामपुर में, तो कौन सा गीत सुनवा दें आपको?
1: जी आज आप हमें जोनी मेरा नाम फिल्म है तो उसके गीत के बोल है बाबुल प्यारे, ये सुना दीजिए, बड़ा ही अच्छा सॉन्ग है लता मंगेशकर जी की आवाज में।
0: बिल्कुल, आपकी पसंद पर हम सुनवा रहे हैं ये गीत, लीजिए सुनिए।
2: बाबुल

0: हेलो रामपुर,
1: नींद को रात से क्या शिकायत के जो आती नहीं रात भर, के नींद को रात से क्या शिकायत के जो आती नहीं रात भर, कसूर तो उस खूबसूरत से चेहरे का है जो आज भी रातों को सोने नहीं देता। सबसे पहले मैम आपको, तमाम प्यारे प्यारे सुनने वाले सभी श्रोते साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैम
0: हमारे कौन से साथी बोल रहे हैं?
1: मैं अमरजीत बात कर रहा हूँ आपसे, जिला रामपुर, ग्राम खंडिया, गेट कॉलोनी से।
0: अमरजीत, आपकी कॉल इस प्रोग्राम की आखिरी कॉल है, समय कम है हमारे पास, तो हम चाहेंगे जल्दी से आप हमें अपनी पसंद का गाना बता दें।
1: जी बिल्कुल, मैं गीत बताऊंगा अपनी पसंद का, और आज आपसे काफी दिनों के बाद इस प्रोग्राम में बातचीत हो रही है और काफी अच्छा आज का प्रोग्राम लग रहा है। और बात की जाए आपके आकाशवाणी रामपुर के मोबाइल ऐप के जरिए जो क्वालिटी मिल रही है, काफी अच्छी क्लियर क्वालिटी के साथ सुनने मिल रहा है आज ये प्रोग्राम, तो मैं गीत सुनना चाहूंगा। फिल्म का नाम रहेगा आदमी खिलौना, और इसमें एक गीत है कि मत कर इतना गरूर सूरत पे ए हसीना, हम तेरी सूरत पे नहीं हम तेरी सादगी पे मरते हैं। ये गीत लगा देना मैम
0: आपकी पसंद पर, हम सुनवा रहे हैं ये गीत, लीजिए सुनिए।
1: थैंक यू, बाय।

अभी आप सुन रहे थे सजीव फोनिन कार्यक्रम हेलो रामपुर। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है, मीडियम वेव और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 11 बजने वाले हैं, कुछ ही देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।

0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BHF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BHF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस अकादमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कुचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कुचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी रहा। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने गुजरात को निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 215 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में ताजा समाचार मिले तक गुजरात ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बनाए हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। इन्हीं मीटर्स पर प्रातः 5:52 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि।